0: बस एटलूज जानू।
1: MBC रेडियो योर म्यूजिक कंपेनियन।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: जी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अशिता। नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। आज 5 जून शुक्रवार की इस प्रातःकालीन पहले संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सभी को नमस्ते और प्रणाम। सबसे पहले हम स्थानीय स्तर पर बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़ी ड्रग तस्करी का पर्दा साफ हुआ है। 94.5 मिलियन रुपए मूल्य की गांजा बरामद की गई है। दो यात्रियों सहित तीन लोग गिरफ्तार। पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर की ये बड़ी कार्रवाई। और 19 जून को सरकार वित्त वर्ष 2026-2027 के बजट की प्रमुख रूपरेखा पेश करेगी। पूरे मॉरिशस की नज़र इस महत्वपूर्ण बजट पर टिकी है, जिससे सामाजिक राहत और आर्थिक दिशा को लेकर बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास का केंद्र बना हुआ है। प्रकृति को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता और सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया जा रहा है। वृद्धों और कमजोर वर्गों से करोड़ों रुपए की कथित ठगी मामले में नया खुलासा सामने आया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में एक और संदिग्ध कल रात गिरफ्तार हुआ, आज अदालत में उसकी पेशी है। और साइबर हमलों, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी के बीच मॉरिशस ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत किया है। इलेक्ट्रॉनिक लेन देन अधिनियम में संशोधन कर डिजिटल सेवाओं में सुरक्षा और भरोसे को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिबानी सशस्त्र संगठन हिजबुल्ला ने अमेरिका समर्थित इजरायली लिबानन युद्ध विराम समझौते की शर्तों को सख्ती से खारिज कर दिया है। संगठन का कहना है कि ये वार्ता लिबानन के लिए अपमानजनक और निष्फल रही है तथा इससे जनता के बड़े वर्ग का समर्थन प्राप्त नहीं है। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच 11 यूरोपीय देशों ने रूसी पर्यटकों के लिए वीजा नियमों को और कड़ा करने की मांग की है। इन देशों का मानना है कि छुट्टियों के लिए यात्रा की अनुमति यूरोपीय एकजुटता को कमजोर करती है और सुरक्षा संबंधित जोखिम भी बढ़ा सकती है। इसके साथ ये पहला फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। फिलहाल के लिए बढ़ते हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर।
2: Your weather forecast on RM2
3: Radio Masti।
1: मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर हल्की हवा का बहाव है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है। सुबह के समय और दिन के दौरान आसमान साफ रहेगा और विशेषकर सेंट्रल प्लाटू पर दोपहर बाद और उत्तर पश्चिम तथा उत्तर में बादल विकसित होंगे और रह रहकर वर्षा होगी। कभी कभार बारिश तेज भी हो सकती है। रात के दौरान ऊंचाइयों पर बादल घिराएंगे और रह रहकर वर्षा होगी। तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा, सेंट्रल प्लेटों पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। सुबह के समय हवा हल्की बहेगी तथा दक्षिण की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिन के दौरान हवा बहेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पार सामान्य रहेगा। 2 मीटर की लहरें उठेंगी। आज सूर्योदय सुबह 6:49 पर और सूर्यास्त शाम 5:37 पर।
3: RM3 Radio।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم उस मौला के नाम से इब्तदा जिसके नामों की कोई इंतहा नहीं। मेरे अजीज सामईन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे। माह ज़ुल्हिज्जा हमारे दरमियान जारी व सारी है। अल्लाह तबारक व ताला हमें इसके फ्यूज़ व बरकात से माला माल फरमाए, आमीन। सामईन, फ़िलहाल आप उर्दू प्रोग्राम सबाल खैर समात फरमा रहे हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान निसार अख्तर, जो आप तक दीन इस्लाम की खुशबू पहुँचाने आया है। ये बज़्म सिर्फ़ अल्फाज का सिलसिला नहीं बल्कि एक दावत है सोचने की, समझने की और अपने रब के करीब होने की। उम्मीद है आप इस प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। आइए इन बाबरकत लम्हात का आगाज कलाम रब्बानी के नूर से करते हैं। तवज्जो के साथ तिलावत कलाम पाक समात फरमाइए।

सदकल्लाहुल अलीउल अज़ीम। मोहतरम सामईन, अभी आपने कुरान मुबीन की तिलावत समात फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, आज माहे दुल्हिज्जा की 18 तारीख है। आज ही के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक के बाद दूसरी शहजादी से निकाह का शर्फ पाने वाले, गरीबों से मोहब्बत फरमाने वाले, अल्लाह और रसूल के प्यारे अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई थी। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु उन खुशनसीब सहाबे कराम में शामिल हैं जो शुरू इस्लाम में ईमान लाए थे। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने दो मरतबा राह खुदा में हिजरत का शर्फ हासिल किया। सामईन, तिलावत कलाम पाक के बाद ये हम्द बारी ताला मुलायजा फरमाइए।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग रोशन था। इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाशनी उनकी रगो जाँ में इस कदर सराइयत कर चुकी थी कि उन्हें सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बढ़कर कोई चीज़ महबूब न थी। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु दरअसल वो शख्सियत हैं जिन्हें जामिउल कुरान होने का शर्फ हासिल था। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम उन सहाबाए कराम की फहरिस्त में शामिल है जो रिश्तेदारों की तमाम तर तकालीफ सहने के बावजूद ईमान पर साबित कदम रहे।

सामईन कराम, हजरत सैदना उस्मान इबन अफान रदियल्लाहु ताला अन सीरत में भी बेमिसाल थे और सूरत में भी बेमिसाल थे। आप रदियल्लाहु ताला अन का शुमार अल्लाह तबारक व ताला के उन बंदों में होता है जो सारी सारी रात इबादत व बंदगी में गुजार देते थे। आप रदियल्लाहु ताला अन उन लोगों में शामिल थे जो हर वक्त खौफ खुदा और तकवा व परहेजगारी के साथ रहते थे। चुनांचे हजरत सैदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन को ये शर्फ हासिल है कि सरापा नूर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो शहजादियाँ यके बाद दिगरे उनके निकाह में आईं।

0: RM3 Radio.
1: सामईन कराम, उर्दू प्रोग्राम सबाल खैर में निसार अख्तर एक बार फिर आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता है। आज माह दुल्हिज्जा की 18 तारीख है और आज हज़रत सैदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन के यौम शहादत पर हम उन्हें खैराज अकीदत खैराज तहसीन पेश कर रहे हैं। आकाए दो जहां दिलबरे जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन के बारे में इरशाद फरमाया, बरोज़े क़यामत उस्मान की शफाअत से 70,000 ऐसे लोग बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी।

सामईन कराम, अमीरुल मोमिनीन हजरत सैदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन की पाकीजा सीरत का एक रोशन पहलू ये भी था कि आप रदियल्लाहु ताला अन सारी सारी रात सजदा व क़याम में गुजार दिया करते। कभी आपकी रातें तिलावत कलाम पाक में कटती तो कभी सजदा व क़याम की लज्जतें पाने में गुजर जातीं।

सामईन इकराम, हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने एक बार फिर अपने हबीब दो आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें जुम्मतुल मुबारक की नेमत अजीमा से सरफराज फरमाया। बेशक जुम्मा सैयदुल अय्याम यानी तमाम दिनों का सरदार है। खुद रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुम्मे में एक ऐसी घड़ी है कि अगर कोई मुसलमान उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला से कुछ मांगेगा तो अल्लाह पाक उसको ज़रूर देगा, और वो घड़ी मुख्तसर है जो

मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसी आखिरी कलाम के साथ हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम सबा अल खैर अपने अख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है आपने इस बज़्म को ज़रूर पसंद फरमाया होगा। आपकी तवज्जो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु से मुतालिक बात की। अल्लाह अज़्ज़ वजल हमें उनकी सीरत व किरदार पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सामईन, निसार अख्तर अब इजाज़त का तलबगार है। आपसे रुख्सत होने का तो दिल नहीं करता, मगर क्या करें, यही दस्तूर है। दुआ है कि आपका हर दिन खुशियों से भरा हो। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह निगहबान।

RM3 Radio. Radio. Radio. Tuli Ragalu. Tuli Ragalu.

वो हमारी साथ है लागणी नो मेड़ो 2026 ना वर्ष में आवेली आ मूवी नु गीत अने आ एक खूब ज सरस मजानी फिल्म आप सब कोई ने जणावी दईए आ फेब्रुवरी 27 2026 में रिलीज थई अने आ फिल्म में मेन कैरेक्टर्स आर्जव त्रिवेदी ऋत्वी पटेल संजय गलसर अने साथे कथा पटेल अनंग देसाई अने भाविनी जानी अने आ फिल्म नु जे निर्देशन छे राजन राम गोपाल वर्माए करेलू छे तो बस एन्जॉय करिए आपड़ा आगला गीत ने अने आ गीत मां जे संगीत निर्देशन करेलू छे राहुल मंजरियाए केता तो भूली गया कि ड्रामा फैमिली रोमांस भरपूर आ फिल्म में तुमने जोवा मळशे।

भक्ति में शक्ति। शुक्रवार 5 जून, घड़ी मिला लीजिए, दिन के 10:45 हो चुके हैं। रेडियो मनोरंजन पर भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करें। और भक्ति गीतों का ये कार्यक्रम लेकर हम आपकी सेवा में आ चुके हैं। अभी से लेकर दिन के 11:30 तक हम आपका साथ देने वाले हैं। श्रोताओं, आशा करते हैं कि आज का दिन आप सभी के लिए बहुत अच्छे से आरंभ हुआ होगा और ईश्वर की अपार कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर सदा रहे। शुक्रवार का दिन है तो चलिए आशा करते हैं ये दिन आपके जीवन में अपार खुशियाँ लाए और साथ में परिवार में प्रेम हो, स्नेह हो, अपनापन हो, क्योंकि ये सारी

चीज़ें जब जीवन में होती हैं तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर के आशीर्वाद से कम नहीं होती हैं, और ईश्वर की कृपा सबके जीवन में सदा रहे। तो चले इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जो है आज के भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम को हम आरंभ करते हैं भगवान गणेश के नाम से।

श्रोताओं, कहते हैं जिस भी कार्य को हम करना चाहते हैं उसके लिए मन में विश्वास होना आवश्यक होता है। जिस भी चीज़ में हम सफलता चाहते हैं उसके लिए मेहनत, लगन और परिश्रम आवश्यक होता है। जीवन में हम जो कुछ चाहते हैं पहले अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, हम उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब जीवन में होती है, ये छोटे छोटे पड़ाव होते हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं, जो हमें जीवन में उस मुकाम पर ले जाते हैं, उस पड़ाव पर ले जाते हैं जहाँ पर हम अपने आप को देखना चाहते हैं। तो इसलिए हमें जीवन में जो भी कुछ करना होता है उसके लिए हमें समय देना होता है, उसके लिए हमें जो है अपने आप को तैयार करना होता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से, और कहीं ना कहीं उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। जो भी कुछ करना चाहते हैं ईश्वर पर विश्वास होगा, अपने आप पर विश्वास होगा, अपने कर्मों पर भरोसा होगा, तो जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो हमें मिल नहीं सकता है। चलिए, आज शुक्रवार का दिन है तो अगले भक्ति गीत द्वारा सभी देवियों को याद करते हैं, फिर चाहे माँ दुर्गा कहें, माँ लक्ष्मी कहें, माँ सरस्वती कहें, और सभी देवी सबका कल्याण करें, ऐसी कामना हम करते हैं।

में शक्ति, माँ दुर्गा कहे, माँ काली कहे, माँ तारा कहे, जिस भी देवी का नाम हम क्यों ना पुकारे, सभी देवियाँ जो है कहीं ना कहीं शक्ति का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, निडरता का प्रतीक है। और जब भी हम इन देवियों की पूजा अर्चना करते हैं तो इन्हीं सभी गुणों को हम अपने भीतर भी पाते हैं। और कहते हैं ना कि कभी तो देवताओं को भी जब भी आवश्यकता पड़ी है तो वो इन्हीं देवियों के पास गए हैं, जब भी सृष्टि पर संकट आया है संकट के निवारण के लिए। तो जब भी हमारे जीवन में कोई संकट आता है तो हम क्यों विचलित होते हैं, हमारे जीवन में जब कोई संकट आता है तो हम क्यों परेशान हो जाते हैं, हमारे सामने तो सभी देवी देवताएं हैं, उपस्थित है, क्यों नहीं सच्चे मन से सच्चे हृदय से उनसे हम प्रार्थना करते हैं। क्यों कभी कभार हम जो है जब किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, बुरे हालातों में होते हैं, तो ऐसे में हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और कभी कभार जो है जीवन में गलत फैसला कर बैठते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं और उस गलती का फिर परिणाम भी हम ही को भुगतना पड़ता है। तो जीवन में जो भी हो, जैसा भी हो, अगर हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, अपने देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, तो वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से हमारा मार्गदर्शन तो अवश्य करते ही है। तो इसलिए हमारे हृदय में जो है ये करुणा की भावना, ईश्वर के प्रति विश्वास की भावना, समर्पण की भावना होनी चाहिए। और जैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना आए, निडर होकर हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए और ईश्वर से इतनी शक्ति मांगनी चाहिए कि जैसी भी परिस्थिति हो उसका सामना हम बिना डरे, बिना अपने विश्वास को खोए उसका सामना कर पाए।

ना, शक्ति तो ईश्वर हमें देते ही है, ये निर्भर हम पर करता है कि हम उस शक्ति का उपयोग किस तरह से करते हैं। क्या उस शक्ति से हम किसी का भला कर रहे हैं, किसी का अच्छा कर रहे हैं, क्या वो शक्ति किसी के भलाई के काम आ रही है या नहीं।

और श्रोताओं, कौन है जो अपने जीवन में शांति नहीं चाहता है, कौन है जो अपने जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य नहीं चाहता है, लेकिन जो भी कुछ अपने हम अपने जीवन में चाहते हैं उसके लिए प्रयास

भक्ति में शक्ति। श्रोताओ, भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम से आप जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और अब बढ़ेंगे हम इस अंतिम प्रस्तुति की ओर, जिसके साथ भक्ति में शक्ति यह कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। और

जाते जाते हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर जो है सबका कल्याण करे, ईश्वर जो है सबका मार्गदर्शन करे और ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर हम भी सदैव चलने का प्रयास करें। तो चले इन्हीं कामनाओं के साथ भक्ति में शक्ति यह कार्यक्रम समाप्त होने को चला। 11:30 बजे आप जिन की

ढाई बजे से अभी के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से। RM3 Radio.

0: आइए सुनते हैं समाचार आशिता के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिरीशा, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। लासूस काट्रबोन इलाके में कल शाम 31 वर्षीय व्यक्ति का शव उसके घर से बरामद होने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक खून से लथपथ अवस्था में पाया गया, उसके पैर पर गहरा घाव भी मिला है। घटनास्थल पर मौजूद उसकी लिव इन साथी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वर्तमान में काट्रबोन की सीआईडी के अधिकारी उससे पूछताछ कर रही हैं। मृतक की मौत के सही कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मॉरिशस में वर्ष 2026 की गन्ना कटाई का मौसम अगले कुछ महीनों में शुरू होने जा रहा है और ये अभियान की शुरुआत 22 जून से जब होगी। इस दिन यूनियन फ्लाक में स्थित आल्टियो मिल और उत्तरी क्षेत्र की टेरा फैक्ट्री में उत्पादन कार्य शुरू किया जाएगा। दक्षिण में स्थित उब्निकेन की फैक्ट्री 14 जुलाई से गन्ना पेरना शुरू करेंगी। फसल कटाई का कार्य दिसंबर के मध्य तक जारी रहने की संभावना है। गौरतलब है कि ये अभियान ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब पिछला मौसम सामान्य से अधिक शुष्क रहा, लेकिन इसके बावजूद गन्ने की फसल कुल मिलाकर संतोषजनक रही है। मॉरिशस कृषि सदन के एक बयान के अनुसार गन्ने की कटनी का कार्य दिसंबर के मध्य तक जारी है। साथ ही सर्दियों के आगमन के साथ गन्ने में चीनी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने की उम्मीद है, जिससे उत्पादन को लाभ मिलेगा। अगले 19 जून को सरकार वित्त वर्ष 2026-2027 के बजट की प्रमुख रूपरेखा प्रस्तुत करेगी। ये एक महत्वपूर्ण अवसर है जिस पर सभी मॉरिशनों की नज़र टिकी हुई है। जनता ऐसे बजट की उम्मीद कर रही है जो सामाजिक कल्याण पर केंद्रित

0: हो और लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करे। ये बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है जब आर्थिक परिस्थितियां अभी भी अनिश्चित बनी हुई हैं। इस बजटीय अभ्यास के माध्यम से प्रधानमंत्री देश की प्राथमिकताओं के बारे में संकेत देंगे और आने वाले वर्षों के लिए आर्थिक दिशा स्पष्ट करेंगे। हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये दिवस पृथ्वी को सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का संदेश देता है। और इसके साथ पर्यावरण मंत्री मॉरिशस में राजेश भगवान ने हमारी धरती की रक्षा पर बल देते हुए युवाओं से पर्यावरण संरक्षण के लिए सांस्कृतिक आंदोलन का आह्वान किया। उन्होंने स्वच्छ और हरित पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने तथा लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया। अंत में बढ़ते हैं हम चीन की ओर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगभग 7 वर्षों बाद पहली बार उत्तरी कोरिया की यात्रा पर जा रहे हैं। सरकारी मीडिया के अनुसार वे 8 और 9 जून को उत्तरी कोरिया के नेता किम जिंग युंग के निमंत्रण पर प्योंगयांग का दौरा करेंगे। शी जिनपिंग ने आखिरी बार वर्ष 2019 में उत्तर कोरिया की यात्रा की थी। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया गया था। ये दोनों देश उत्तर कोरिया की विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रही सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। सिबारत लेन फ्लोरियाल में 74 साल के 74 के श्री सूरजदेव सिबारत जिन्हें विनोद के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके घर फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाक शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन चिड़िया 3 PM। तागोलिन लियोशी तेरूज में 80 साल के 80 की श्रीमती गोमती गावा पैदाश्याम जगदेव और जिन्हें दादी देविका के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज शाम 3:30 उनके बेटे ऋषि गावा के घर लेउशे तेगुर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशक शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन चिड़िया 3:30 PM। ऑंग्ला स्ट्रीट थोंगबो पोर्ट लुइस में 81 साल की 81 की श्रीमती देविका गोकुल पैदाशीराम राम भुवन और जिन्हें सांता के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2:30 उनके घर थोंगबो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुडे 2:30 PM। नंबर 31 चार्ल्स डिकन लेन बुबासा में 74 साल के 74 के श्री देवरा चंदारिका बिकू जिन्हें चिबाई के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2 बजे उनके घर बुबासा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलोवियक शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुडे 2 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: RM3 Radio.

0: जी हाँ, स्वागत है। दिन के 12:10 हुए हैं।
1: सुहाना सफर
0: एक ऐसा सफ़र जिसको हम सुहाना बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। सभी हमारे दोस्तों का, हमारे सभी लिसनर्स का हम स्वागत करते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में। कैसे हैं आप भाई? हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारा मूड भी एकदम आज कमाल का है, क्योंकि आज है शुक्रवार। फ्राइडे में ऐसे ही सबका मूड होता है, सब मस्ती करना चाहते हैं, सब चाहते हैं टेंशन दूर हो जाए। इसी टेंशन को दूर भगाने के लिए हम आते हैं आपके लिए लेकर खूबसूरत पुराने गाने। लेकिन आज फ्राइडे में कुछ अलग अलग गाने भी होते हैं, थोड़ा डिस्को विस्को भी होता है, इसके लिए तो आप भी तैयार हैं। तो चलिए देर न करते हुए थोड़ी सी बॉक्सिंग भी कर लेते हैं। अरे नई फिल्म का नाम है बॉक्सर, गाने की फरमाइश आई थी, सोचा चला दे।

0: आपके दिल में भी अगर कुछ कुछ हो रहा है तो जरूर बताएगा, हमारे साथ जुड़ जाएगा। ये है आपका प्रोग्राम सुहाना सफर।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
0: जी हाँ दोस्तों, सुहाना सफ़र प्रोग्राम ये वो प्रोग्राम है जहाँ पर हर कोई हमारे साथ हम सफ़र बनकर हमारे साथ जुड़ जाते हैं। चलिए देर न करते हुए अपने दोस्तों को हेलो तो बोल दें जो हमारे साथ यहाँ हमारे टिकटॉक लाइव पे हैं। अनिल राजन कुजन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आदाब यास्मीन, कैसी हो? लीना वनकम आपको। सरिता नामजोत आपको भी कहेंगे हेलो, गुड आफ्टरनून। विमी आपका भी हम प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर मनीता जी भी जुड़ गई हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। आज शुक्रवार है, फ्राइडे है। और यास्मीन आपने कहा है कि राहत फतेह अली खान का गाना, यास्मीन ये पुराने गीतों का प्रोग्राम है, यहाँ पर हम सिर्फ पुराने गाने चलाते हैं। हाँ आज फ्राइडे है तो 80s का कोई गाना चल सकता है लेकिन इससे ज़्यादा हम नहीं जाते। शवि आपका वेलकम है, हाय कैसी हो मेरी जान। सरिमा कैसे हो भाई, आपको भी जुमा मुबारक हो। एंड हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, थैंक यू शवि। यहाँ पर हम मुकवास टू यू ऑल्सो, हम तो यहाँ पर हैं खूबसूरत गीतों के साथ आपके इस फ्राइडे को खूबसूरत बनाने के लिए। और अगर जो लोग हमें यहाँ पर सुन रहे हैं और आप भी चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में शामिल हो तो हैप्पी फ्राइडे आप भी कह सकते हो, जैसे कि हम कहते हैं ललिता को हैप्पी फ्राइडे। तो चलिए भाई, यहाँ पर याराना फिल्म का एक खूबसूरत सा गाना है रफ़ी साहब की आवाज़ में, चलिए सुनते हैं।

0: सुहाना सफर।
1: चलो जी, यहाँ पर हमारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं, यहाँ पर कई सारे लोग टिकटॉक के साथ जुड़े हुए हैं। कालबास से ललिता जी हमारे साथ हैं। गाना जाएगा आपके बेटे सूरज, जो कि आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, 51 ईयर्स ओल्ड टुडे, और गाना होगा उनके लिए, आपके लिए भी। और साथ में ये गाना हम फिया के नाम डेडिकेट करेंगे। एंड वी हैव जिगेशा पटेल फ्रॉम साउथ अफ्रीका, वेलकम, आपका स्वागत है। चलिए जी, लैला मदारन, शारदा लखनऊ, तेजी तंदुलवा एंड कल्याणी हरी, साहिल, माया रामदो, सतीश दुखी, इंदिरा रामदुनिया, प्रेमा लक्ष्मण फ्लाक्से हैं, हंसवी, एजे और साथ में अंजू के लिए गाना। मिस्टर नूरुद्दीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ्रांस से, वहीं पे नीरू रामसन हमारे साथ जुड़ गई है, और साथ में यही गाना हम आपके नाम डेडिकेट करेंगे। आप हैं कौन? साधना सुबाना, जी हाँ, आपका हम भी हम वेलकम करते हैं। थैंक यू प्रेमा, कैसी हो आप? गाना जाएगा

0: देवेश, यज्ञेश और वरुण के नाम। धर्म, आपका भी स्वागत है। पामेला रामसामी, हेलो जी, नमस्कार, कैसी हो परी? अच्छे हो। यहाँ पर सबके मैसेज आ रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट, हमारा टिकटॉक लाइव है और आप लोग अगर चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे लाइव के जरिए।
1: You're listening RM Free Radio.

0: सुहाना सफर
1: सुहाना सफर
0: ये है आपका सुहाना सफर। इसको सुहाना आप ही बनाते हैं जब आपके मैसेजेस आते हैं। चलिए जी, यहाँ पर हम श्री गोल्डन को कहेंगे थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार भेजा है उन्होंने, सबको बहुत सारे विशेस भेजे हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं तनवीर खालिद, वी हैव लीना सनफ्लावर, बबीता बंधु, राधिका, माधुरी, मणिप्रिया जो हमारे साथ हैं। आपने गाने की फरमाइश की है, मैं ढूंढ रही हूँ वो गाना। और साथ में यहाँ पर शहनाज मुकिम हमारे साथ हैं। हेलो माई डियर सिस्टर, कैसे हो? अनोरखी, हाय सनी, यू लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू। हे विदिता, हे हाउ आर यू? और यहाँ पर हमारे साथ हैं वीना रंगलाल, नमस्ते। चलिए जी,

0: अभी तो हम ढूंढ ही रहे हैं गाने, कई सारी गाने की फरमाइश भी आ गई है। इंदिरा जी, रीना, रोमा पाइदिया, हेलो इंदिरा जी, आपके दोस्त शाम के लिए गाना होगा। और साहिल कहते हैं मेरे बॉस अनिल के लिए, अनिल शर्मा जी के लिए गाना ज़रूर चलाएगा और वो खुश हो जाएंगे। मुझे पता है अब इतना टाइम देते हैं आपको गाने सुनने का, वैसे वो भी तो इन्जॉय करते हैं। और यहाँ पर सुबह हमारे साथ है, नमस्ते शिमला बिजादे, नमस्कार आपको भी, आपका स्वागत करते हैं हम प्रोग्राम में। चलिए आदित्य, हाय, हाउ आर यू आदित्य, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस ऑन टिकटॉक लाइव।
1: RL Free Radio, Radio, Radio.
0: यहाँ पर हमारे साथ हैं पूनम जालिम, उनका भी हम स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में। दुनिया के किसी भी कोने से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। ये है RN3 रेडियो मनोरंजन और हमारा टिकटॉक लाइव है जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: दिन के 12:34 हुए हैं। 5 जून शुक्रवार का ये दिन है। कई सारे लोग अपना जन्मदिन मना रहे होंगे। हमारी ओर से भी आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं हैं। चमका है आरजू का सितारा अभी अभी, तो चलिए सितारे को जगमगाने देते हैं। और यहाँ पर हम सीता पदारत उषा, जो कि कहते हैं उनकी कजिन विश्वानी का आज जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजते हैं। विद्या नायक को, मेधा सुकून, हमारे साथ हैं सिमी, प्रिया जॉन, संगीता, शोभा इकवायौसी, खलील रहमान, माला, मरियम, आपने गाने की फरमाइश की है, मुझे नहीं पता ये कौन सा गाना है, लेकिन आई विल डेफिनेटली लुक फॉर द सॉन्ग, आपके लिए ज़रूर ढूंढूंगी। चले जी, यहाँ पर आपने गाना मांगा है, वैसे आपने जो गाना मांगा है वो पहले तो वो कामचोर फिल्म का गाना नहीं है, वो किसी और फिल्म का गाना है, लेकिन मुझे लगता है कि ये गाना शायद मेरे प्लेलिस्ट में होगा तो मैं ज़रूर चलाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर उमा जी साथ में हैं, कहते हैं कि सिस्टर मेरा नाम भी लिस्ट में रख दीजिएगा, लेकिन आपका नाम रखा है निर्दोष दिल, आपने अपना नाम तो लिखा ही नहीं, तो मैं आपका नाम कैसे रखूं ब्रदर, चलिए जल्दी से अपना नाम भेज दीजिएगा। ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू नंदिनी। अरे नंदू मेरी जान, आपका बर्थडे आपने बताया नहीं है। यहाँ पर किसी ने कहा है कि जब कोई बात बिगड़ जाए, यही तो बात है ना कि हम बात बिगड़ने नहीं देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पुराने गाने चलते हैं, नए गाने तो चलते नहीं, आई मीन 90s के गाने बहुत नहीं चलते, एक दो गाने होते हैं, मैं प्रॉमिस नहीं करूँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि गाना जाने से पहले मैं आपको ज़रूर सुनाऊँ।
2: RM3 Radio.

0: मौसम प्यार का रंग बदले ना बदले लेकिन हम यहां पर हर एक रंग में ढलने के लिए एकदम तैयार रहते हैं
1: सुहाना सफर
0: सभी हमारे लिसनर्स का एकदम हम स्वागत करते हैं प्रोग्राम में सुहाना सफर प्रोग्राम का नाम है और आपको पता है ये यहां पर हम अलग-अलग गाने चलाते हैं और अलग-अलग गाने की जब हम बात करते हैं वी हैव इतने सारे खूबसूरत गाने कभी 60s कभी 70s कभी 80s 90s के एक दो गाने लगाते हैं लेकिन नए गाने प्लीज ना मांगे अच्छा रहेगा हमारे लिए बार-बार मना करने में अच्छा नहीं लगता ना चलिए कविता रेणुका जयश हमें सुन रही हैं फ्रॉम यूके हाय यूके वालों कैसे हो एंड यूके वालों आर यू ओके केती का साथ में है स्वागत करते हैं आपका प्रोग्राम में एंड साथ में अंजी आर्मगम हमारे साथ नजीमा गोबर्धन गले शाम प्रिंस लवकुश और हमारे साथ हैं यहां पर इतने सारे दोस्त बिमला एंड मरियम जी आपने गाना मांगा है मरियम हम आपका गाना ढूंढ रहे हैं जो गाना आपने मांगा है विदुला शर्मा से कोबिन कहते हैं कि कमाल के गाने हैं थैंक यू निशा भवानी निशा फ्रॉम सुरीनाम हाय निशा आहा ये गाना तो बनता है आज निशा प्लीज डोंट माइंड ये गाना तो मैं आज चला के ही रहूंगी इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम और वैसे भी आज फ्राइडे है तो 1 बजे के बाद शायद मैं शामिल कर दूं अपने इस प्रोग्राम में ये गाना जहां पर रागिनी जी हैं तो रागिनी जी शायद आपको ये गाना पसंद हो शिरिन अली आपका भी हम वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में अनुष्का बसावन

कहते हैं ऐसे गाने सुनकर तो पूरा दिन मजे में कट जाएगा. थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. Making a great Friday with you. That's Prince Love Kush. Thank you, Sweetheart. Thank you so much. निशा कहती है लता जी के सारे गाने पसंद है, तो ये भी पसंद आएंगे ना.

0: RM3 Radio.
1: ओहो, अरे कोई सांस तो छेड़ो। झुका के सर को पूछो, मैडम, हाउ डू यू डू?
2: नहीं नहीं नहीं,

0: I like you.
1: अब तुम्हारे भेजे में बात आई, अब आगे बढ़े।
2: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, अरे तू भी चुप हो जा। खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
1: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
3: ऐसा क्या?
1: हाँ,

0: सुहाना सफर, सुहाना
1: सफर। कमाल का गाना था, सत्य पे सत्ता और हम भी तो साथ साथ में हैं। चलिए जी, घड़ी इशारा करिए, अगले गाने के साथ हम बढ़ेंगे अभी 1 बजे के समाचारों की ओर। उससे पहले हम सुल्ताना कांदाए क्या ना लियोना रांची सवित सवित्री अपना और साथ में सुविता सरिता थामा और करुणा उनके सभी लव्ड वंस के लिए सरोज मनोज आजागैन प्रदीप और प्रमीला खवकिया से हैं एंड वी हैव कुको किरण जो साथ दे रहे हैं सलोनी गादिन हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ी हुई हैं और वी हैव

0: Irene Calamity from Malaysia. Actually, we have so many people listening to us from Malaysia जो हमें follow करते हैं TikTok पे. Thank you so much, guys. Share करते रहिएगा अपने अपनों के साथ, अपने friends के साथ, ताकि वो भी हमारे program को enjoy कर सके, जो कि यहाँ पर हो रहा है live from Mauritius. All right, Shalini हमारे साथ है, उनके husband Anoop, बेटा Ayur और बेटी Ayushi के लिए गाना होगा. And यहाँ पर माया जी कहती हैं कि मेरी बेटी घर पर है, एक सुंदर गाना डाल दो उनके नाम स्वीटी. अभी एक मंस वो घर पर रहेगी, तो स्वीटी के लिए स्वीट सा गाना ये यहाँ पर हम लेकर आए हैं आप सभी लिसनर्स के नाम. चलिए तो अगले गाने के साथ आगे बढ़ते हैं. और अगला गाना कहाँ, ये आ ही गया.
1: मैंने एक गीत लिखा है,
0: ये गाना वीना सुधू के नाम.

उनकी बीवी सुखवंती के लिए ये है गंगाराम फैमिली. थैंक यू सो मच साथ देने के लिए. हैप्पी बर्थडे यहाँ अशोक की तरफ से पैमेला रामास्वामी. रेखा के लिए गाना इंदिरा मुतव सिंह और साथ में हमारे उन दोस्तों के लिए जिनको ये गाना पसंद है. एंजॉय करें. हेलो वेस्ट, हाउ आर यू?

0: शकी टाइम स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली ये एक बज रहे हैं। आइए सुनते हैं समाचार पूजा के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनीशा, सभी को मेरा नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंत्री राजेश भगवान ने देश की रक्षा और संरक्षण के लिए नागरिकों से सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया है। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि सरकार द्वारा लगातार सफाई अभियान चलाए जाने के बावजूद अवैध रूप से कचरा फेंकने की समस्या अभी भी बनी हुई है। मंत्री राजेश भगवान ने कहा है कि ऐसी गतिविधियाँ कचरा प्रबंधन की लागत को बढ़ा देती है और परिणाम रूप विकास से जुड़ी अन्य परियोजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधन और वित्तीय साधन कम हो जाती हैं। ये सप्ताहांत मॉरिशस के लिए एक ऐतिहासिक अवसर लेकर आएगा। मॉरिशस पहली बार के लिए मोशवाजी में अफ्रीकी ओपन वाटर स्विमिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इस महाद्वीप प्रतियोगिता में पूरे अफ्रीका से 120 से अधिक तैराक भाग लेंगे। इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में मॉरिशस की टीम का प्रतिनिधित्व 17 तैराक कर रहे हैं। इसे टापू में ओपन वाटर स्विमिंग के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम स्पोर्ट्स सिलेक में आमंत्रित मॉरिशस तैराकी महासंघ के अध्यक्ष ने इस प्रतियोगिता के महत्व पर बात की। उन्होंने कहा कि ये आयोजन ओपन वाटर स्विमिंग को और अधिक लोकप्रिय बनाने तथा देश में इस खेल को नई गति और ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होगा। लगभग 30 फोटोग्राफ प्राकृतिक दृश्य और दुनिया के विभिन्न कोने में कैद अनमोल पल लुहब फिनिक्स स्थित अतिलिये और पुतू समय शेला दसंत मिशेल मॉस जुबुआ और स्टीव जुबुआ अपनी प्रदर्शनी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका शीर्षक रखा गया है एन टूत इंटिमिते, यानी पूर्ण आत्मीयता के साथ। ये प्रदर्शनी 15 जून तक खुली है, जहां कला केवल सौंदर्य की अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि एक परोपकारी उद्देश्य से आयोजित की गई है। विदेश में सार्वजनिक खर्च की निगरानी करने वाली संस्था नेशनल ऑडिट ऑफिस ने खुलासा किया है कि एंड्रू माउंटबेटन विंसो को 3 कॉटेज को आगे किराए पर देने से अघोषित किराया आय प्राप्त हुई थी। ये कॉटेज क्राउन एस्टेट से रेंट पर लिए गए रॉयल लॉज एस्टेट पर स्थित है। नाउ की रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि राजा उन शाही महलों में रहने के लिए किराया देते हैं जहां माउंटबेटन विंसो की बेटियां प्रिंसेस इजेनी और प्रिंसेस बियात्रिस रहती है, जबकि वे कार्यरत शाही सदस्य यानी वर्किंग रॉयल्स नहीं है। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए कुछ ही समय में शोक समाचार। बागेलू स्ट्रीट

0: फेयरचिल न्यू ग्रोव में बागोइलू स्ट्रीट मो फेयरचिल न्यू ग्रोव में 102 साल की 102 ईयर्स श्रीमती जसोदा राजमन जिन्हें लोग देवंती नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दोपहर के 3 बजे इनके बेटे ज्ञानदत्त बुधन के मकान बागेलू स्ट्रीट मोफियाचिल न्यू ग्रोव से उठाकर रॉसबेल कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। कॉलेजेस फॉर एस साइड में 70 साल की 70 ईयर्स ओल्ड विधवा सरोजिनी भगरीत पैदाशी नाम परिमा और जिन्हें लोग परिमा नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दोपहर के 3 बजे इनके बेटे सत्यम भोगरीत के मकान कॉलेज फॉर एस साइड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रणमायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3 PM। नंबर 31 शॉल डिकेन लेन बुबासम में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड श्री देवराज चंदारिका बिकू जिन्हें लोग चिबाई नाम से भी जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ है आज दिन के 2 बजे इनके मकान नंबर 31 शॉल डिकेन लेन बुबासम से उठाकर कॉलिव्यू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। और नंबर 16 ऑग्रा स्ट्रीट थॉकबा पोर्टविस में 81 साल की 81 ईयर्स ओल्ड श्रीमती देविका गोकुल पैदाशी नाम राम भुवन और जिन्हें लोग संता नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थ है आज दिन के 2:30 इनके मकान नंबर 16 ऑग्लुआ स्ट्रीट थॉकबा पोर्टविस से उठाकर थॉकबा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBCRadio.TV. You're listening to RM3 Radio Manoranjan.

0: है बस यही अरमान, लेकिन आपका अरमान क्या है वो हम अच्छी भले भले बातें जानते हैं।
1: सुहाना सफर
0: और सफर को सुहाना बनाते हैं कौन? हमारे हम सफर बोले तो हमारे वो लिसनर्स जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेडियो सुन रहे हैं। वैसे जो घर पर हैं वो तो कामकाज में लगे हैं, लेकिन जो हमारे साथ टिकटॉक पे है ना, उनके साथ बड़ी बड़ी बातें होती हैं। उत्तम जी नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? चलिए जी, यहाँ पर रजनी महावीर हैं, उनकी सहेली अनीता के लिए गाना मांग रही हैं, और साथ में यहाँ पर साधना जी का बर्थडे है तो मुकेश जी की तरफ से उनको हैप्पी बर्थडे। मोहिनी जी हमारे साथ हैं, जयविंद सीतल हमारे साथ हैं, कविता, रेखा, आरती, सदा सिवन कहती है हम यूके से देख रहे हैं आपको, इतना प्यार, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारे साथ हैं हियांश, रेहा, संजनी, लता और देव न्यूजीलैंड से हैं, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और यहाँ पर जल्दी से आयशा आई है, कहती है जल्दी से आके क्विक हाय बोल के मैं फिर भाग रही हूँ, बस इतना बताने आई है कि वी लव यू एंड थैंक यू सो मच आयशा, इट रियली मीन्स अ लॉट। चलो आयशा के लिए गाना होगा। यहाँ पर दीक्षा को कहेंगे हेलो, प्रिय है इटली से, मनोज है होलैंड से, कविता दिलीप के लिए गाना होगा, जय सिंह के लिए, राजेश एंड प्रकाश वी से हाई वीना, टीना टूरी, अमीला रामा हमारे साथ है। चलिए जी, इन सारे दोस्तों को कहेंगे एक बार फिर बहुत बहुत प्यार और एक गाना जिसकी फरमाइश आई है और जो गाना मेरे लिस्ट में है, बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा गाना है लता जी की आवाज़ में। यहाँ पर हमारे साथ हैं युदेश फूलचंद, आपका भी वेलकम करते हैं। यहाँ पर एक क्विक हेलो के लिए आयशा आई थी और चली भी गई, लेकिन जाते जाते प्यार दी गई। ऋषि बुधू, आपका हम वेलकम करते हैं। मनीता जी कहती हैं हम भी तो फ्रांस से आपको देख रहे हैं, जी बिल्कुल, कैसे भूल सकती हो। चलो जी, यहाँ अनुराधा जी वेलकम है, स्वागत है, ऐसे आपका भी वेलकम करते हैं। ऐसा समा तो बिल्कुल नहीं होता अगर आप हमारे साथ नहीं होते। पूनम संभू जी नमस्कार,

0: सुहाना सफर
1: 1:16 हुए हैं, विदिता का साथ दे रहे हैं हमारे सेकंड आवर में और ये है प्रोग्राम सुहाना सफर RM3 रेडियो मनोरंजन पर। तो चलिए, यहाँ पर हमने बताया आपको यहाँ पर कितने सारे लोग हैं दुनिया के कोने कोने से हमारे साथ जुड़ जाते हैं, UK हो, न्यूजीलैंड हो, इटली हो, होलैंड हो, या तो फिर कितने सारे लोग हैं जो परदेश में हैं सुनते हैं हमें। यहाँ पर ट्विंकल है मडागास्कर से हमें सुन रही है। हाई ट्विंकल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, थैंक यू फॉर चूजिंग रेडियो मनोरंजन RM3। वैदेही एंड साथ में हंसराज और साथ में है अफीजा साइलेश, गुरु और वीना गंगाधर फैमिली के लिए वी हैव आशा एंड युद्धीश फुलचन। बड़े शरारती हो भाई, हम कहते हैं कि यहाँ पर नए गाने नहीं चलाते, फिर भी आप नए गाने ही सुनने। चलो बाद में, और अभी के लिए तो हम आशा लखनौत आपके लिए गाना डेडिकेट करते हैं। उत्तम जी कहते हैं कि कोई प्यारा सा गाना मेरे और मेरी टीम के लिए। वैसे आपने गाना भी मांगा है, मैं ढूंढती हूँ वो गाना। बाकी तो यहाँ पर जो लोग हमारे साथ हैं उनको हमारा अगला गाना पसंद तो ज़रूर ही आएगा।
2: RM3 Radio.

0: दिल उसे दो जो जान दे दे जान उसे दो जो दिल देते, दोनों में तो घाटा ही हुआ ना।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
0: जी हाँ बिल्कुल, चलो लिखने वाले ने लिख दिया और गाने वाले ने गा लिया, सुनने वाले ने सुन भी लिया और हमने यहाँ पर प्रॉब्लम बता भी दिया। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम के साथ। यहाँ पर वह देवी कहती उनकी सिस्टर इंदिरा के लिए गाना हो जाए। वी हैव अश्वीर तजीम मुगीर हमारे साथ हैं। हेलो, ये है मिसेस सिंह फ्रॉम कैथोसे। अनुराधा कोमल आपके लिए गाना हम डेडिकेट करेंगे। विजय सिंह है साउथ अफ्रीका से। अंजू सूर्या, रीता सुगलाम, सी डब्ल्यू ई टीम जो बनमे में काम करी है, अश्विनी खिरोदर और साथ में है संगीता सुखाड़ी, रेशमा हमारे साथ है एंड यहाँ पर यश हमारे साथ है। कैसे हो जी? मुझे तो लगा कि आप भूल गए कि यहाँ पर हम प्रोग्राम लेकर आए हैं। बबीता बंधु जी एक बार फिर से बहुत सारा प्यार आपके लिए, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे किसी ने कहा रोजेज और रेड सी इज ब्लू। ओके, रोजेज और रेड सी इज ब्लू, वन एवर आई सी यू आई कांट हेल्प स्माइलिंग एट यू। चलो जी, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। साधना सुकन होरेल जी कैसे हो आप, यहाँ पर साथ दे रही हैं आप हमारे। अब यहाँ एक गाना है, उत्तम जी ने इस गाने की फरमाइश की थी, सोच रही हूँ कि आपको आपके दिल की चैन दे ही दूँ। चैन तो यहीं पे मिलता है, प्रोग्राम है सुहाना सफर। टिकटॉक पे जिसने भी हमारे लोग हैं लाइव हमारा हमें फॉलो कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और रंजू कहती है एजी के लिए गाना हो जाए, लो चल पड़ा।

ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, अब आपके दिल को चैन मिल गया होगा। चलिए सज्जद, आपने गाने की फरमाइश की लेकिन यहाँ पर मूड थोड़ा सा बदल रहा है। अगला गाना सज्जद आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए यहाँ पर गाना जो है डेडिकेट करते हैं होलैंड में सुनने वाले हमारे सभी लिसनर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो अभी मूड बदलने के लिए एकदम तैयार हो गए हैं। भूलिएगा नहीं कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे में जाने से पहले हमेशा हम थोड़ा हंगामा करके जाते हैं ना। नेक्स्ट गाना होगा फॉर माय फ्रेंड वीना सीदोयाल जो हमारे साथ है। साथ में अंश फ्रॉम कालबास, गाना उनके पापा सूरज जिनका आज बर्थडे है, डेडिकेट करते हैं उनके सभी बच्चों, उनकी मम्मी, भाई, सिस्टर, सभी फैमिली की तरफ से।

0: में हम तो कहेंगे कि क्या सफ़र है, ये सुहाना सफ़र है। इस सफ़र को सुहाना बनाते हैं आप हमारे प्यारे लिसनर्स, इसलिए आपको दिल के गहरे या उससे बहुत बहुत शुक्रिया।
1: सुहाना सफर।
0: दिन के 1:40 हुए हैं। अनीता पर तो बफली कॉम्प्लेक्स से साथ दे रही हैं। महिंदर जी कैसे हैं आप? हमारे साथ टिकटॉक पे जुड़े हुए हैं। दिनेश गोपी जी का भी हम स्वागत करते हैं। कहते हैं कर्ज मूवी का गाना, सारे गाने तो कमाल के हैं लेकिन ये वाला हिट डिफरेंट, राइट? चलिए तो यहाँ पर कहते हैं आज दिल खुश हो गया हमारे इन खूबसूरत गीतों के साथ। विनन का हम वेलकम करते हैं। संदीप सिंह कैसे हैं? कहते हैं ब्यूटीफुल प्रोग्राम, आपके गाने बहुत अच्छे लगे एंड टेकिंग मी डाउन मेमोरी लेन, थैंक यू सो मच। अनिल तिरबू, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। यहाँ पर हमारे साथ हैं प्रिंस नितेश, थैंक यू फॉर लविंग द सॉन्ग्स एंड आपका हम स्वागत करते हैं। दिनेश गोपी, बिल्कुल सही, बिल्कुल गज़ब प्रोग्राम चल रहा है तो हम भी एकदम गज़ब के ही हैं। चलिए जी, वीना गंगाधर का भी हम स्वागत करते हैं। कहते हैं ये साड़ी मुझे दे दे गब्बड़ की बहन, गब्बड़ की बहन। अच्छा ठीक है, तो गब्बर से ही मांगना पड़ेगा। और यहाँ पर तरुण हमारे साथ हैं। वेदिता रानी, अरे वेदिता रानी को मस्का मारा बंद करो, 20 मिनट हो गए अभी ख़त्म होने में प्रोग्राम, अब आ रहे हो, चलो थैंक यू सो मच। ज्ञाना शिवसरन हमारे साथ हैं, चलिए गाना उनके लिए हम डेडिकेट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गीता कालीचरण हमारे साथ हैं, गाना होगा आपके नाम। अभी मैंने कहा था ना निशा जी हमारे साथ हैं तो गाना याद आ गया था मुझे, शुक्रवार है ना, फ्राइडे में ऐसे ही गाने चलते हैं। आज कुछ गाने ज़्यादा रोमांटिक हो गए लेकिन नॉर्मली हम लोग 1 बजे के बाद तो धमाका ही करते हैं। सर्दी का मौसम है इसीलिए थोड़ा रोमांटिक गाने ज़्यादा हो गए। मंजूरी का कैसी हो बहन? चलिए साथ मिलके गाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं। इट्स फ्राइडे।

चलिए जी, प्रिया लक्ष्मण उनके हस्बैंड उनकी बेटी उनके दामाद के लिए जाना इसके आपका स्वागत करते हैं और गाना होगा आपके लिए फिल्म है सनम तेरी कसम।

पहुंच गए वहां जहां तक हमें पहुंचना था। जी बिल्कुल, कार्यक्रम का अगला गाना आपके लिए लेकर आए हैं हम, और ये है बड़े दिल वाली फिल्म का गाना जिसे आप पसंद करेंगे। और ये जो प्यारा सा गाना है माया रामजग जय और निवेन के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच दीप्ति जी। भूलिएगा नहीं कि कल हमारी टीम होगी ब्लू बे बीच में, सुबह जल्दी आ सकते हैं हमारे साथ, कुछ मस्ती कर सकते हैं। जी हाँ, हम होंगे वहाँ पर 12 बजे से, आप आ सकते हैं हमसे मिलने के लिए। तो फैमिली के साथ आएगा, मम्मी पापा के साथ आएगा, भाई बहनों के साथ आएगा, फ्रेंड्स के साथ आएगा। बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे गेम होंगे वहाँ पर, सिंगर होंगे हमारे साथ, डांस भी करेंगे हम, ठीक है। तो कल ब्लू बे भूलिएगा नहीं, ठीक है। कितने बजे भाई, आप जल्दी भी आ सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पर, हमारा जो प्रोग्राम होगा रेडियो का वो तो होगा 1 बजे, तो आप उससे पहले भी आ सकते हैं, 12 बजे भी आ सकते हैं हमसे मिलने के लिए, हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। हाय नीलू, कैसे हो आप? यहाँ पर निवेन हमारे साथ हैं, कहते हैं कि हाँ छाता वाता साथ में लेके आएगा, ठीक है जी। बारिश का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी बरस जाते हैं, कोई बात नहीं। नीलू कहती है नेक्स्ट गाना भाभी रागिनी के लिए, और बहुत सारा प्यार महेंद्र जी आपकी तरफ से, थैंक यू सो मच।

0: सुहाना सफर सुहाना
1: सफर। जैसे यहाँ गाने में गोली चली वैसे मुझे लगता है ये वक्त जो है मेरे कनपट्टी पे गन दिए हुए कहता है जल्दी कर, 5 मिनट में तेरा प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। उसके बाद गृत नृत्य कला आप सुन पाएंगे और जी हाँ हमारा जो प्रोग्राम है गीत नृत्य और परंपरा वो एक्चुअली आप सुन पाएंगे। चलिए जी, डर तो हम भी गए हैं लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। अश्विनी किरोदर गाना आपके हस्बैंड के लिए और साथ में यहाँ शवि, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। बुद्राम फैमिली एंड सभी फ्रेंड्स के लिए गाना होगा, शवि थैंक यू एंड इम्तियाज़ मोहम्मद आपका भी थैंक यू। और साथ में गाना होगा दादी सीता श्वेता दिवांश के लिए, शिमला गुरंग सिंह एस्ता थैंक यू सो मच, प्रेमिला जद्दू जी आपके लिए भी गाना होगा और साथ में मार्कस थैंक यू सो मच, सुरेखा जी थैंक यू सो मच आपको भी कहेंगे, मनीता माधुरी वैदेही सबको अब बाय बाय कहने का टाइम आ गया है, कल्याणी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, सिमी रामदत्त आपका भी हम स्वागत करते हैं। एंड यहाँ पर गाना होगा फॉर मोहित जो कि तायाक से हैं और गाना लीजिए चल पड़ा आपके लिए। ये गाना हम खास तौर पे डेडिकेट करना चाहेंगे हमारे उन तमाम दोस्तों के लिए, जी हाँ साथ दे रही हैं जो आशा जानू जी कॉटेज से हैं, आपकी पूरी फैमिली के लिए, जानू फैमिली के लिए।

0: Time check 2 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें. पूजा से आपको नमस्कार.
1: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार. विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंत्री राजेश भगवान ने देश की रक्षा और संरक्षण के लिए नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की मांग की है. उन्होंने खेद व्यक्त किया कि सरकार द्वारा लगातार सफाई अभियान चलाए जाने के बावजूद अवैध रूप से कचरा फेंकने की समस्या अभी भी बनी हुई है. मंत्री राजेश भगवान ने कहा है कि ऐसी गतिविधियां कचरा प्रबंधन की लागत को बढ़ा देती हैं और परिणाम स्वरूप विकास से जुड़ी अन्य परियोजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधन और वित्तीय साधन कम हो जाती है. ये सप्ताहांत मॉरिशस के लिए एक ऐतिहासिक अवसर लेकर आ रहा है. मॉरिशस पहली बार के लिए मोशवाजी में अफ्रीकी ओपन वाटर स्विमिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है. इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में पूरे अफ्रीका से 120 से अधिक तैराक भाग लेंगे. इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में मॉरिशस की टीम का प्रतिनिधित्व 17 तैराक कर रहे हैं. इसे टापू में ओपन वाटर स्विमिंग के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इस बीच यह आयोजन ओपन वाटर स्विमिंग को और अधिक लोकप्रिय बनाने तथा देश में इस खेल को नई गति और ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होगा. लगभग 30 फोटोग्राफ प्राकृतिक दृश्य और दुनिया के विभिन्न कोने में कैद अनमोल पल लेहब फिनिक्स में आतेलिए पुतुस में शेला डांसों मिशेल मुस जुबुआ और स्टीव जुबुआ अपनी प्रदर्शनी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका शीर्षक रखा गया है En toute intimité. ये प्रदर्शनी 15 जून तक खुली रहेगी, जहां कला केवल सौंदर्य की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि एक परोपकारी उद्देश्य से आयोजित की गई है. विदेश में बढ़ते तापमान और चरम मौसम संबंधी घटनाओं में वृद्धि के बीच विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया को एल नीनो की वापसी को लेकर चेतावनी दी है. संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी ने सभी देशों से अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम को और मजबूत करने की मांग की है. संगठन का कहना है कि जून से अगस्त 2026 के बीच एल नीनो जैसी परिस्थितियों के विकसित होने की 80% संभावना है. एल नीनो के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि, सूखा, बाढ़, हीट वेव और अन्य चरम मौसमीय घटनाओं के बढ़ने का खतरा रहता है, जिससे दुनिया के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है. तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए. कुछ ही समय में शुभ समाचार. बागेलू स्ट्रीट मोफियाचिल न्यूग्रोव में एक 102 साल की 102 years old श्रीमती जसोदा राजमन. श्रीमती जसोदा राजमन, जिन्हें लोग देवंती नाम से अधिक जानते थे, की मृत्यु हो गई है. इनके अर्थ है आज सुबह के तीन बजे इनके बेटे ज्ञानदत्त बुधन के मकान बागेलू स्ट्रीट मोफियाचिल न्यूग्रोव से उठाकर रॉसबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 पीएम. नंबर 14 एस सहिलारी ब्लड एवेन्यू कैटबोन में 103 साल की 103 इयर्स ओल्ड श्रीमती सनमती दसोई पैदाशी नाम गोकुल और जिन्हें लोग सुगिन नाम से भी जानते थे की मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे इनके मकान नंबर 14 एस हिलारी ब्लड एवेन्यू कैटबोन से उठाकर थमामेल कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमोरो एट 12:30 पीएम. शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है.
2: You're listening RM Free Radio. Radio.
3: गीत, नृत्य और परंपरा.
4: सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं. आज पर्यावरण दिवस है और हम सभी को शुभकामनाएं देंगे पर्यावरण दिवस की. पर उसके साथ हमारे दायित्व भी हमें पहचानने चाहिए कि अपने घर को जैसे हम साफ रखते हैं, उसी प्रकार अपनी गली, अपने शहर, अपने देश को सुंदर रखे, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य तो बहुत है पर उसको संभालना हमारा कर्तव्य है। चलिए श्रोताओं, गीत नृत्य और परंपरा में अब हम कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो अतिथि आज जुड़े हैं वे हैं विश्वजीत महेश जी, जो श्रीमती रंबा राम तोहल के ग्रुप में जब गाते हैं सब लोग तो वह सहयोग देते हैं, और 2023 में अंधविश्वास पर एक गीत बना था जो पूरे वर्ष तक प्रथम रहा था, जो क्लिक रहा वो पूरे वर्ष तक बजता रहा, तो इसके लिए बहुत बड़ी बात है कि उस गायक को हम आपसे भी परिचय करवाएं आप सबसे। तो हम स्वागत करते हैं आपका विश्वजीत महेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज हमारा सहयोग शीतल जी और भाई यूसुफ दे रहे हैं कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में। अब हम पूछते हैं महेश जी से कि आप के लिए संगीत गीत क्या है।
5: तो पहले सब श्रोताओं को मैं नमस्ते बोलना चाहता हूँ। तो संगीत और ये जो गाना है ये जीवन में सभी के जीवन में होना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से लोग जितना भी भागा दौड़ी हैं, जितना भी स्ट्रेस हैं, सब इससे इसके द्वारा सब निकल जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग तो सिर्फ सुनते हैं, अगर लोग इसको अपने अंदर से जानते हैं कितने कलाकार हैं दुनिया में, मॉरिशस में भी, लेकिन छुपा हुआ
4: स्थानीय कलाकार हैं,
5: बहुत हैं, और बहुत छुपा हुआ कलाकार हैं जो अपने प्रतिभा वो लाना नहीं चाहते हैं, आगे लाना नहीं चाहते हैं, उसके एक डर होता है उसमें,
4: अपनी प्रतिभा को पहचान नहीं पाते।
5: हाँ, सिर्फ वो क्या करते हैं, छुप छुप के गाना गाते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं मैंने देखा है, और अभी तो जैसे टिकटॉक वगैरह हो गया है तो वहाँ पे देखते हैं कि वो मंच पे छोटा छोटा जो वीडियो पोस्ट कर देते हैं ना, तो उसी से हमें पता चल जाता है कि कहाँ तक है उसका।
4: आपने बहुत सारे MBC के भी कार्यक्रमों में भाग लिया है और आप टोली के साथ भी गाते हैं, आपके 4 एल्बम्स हैं। हाँ। और साथ ही साथ आपने 35 से भी अधिक गीत लिख कर आपने उनका आयोजन किया और श्रोताओं को सुनाया। आप स्वयं जब गीत लिखते हैं तो कोई विशेष विषय का चुनाव करते हैं या कि जो मन में आ रहा है वो प्रवाह आपके गीतों में उतरता है?
5: बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं एक कलाकार होने के नाते मैं कहता हूँ, बहुत कलाकार हैं जो सभी लोग तो अच्छे ही गाते हैं
4: जी,
5: लेकिन अगर एक गाने में जब आप लिखते हैं तो उसमें अगर एक संदेश होगा तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि संदेश के जानते हो गाने में जितने संदेश होता है उसी से हम लोग प्रेरणा लेते हैं, उससे
4: अपना संदेश लोगों तक पहुंचा पाते हैं
5: और उस संदेश को लोग समझते हैं, तो संदेश अगर होगा अच्छा संदेश तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैं भी जब गाना लिखता हूँ मेरे दोस्त

0: पूछते हैं मुझसे क्यों ऐसा गाने नहीं गाते। मैंने कहा कि जब मैं लिखता हूँ तो मेरे जो जो जो गाना है उसमें ज़्यादा संदेश ही होता है।
1: आज पर्यावरण दिवस है, इस पर आपका एक गीत है, आप श्रोताओं के साझा करेंगे
0: थोड़ा सा एक मुखड़ा?
1: ज़रूर, स्वागत है।
0: तो ये गाना पहले मैं बोल देता हूँ कि जब ये गाना मंत्रालय की तरफ से जब एक ऑफर आता है, हमारे जितने कलाकार हैं स्थानीय कलाकार हैं एक ऑफर आता है, तो जो उसमें हम लोग जो टॉपिक चुनते हैं तो बहुत टॉपिक होता है, या छोटा फिल्म बनाने के लिए ऐसे होता है, तो मैंने गाना चुना और पर्यावरण जो उसका सबसे पहला शीर्षक था, हाँ, तो उसको मैंने चुना। मैंने सोचा कि पर्यावरण आज जहाँ पे सुनते हैं ये क्लाइमेट चेंज ऐसा हो जाता है, एक बार बारिश फ्लास फ्लड आता है,
1: ग्लोबल वार्मिंग हो रही है,
0: ग्लोबल वार्मिंग, और जल बोलते हैं ना पेड़ अगर एक काटो तो आपको एक
1: लगाना
0: भी चाहिए,
1: हाँ,
0: ताकि क्योंकि वो तो प्रकृति है ना, उससे हमें जो प्रकृति जब को हमको कुछ देता है तो हमको उस प्रकृति को कुछ देना चाहिए ना,
1: वो परंपरागत, हाँ, हमारा संजोने का अधिकार है, हाँ, और कर्तव्य भी है,
0: हाँ, तो उसी से मैंने सोचा कि ये बहुत एक अच्छा एक
1: विषय है,
0: उससे विषय को लेकर मैंने ये पर्यावरण गाना लिखा। तो एक छोटा सा मुखड़ा
1: जी,
0: पर्यावरण के साफ रखा हो, पर्यावरण के स्वच्छ रखा हो, गांव गली सगड़ो तू साफ रखा हो, गांव गली सगड़ो तू स्वच्छ रखा हो, पर्यावरण, ऐसे चलता है गाना, हाँ, ये तो उसका जो अंतरा है, हाँ, मुखड़ा है उसका, अंतरा के दौरान अगर आप ये गाना सुनेंगे तो उसमें कितने कितने संदेश मैंने भेजा है, जो आजकल जो ये पूरी दुनिया में ये सब ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं, ये सब चल रहा है, तो उसमें सब है
1: जी,
0: हाँ, उसका एक वीडियो क्लिप बनाया है, वो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, अगर लोग देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि कितना कैसे बनाया गया
1: संदेश है,
0: संदेश है।
1: अब मैं पूछना चाहूँगी कि जब आप गीत लिखते हैं, पहले भी मैंने यही प्रश्न किया कि आप उसमें एक संदेश डालते हैं, क्या आपको अपने गीत लिखे हुए गीतों पर भरोसा है, या कि आप किसी से वो एडिट करवाते हैं अपने लिरिक्स को, या कोई गुरुजन हो, हाँ, जिससे आप, या कोई दोस्त होता है, भाई ये गीत लिखा है इसमें कुछ गलत
0: कुछ
1: नहीं
0: गलत
1: है,
0: हाँ,
1: या कुछ अच्छा संदेश और बेहतर बनाया जा सकता, हाँ, है?
0: नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया, देखो अपने ये तो अपना अपना राय होता है कि मैंने अच्छा लिख दिया
1: जी,
0: लेकिन
1: जो चीज मेरे लिए अच्छी है हो सकता है दूसरे के लिए
0: ठीक ना हो
1: जी,
0: तो इसलिए मेरा एक दोस्त था जो एक दुर्भाग्यवश आज वो हमारे बीच नहीं है
1: जी,
0: एक बहुत अच्छा म्यूजिक कंपोजर था
1: जी,
0: तो मैंने जब वो कंपोज करते हैं, जानते हो ना जब एक एक गाना को कंपोजिशन होता है तो वो शब्द उसको म्यूजिक में बैठना चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: तो बोल रहा था कि देखो शब्द अच्छा है लेकिन उसका जो एक दूसरा एक
1: सुरताल में वो सही नहीं बैठ,
0: हाँ,
1: रहा है,
0: नहीं बैठ रहा है, तो इसलिए वो एडिट हो जाता था
1: जी,
0: और मुझे भी अच्छा लगता था कि क्योंकि जब आप गाते हैं तो एक शब्द अगर जानते हो ना गाना एक कविता की तरह होता है,
1: बिल्कुल, अगर वो लय सुरताल सब बैठना, हाँ, में बैठना
0: सबको बैठाना पड़ता है,
1: बिल्कुल,
0: तो ऐसे वो मुझे बहुत मदद किया, मेरा बहुत मदद किया, जो एल्बम भी बनाया सब में, तो ऐसे ऐसे करते उसके पास जाने लगा, लेकिन दुर्भाग्यवश वो आज तो नहीं है, लेकिन अभी एक सिर्फ लिखने के लिए एक गुरु मिला है
1: जी,
0: पहले उसको प्रणाम कर देता हूँ, गुरु जी धाना जी नाव जी, जो मेरे एक दो गीत लिख चुके हैं और अभी दूसरे गाना पर काम कर रहा हूँ मैं।
1: आप गुरु से लिखवाते भी,
0: हाँ,
1: हैं,
0: लिखवाते,
1: तो उनको आप अपने मन की बात बता पाते हैं कि इस विषय पर मुझे एक गीत लिखना है, या कि जो भी वो लिखें आप उसको सुरताल में डालते हैं?
0: अच्छा बोला आपने, पिछले बार जब उसके पास गया तो मैंने जब एक शीर्षक चुना तो उसने बोला कि मैं बहुत लोगों के लिए गाना लिखता हूँ, खुद गाता हूँ, खुद लिखता हूँ, लेकिन आपका जो शीर्षक होता है ना मुझे बहुत अच्छा लगा, तो जैसे मैंने अभी पिछली बार अभी गाना चला था, दो साल हुए, वो पहले नंबर पर आया था, जिस दिलाने जो बोलते हैं
1: जी,
0: हाँ, बेस्ट सॉन्ग ऑफ जया भोजपुरी, तो उसका शीर्षक था पानी के बुलबुला।

0: तो लोग सोचते हैं ये क्या है, पानी का बुलबुला, तो ऐसे ऐसे शीर्षक लेके आता हूँ मैं। तो उसको बहुत अच्छा लगा, बोला कि ये जो ये शीर्षक लेके आते हैं जैसे, तो ज़्यादातर तो लोग इस पर काम नहीं करते हैं, जो साधारण होता है उसको लेके गाना लिख के गा देते हैं।
1: पानी का बुलबुला थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए गा पाएंगे आप?
0: पहले तुम बता देना चाहते हैं पानी के बुलबुला जो होता है, पानी जब बरसता है तो पानी जो जमा हो जाता है इसे थोड़ा सा, तो उसमें जो दूसरे पानी बरसता है ना तो उसमें एक बुलबुला हो जाता है,
1: बबल।
0: तो, हाँ बबल। तो बुल मैंने बहुत जगह पे सुना है कविता में गाना में कि पानी के बुलबुला, पानी के बुलबुला जब बोलते हैं तो वो एक क्षण के लिए होता है
1: जी,
0: बहुत बहुत छोटा समय के लिए, तो हमारा जिंदगी भी वैसे ही है।
1: बिल्कुल, वो जीवन से जोड़ा जाता है कि जीवन हमारा एक बुलबुले के समान है।
0: सिर्फ ये नहीं, जो हमारे जितने होते हैं, हमारे खुशी होता है वो भी वैसे होता है, हमारे गम होता है वो भी वैसा ही होता है,
1: बिल्कुल
0: एक पल के लिए होता है। तो मैं ऐसे ऐसे जो जो जो शीर्षक होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वो गाना चला, गाना गुरु जी ने लिखा और बहुत अच्छी तरह से लिखा, गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक मुखड़ा ये भी
1: जी।
0: पानी के बुलबुला बा, पानी के बुलबुला, पानी के बुलबुला, अहो लोगो जीवन बाहो पानी के बुलबुला, ऐसा।
1: तो आपने यही मैंने कहा, वो पर्यायवाची बनता है हमारे जीवन के साथ। हाँ, हाँ। हमारे आयु जो है वो कुछ मायने नहीं रखती है, वो एक बुलबुले के समान है जो हम बढ़ा पाते हैं। चलिए एक गीत के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, फिर चर्चा जारी रहेगी आपके साथ।

0: गीत नृत्य और परंपरा।
1: आज हमारी बातचीत गीत नृत्य और परंपरा में विश्वाजीत महेश जी से हो रही है। श्रोताओं जो फेसबुक लाइव भी जुड़े हुए हैं उनके लिए भी आज भोजपुरी और हिंदी के गीतों को जो गाते हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। महेश जी, आप कब से गीत गाते हैं, किस उम्र से?
2: वैसे तो गाते थे बहुत
1: बचपन से जी।
2: और
1: मतलब तब गीत गवाई की टोली या किसी मंच से या स्कूल के किसी स्टेज से आपने गीत गाया?
2: वैसे तो नहीं, ये सब नहीं चला मेरे जीवन में
1: जी।
2: लेकिन बहुत प्रेरित होता था जब MBC पर प्रोग्राम चलता था, तो जैसे कंपटीशन होता था गीत गाता चल रहा अग्रंग, तो हम टीवी के पास से
1: बिल्कुल
2: उठते नहीं थे जब तक। और हम जैसे जुड़े होता है ना, हम भी तो जुड़ी बन जाते थे कौन अच्छा गाता है कौन।
1: बिल्कुल
2: तो ऐसे उन्हीं यही प्रोग्राम लेकर हम लोग प्रेरित हुए हैं कि अगर वो लोग गा सकते हैं तो हम भी गा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो जब शुरू किया, लेकिन बहुत देर बाद, क्योंकि पता नहीं आगे बढ़ना नहीं चाहा या पता नहीं कोई ऐसे रुकावट आ गई।
1: कोई विशेष रुकावट नहीं थी, पर आपका झुकाव उधर ही रहा कि आपको गीत गाना है।
2: और जैसे बोलते हैं ना, अगर पीछे कोई होगा तो साथ देगा, तो ऐसा कोई नहीं मिला जो हमें
1: प्रोत्साहित
2: करे। तो लेकिन बाद में ये सब आया, क्योंकि जो जानते हो ये बॉलीवुड गाना से मैंने शुरू किया। भोजपुरी तो बाद में आया, जब मेरा बेटा है विकलांग है, वो बहुत गाना गाता है, तो जहाँ पे वो गलती कर देता था तो गलती को सुधारते थे तो सिर्फ वो शब्द को नहीं सुधारते थे, वो ताल को भी सुधारते थे। तो ऐसे करते थे, हम लोग गायक बन गए। आज देखो, अभी मैं एक मेरा एक ग्रुप था ऑर्केस्ट्रा में, कराओके में भाई कितने शादी जो
1: गीत गवाई की टोली के साथ जाते थे।
2: तो ऐसे ऐसे ऐसे करके बहुत गाना गा लिए। तो फिर मैंने सोचा कि लोग बोलते हैं कि तू भोजपुरी इतना अच्छा बोलता है, तो क्यों भोजपुरी नहीं गाता? तो मेरे जो दो बेटे हैं वो एक स्कूल गए बहनजी रामबा रामदोल के जहाँ वो
1: पढ़ाती है।
2: हाँ, तो वहाँ पे सिर्फ जो कैसे बोलते हैं, जो पाठशाला हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है वहाँ, जब
1: गायन भी सिखाया जाता है।
2: गायन भी सिखाया जाता है,
1: संगीत भी सिखाया जाता है।
2: तो ऐसे जब मैं जाता था तो बैठ के देखता था उन लोगों को, तो वो लोग ऐसे ही गाना शुरू कर दिया। तो बहन जी, तो फिर जब गाने लग गया तो बहन जी से बहुत दोस्ती हो गई हमारी, तो आना जाना हो गया। तो बहन जी बोलती थी, वहाँ पे प्रोग्राम करने जा रही हूँ, तुम्हारे पास तो जो ये सेटअप का सब चीज़ है, तो लेकर चलो मेरे साथ, आपको
1: उनको सहयोग देते थे।
2: सहयोग देते थे।
1: आपने देखिए आज माजा में रजिस्टर करवा लिया आपने, आपको इतने गीत बना लिए आपने, तो ये एक प्लस पॉइंट है जीवन में कि आप अपने कार्य से हटके अपने को, अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए गीतों से जुड़ते हैं। पर गीतों में जो आपको तृप्ति मिलती है वो सबके लिए एक सा नहीं होता है। किसी के लिए गीत खाली सुना और छोड़ दिया।
2: हाँ।
1: पर आपने उसमें रुचि दिखाई और इतने वर्षों से आप गीत गा रहे हैं, MBC के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, MBC ने आपको प्रोत्साहित किया प्रतियोगिताओं में भाग लेने।

0: के लिए मंत्रालय की ओर से भी ऐसे आयोजन होते हैं जिसमें आप भाग लेते हैं और आप चयनित भी हुए। पर्यावरण पर गीत लिखा, अंधविश्वास पर गीत लिखा। अंधविश्वास का एक गीत हम श्रोताओं के साथ साझा करें ताकि हम भी आनंद ले पाएं।
1: अंधविश्वास जो अब
0: क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। अंधविश्वास बिल्ली

0: ये एक अंधविश्वास है, पर कुछ लोग परंपरागत ये अंधविश्वास को जी रहे हैं कि रात को नाखून नहीं काटने हैं। उसके पीछे वैज्ञानिक का क्या है ये नहीं जानते हैं, पर एक विश्वास है कि हमें नाखून नहीं काटने हैं, कपड़े नहीं धोने हैं रात को, बालों को नहीं धोना है रात को, झाड़ू नहीं लगाना है, 6 बजे के बाद झाड़ू नहीं लगना चाहिए, 6 बजे से पहले जोत जल जानी चाहिए घर में। तो ये सब परंपरागत है, पर हम उसको अंधविश्वास भी मान सकते हैं और वैज्ञानिक रूप से क्या कारण है उसका भी हम खोज कर सकते हैं। तो गीतों के माध्यम से भी संदेश दे सकते हैं, जैसे आपने अंधविश्वास पर संदेश दिया।
1: अभी आपने एक बात बोली ना कि बिल्ली रास्ता काट देती है
0: जी,
1: तो ऐसे ये गाना भी ऐसे बन जाता है।
0: बिल्कुल,
1: बिल्ली रास्ता काट दिया उसे अंधविश्वास बन गया, उसे अब जितने भी अंधविश्वास है जितना जो लोग मानते हैं तो उसको लेके गाना बन गया। तो जैसे बोलते हैं ना, एक पहले एक मुखड़ा सुना देता हूँ, बहुत अच्छा गाना है जो मैं खुद गाया था, लेकिन बाद में मेरा भाई बोला कि मुझे भी गाना है, गाना बहुत अच्छा है, ये अंधविश्वास जो है ना सभी जगह पे चलता है, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो मैंने एडिट करके फिर से गाया, वो मुझे थोड़ा सा साथ दिया मेरा। तो गाना के बोल ऐसे हैं, हमर कंधवा से हतुआ तू उतार, नहीं तो तोर नानी के अखवा मुंद जाए, हमर द्वरिया में चिन्हा नहीं बनाओ, नहीं तो कर्जा बढ़ जाए। ऐसे ऐसे जानते हो, बोलते हैं ना जब ऐसे चिन्हा बनाते हैं,
0: आप कंधे पे हाथ रखते हैं तो किसी की नानी की मृत्यु हो जाती है जी।
1: तो इसी ऐसे ऐसे सब लेके ये गाना बन गया। तो इसमें बहुत हैं जो आप गाने सुनेंगे तो जो कितने अंधविश्वास हैं, जो लोग आज तक नहीं मानते हैं, कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन सबके अपने अपने
0: अपना अपना विश्वास है, अपनी अपनी जानकारियों के आधार पे। कुछ लोग, आज के जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी जो है वो प्रश्न करने वाली है, उसमें वैज्ञानिकता ढूंढी जाएगी, उसमें कारण ढूंढा जाएगा कि ये विश्वास क्यों है। जब माँ कहती है 6 बजे से पहले घर आ जाना, तो बेटा पूछता है या बेटी पूछती है आज की क्यों, ये क्यों जो पूछना है ये कहीं बहुत अच्छी बात है, पर जब हम परंपरागत जीते हैं तो हम अपने माता पिता से प्रश्न नहीं करते थे, जो माता पिता ने कह दिया वो पत्थर पे लकीर है। पर आज के बच्चे ऐसा नहीं जीवन जीते हैं कि वो सबसे पहले पूछेंगे क्यों आना है 6 बजे से पहले। तो हमारी दादी नानी हमें बताती थी कि अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाइए, ये एक विश्वास होता था कि बच्चे घर में आ चुके हैं, संध्या घर में की जानी चाहिए, ये हमारी परंपरागत जीवन जीने की शैली है। तो उस जीवन जीने की शैली में आपने गीतों के माध्यम से अपने संदेश लोगों तक पहुंचाए, ये बहुत अच्छी बात है। आज आप और गीत लिखना चाहते हैं?
1: जरूर, अभी तो दम है।
0: अभी दम है, ये बहुत बड़ी बात है कि अभी दम है, मुझे और गीत लिखने हैं। भोजपुरी गीत लिखना आपको ज्यादा अच्छा लगता है या के हिंदी भाषा में?
1: तो हिंदी तो भाषा तो का गाना तो वो टीवी पे चलता है, रेडियो पे चलता है, उसको सुन लेते तो उसे बहुत आसानी से गा सकते हैं।
0: नहीं, क्योंकि तो आपका लेखन किस और आपका झुकाव है, हिंदी में लिखने का या के भोजपुरी में?
1: नहीं, मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पे अगर हिंदी में लिखूंगा तो गाना चलेगा कहाँ, लेकिन भोजपुरी में लिखूंगा तो भोजपुरी का तो हमारा एक चैनल है जहाँ पे चलता है ऐसे। और जैसे देखते हैं भारत में, अगर हिंदी में आप गाना लिखते तो फिल्म में चलता है
0: जी,
1: और नहीं तो आप उसका एक एल्बम बना देंगे तो चलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर हिंदी गाना चलोगे तो एल्बम नहीं चलेगा, लेकिन अगर भोजपुरी गाना बनाओगे तो वो एल्बम जरूर चलेगा।
0: ये आपका विश्वास है कि भोजपुरी में गीत गाना आपके लिए वो ज्यादा प्रभावित करेगा, ज्यादा लोग संख्या में लोग मॉरिशियस वासी सुन पाएंगे आपको।
1: और लोग जब देखते हैं जो हमारे जो श्रोता हैं, अगर मुझे देख लेता तो मुझे पहचानते हैं तो पूछते हैं कि नया क्या आ रहा है।
0: हाँ, तो मतलब आपसे अपेक्षा रखते हैं लोग कि आप भोजपुरी में गीत लिखें। जब आप जाते हैं अपने गुरु के यहाँ तो भोजपुरी लय ताल में कोई समस्या होती है जो कि हिंदी में आसानी से हो पाती है, भोजपुरी में नहीं हो पाती है? मतलब मैं अंतर जानना चाहती हूँ कि हिंदी में या भोजपुरी में कोई समस्या है जो कि नहीं तालमेल बैठता है।
1: बिल्कुल नहीं,
0: बिल्कुल नहीं, वो दोनों गीता

0: आपके लिए एक बराबर हैं।
1: एक बड़ा बड़ा बहुत आसान हो जाता है, सिर्फ लिखने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन जब शुरू हो जाते हैं तो झट से बन जाता है।
0: जब वो एक बार शुरू हो जाता है तो अच्छे से लिख पाते हैं। तो आपने अंधविश्वास जैसे और कितने एल्बम्स बनाए हैं?
1: अंधविश्वास असल में एक एल्बम नहीं है, वो एक सोलो गाना है जो सिर्फ मंत्रालय की तरफ से ऑफर आया था तो मैंने गा दिया
0: जी।
1: लेकिन अच्छे तरह से गाना, क्योंकि वो बोर्ड पर जाके बैठते हैं, वो लोग देखते हैं, अगर गाना नहीं है छोड़कर तो आप वो गाना आपको वो बोलते हैं ना पास नहीं करते हैं, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा ऐसे।
0: और माजा में आपको गीत लिख के एल्बम ही देना होता है या कि एक गीत भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं?
1: नहीं, अगर आप एल्बम भी बना सकते हैं, एक भी सोलो गाना बना सकते हैं, एक का खुद का गाना तो वो भी चलेगा।
0: तो वहाँ पर क्राइटेरिया है आपको माजा के लिए कि ये ऐसा होना चाहिए या ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म देते हैं, क्या होता है हमारे श्रोताओं को बताइए कि माजा में कैसे आप जाएंगे? मैम अच्छा मैं गीत लिखना चाहती हूँ या गाना चाहती हूँ तो मेरे को माजा में जाकर क्या करना है?
1: आपको सिर्फ वहाँ पे जाके आपका जो जो लिरिक्स होता है, जब आपका जो बोल होता है गाना
0: जी,
1: का उसको आपको वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा
0: जी।
1: हाँ,
0: और ये बताना पड़ेगा कि ये मेरे लिखे हुए हैं।
1: हाँ, मेरे लिखे हुए हैं
0: या मेरी सहेली के द्वारा लिखे गए हैं, जिसने भी लिखा
1: है। जिसने भी लिखा है उसको बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं, एक ओथिया कंपोजिटर।
0: हाँ,
1: तो कंपोजिटर जो जो कंपोज करता है
0: जी,
1: और जो लिखता है वो
0: ऑथर है।
1: ऑथर
0: जी।
1: तो वो लोग पहला सवाल करते हैं ये कहीं से चुराया तो नहीं,
0: यही मेरा प्रश्न था कि जब आप जाते हैं तो माजा में वो देखते हैं कि ये कहीं से लिया तो नहीं गया है, कि हम हिंदी के फिल्मी गीत को भी अपना कह सकते हैं पर वो कॉपीराइट की समस्या आएगी।
1: बोलते हैं ये कोई हिंदी गाना से जुड़ा हुआ तो नहीं है
0: जी,
1: उसका जो जो म्यूजिक है, उसका जो ताल है, सब कुछ उसका आपका बनाना होना चाहिए, ये
0: स्वयं का लिखा स्वयं का बना हुआ होना चाहिए।
1: तो पूछते हैं वो लोग, पहले पूछते हैं फिर आप बोल देंगे, लेकिन वो लोग वहाँ पे बोर्ड पे जाके चेक करते हैं,
0: फिर वो डबल चेक होता है।
1: हाँ, डबल चेक होता है, फिर अब वो उसको ऑथोराइज करते हैं कि ये गाना चल सकता है टीवी पे या रेडियो पे, ऐसा होता है।
0: तो जब आपने प्रथम गीत लिखा होगा तो कितनी खुशी हुई होगी आपको?
1: प्रथम गीत आपने बहुत अच्छा सवाल कर दिया, पहला तो जो भंजी राम थोल बड़म बड़म थोल है वो मुझे और अपने और जो उसका शिष्य है उसका पाठशाला में
0: जी,
1: उन लोगों को मौका दिया, तो एक एल्बम बनाया पांच लोगों के साथ जिसमें मैं था, मेरा बेटा।
0: एक एल्बम बनाने के लिए कितने गीतों की आवश्यकता होती है?
1: अगर आप खुद बनाएंगे अपने अपने पैसे से तो पांच चार भी चलेगा,
0: चार भी,
1: तीन भी चलेगा।
0: अच्छा।
1: हाँ, लेकिन जब जो जो मंत्रालय की तरफ से आता है तो वहाँ पे क्योंकि हमें एक ग्रांट मिलता है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सी जो थोड़ा पाबंदी लग जाता है कि आपको पहले आठ गाना लिखना पड़ता था, आठ गाना उस वो एल्बम में होना चाहिए, तीन तीन मिनट या साढ़े तीन मिनट का, तो ज़्यादातर गायन को बहुत उन लोगों को गाना नहीं मिलता था इतना गाना, तो उसको मंत्रालय ने उसे थोड़ा कम कर दिया, अब पांच से आप एक एल्बम बना सकते हैं।
0: पांच गीत लिखे हों स्वयं के तो आपकी एल्बम तैयार है।
1: तैयार हो
0: जाएगी। अच्छा, अब आपने गीत लिख लिया, उसके बाद उसको संगीत में कैसे ढालेंगे? ये आपके पास उपलब्ध है कि आपका अपना गाने बजाने की सब यंत्र हैं आपके पास?
1: यंत्र हैं, लेकिन मैं खुद नहीं यंत्र से गाना नहीं बनाता हूँ, मैं गुनगुनाता हूँ पहले
0: जी।
1: एक एक
0: लय बैठानी पड़ती है,
1: लय बैठाते हैं इसे, तो अब जो गाना लिखा है उस शब्द को कभी कभी ऐसे ऐसे गाड़ी चलाता हूँ तो एक एक लय निकल जाता है तो उसको रिकॉर्ड कर देता हूँ, तो बने अब जब अब अगला गाना बनाऊँगा तो
0: इस लय पर गाऊंगा,
1: तो उसमें अब सब अब लिखेंगे तो कौन सा
0: आपकी क्रिएटिविटी आपके साथ चलती रहती है जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं या जब भी है तो ध्यान उस ओर भी जाता है कि मुझे ऐसी कंपोजिशन बनानी है, तो फिर आप क्या करते हैं? मैं प्रक्रिया जानना चाहती हूँ कि पहले बोल लिखे गए या कि पहले आपने सुरताल लय सोच लिया उस पर बोल

0: लिख के?
1: नहीं, ज्यादातर हम लोग लिख लेते हैं पहले गाने के बोल जो होते हैं, गाना लिखते हैं
0: जी,
1: तब अगर उसमें थोड़ा सा कुछ एडिट करना पड़ता है तो हम लोग एडिट कर देते हैं, क्योंकि ताल जब उसमें बैठाना पड़ता है तो थोड़ा सा कभी कठिनाई हो जाती है। फिर मदद भी चाहिए, जो म्यूजिक कंपोजर होता है ना तो
0: जी,
1: वो लोग ज़्यादातर मदद करते हैं हमारे, कि क्योंकि उन लोगों को तो ज़्यादा अनुभव है म्यूजिक पर। हम लोग सिर्फ बोल बैठा रहे हैं, वो लोग तो म्यूजिक बैठा रहे हैं उसमें
0: जी,
1: तब ना दोनों लेके एक गाना बनता है।
0: बिल्कुल,
1: तो ऐसे हो जाते हैं, हमारी मदद हो जाती है, इसे
0: आपको सहायता मिल जाती है म्यूजिक कंपोजर से। फिर जब आप म्यूजिक भी हो गया, आपके गीत भी बोल म्यूजिक के हिसाब से बैठ गए, फिर आप रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रक्रिया करते हैं माजा तक पहुंचने के लिए?
1: माजा तक जितना भी आपके बोल हैं, जितना लिरिक्स हैं, वो आपको कॉपी करके, तीन दिन कॉपी करके उसको माजा में छोड़ना पड़ता है, जहाँ रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड होना है ताकि ये गाना, ये बोल कहीं कहीं कोई चुरा ना ले।
0: ओके,
1: तो वो वहाँ पे वो रजिस्टर्ड होता है, आपको एक कॉपी देता है, उसको पर्ची भी मिलता है उसका, जो आपको अच्छी तरह से रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कल की कोई बात हो गई, कोई आपका गाना चुरा लिया तो आप उनको
0: आप बता सकते हैं कि ये पहले से मैंने रजिस्टर करवाया हुआ है जी। फिर
1: अगर मंटायल की तरफ से नहीं होगा, अगर आप खुद गाना बना रहे हो तो सिर्फ इतना ही, इतनी प्रक्रिया है, गाना बन गया, अब गाना चल सकता है, वो फिर आके जितने रेडियो स्टेशन है आप एक कॉपी वहाँ पे छोड़ सकते हैं,
0: आप छोड़ सकते हैं।
1: हाँ,
0: फिर वो मतलब आपने फ्री हैंड कर दिया कि कहीं भी बच जाए। हाँ, वो गाना ठीक है। अब मैं जानना चाहूँगी कि आप जब गीत लिखते हैं तो आप किसी की सहायता लेते हैं? आपने बोला मैंने गीत लिखा, गुरु से एडिट भी करवाया, पर लिखते समय आपको किसी की सहायता लेनी पड़ती है?
1: ज्यादातर मैं गुरु से ही सहायता
0: लेते हैं, और किसी से नहीं?
1: नहीं।
0: रंबा तो राम तोहल जी के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, क्या उनके शिष्यों से कभी आपके डिस्कशन होती है कि मैं गीत इस प्रकार का लिखना चाहता हूं?
1: अभी अभी ऐसा बात हो रहा है कि हम लोग सब जितने टोली हैं, जितने जो भोजपुरी के गायक हैं, सभी लोग मिल के एक ऐसा गाना बनाएंगे जहाँ पे सभी लोग एक एक मुखड़ा गाएंगे। हाँ, वो हमारे एक एसोसिएशन बन गया है, तो क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं ये ये ये ये टीम में ये कितने लोग हैं, तो ऐसे पता चल जाएगा, ये सभी लोग एक मुखड़ा गाएंगे, एक उसका एक क्लिप बनाएंगे, तो यही डिस्कशन, और कोई नहीं।
0: टीम वर्क ज्यादा अच्छा, बेहतर हो सकता है,
1: बेहतर होता है
0: आपको लगा। पर जब आप संगीत सोचते हैं तो जैसे हमारे देश की धरोहर है गीत गवाई, गीत गवाई महिलाओं के लिए है, तो पुरुषों के लिए गमठ माना जाता है, गमठ पर आपका क्या विचार है?
1: गमठ
0: पहले बहुत होता था, आजकल कुछ कम पाया जाता है।
1: गायक नहीं है ना?
0: गायक नहीं है, क्यों? गायकों की कमी है?
1: पता नहीं, कोई प्रेरित ही नहीं होता है शायद।
0: आपको नहीं लगता है कि गमठ के लिए भी, जैसे गीत गवाई का एक स्कूल है, अब तो मेरे ख्याल से 55 के करीब पूरे मॉरिशस में स्कूल खुले हुए हैं, विद्यालय है गीत गवाई में, लोगों को भाग लेने के लिए वहां सीखना पड़ता है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि गमठ के लिए भी ऐसा होना चाहिए, ताकि ये हमारा जो परंपरागत एक व्यवहार था गमठ का वो समाप्त ना हो जाए?
1: मैं सोचता हूँ कि अगर उसका भी एक स्कूल होगा
0: जी,
1: जहाँ पे जो जवान लोग हैं जो सीखने जाएंगे, तो अगर आपको बोलूँगा 100 में से 1 जाएगा तो बहुत है।
0: तो क्या ये आप लिखित प्रस्ताव मंत्रालय या माजा या जहाँ भी हो आप भेज पाएंगे?
1: तो मुझे तो कोई रास्ता मालूम नहीं है कैसे कैसे
0: रास्ता
1: आगे
0: तो बनाना पड़ता है।
1: बिल्कुल। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगा? अब आपने मुझे बताया ऐसे एक चीज, तो मैं इसको
0: इस पर विचार करेंगे,
1: जरूर अमल पे लाऊंगा, और जितना जो हमारे जो एसोसिएशन
0: जब आपने
1: है,
0: कहा एक एसोसिएशन है।
1: हाँ,
0: एक टीम वर्क हो रहा है, तो क्या वहां पर आप इस प्रस्ताव को रखेंगे कि भाई गीत गवाई में रंबा

0: राम तोहल जी सिखाती हैं और बहुत से स्कूल खुल चुके हैं पूरे मॉरिशस में, तो हम गमट की प्रक्रिया को क्यों समाप्त कर रहे हैं जबकि वो हमारी परंपरागत लोकगीतों के लिए प्रचलित थी। और मेरे ख्याल से जब नया साल आता था पहली तारीख, पहली जनवरी को, दो जनवरी को ये परंपरागत कार्यक्रम होते थे एमबीसी में, तो वो परंपरा आज समाप्त ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आप अपनी एसोसिएशन में बात करेंगे या कहीं और भी इसकी चर्चा करेंगे?
1: नहीं, मेरे ख्याल से एसोसिएशन में ही बात करेंगे, वहाँ पे मैं भी एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ
0: जी।
1: तो मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छा विचार रखा, मैं ये बात को लेकर आगे बढ़ूँगा। अब जहाँ पे बहुत से बुजुर्ग गायक हैं जो सभी यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं सोचता हूँ
0: प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं।
1: मैंने बोला ना, अगर 100 में से एक मिलेगा तो 200 में से तो दो मिलेगा ना, 300 में से तो तीन, तो अगर 10 हमें मिल गया जो नया पीढ़ी है जो अभी बढ़ रहा है, अगर 10 मिल गया वो लोग उसमें रुचि दिखा रहे हैं तो बात बहुत आगे बढ़ सकती है।
0: इसीलिए मैंने ये पूछा कि महिलाएं जब इतना गीत गवाई के लिए रुचि ले रही हैं, तो आज की हमारी युवा पीढ़ी जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, जवान पीढ़ी क्यों नहीं इसमें भाग लेती है, क्यों उनका इंटरेस्ट इस तरफ नहीं है? क्योंकि जब तक हम अपनी जड़ों को सशक्त नहीं करेंगे तो नई कोपले कैसे बढ़ पाएंगे?
1: नहीं बढ़ पाएंगे।
0: तो उन नई कोपलों को संजोने के लिए, उनको और प्रफुल्लित करने के लिए, अपने जैसे हमने पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षों को संजोना है, उसी प्रकार हमारी जो परंपरागत गीत गवाई है उसको संजो रहे हैं, तो गमट को क्यों नहीं? मेरा ये विचार आपकी एसोसिएशन तक पहुंचे और जो हमें सुन रहे हैं श्रोतागण वो भी इस को सोचें और कदम बढ़ा पाए आगे, ताकि हमारी जो यहाँ पर मॉरिशस में गमट की प्रक्रिया थी वो समाप्त ना हो, उसके लिए अपने विचार हम तक पहुँचाएँ, आपकी एसोसिएशन तक पहुँचे, और हम सोचते हैं कि गीत गवाई के साथ साथ गमट भी चलता रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पुरानी बातें हैं जिनको हम समाप्त नहीं होना देना चाहते, क्योंकि जिस प्रकार गीत गवाई आगे बढ़ पाई, हमारे हल्दी प्रक्रिया है, हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई है, 16 संस्कारों में आता है विवाह, तो गमट भी उसमें एक संस्कार ही मानेंगे, क्योंकि पुराने लोग, हमारे बड़े लोग, हमारे बड़े जन करते थे गमट, तो आज क्यों नहीं?
1: ये तो परंपरा थी पहले।
0: बिल्कुल परंपरा,
1: तो परंपरा जारी क्यों नहीं हुआ, क्यों आगे नहीं बढ़ा, तो
0: उसके कारण को खोजना चाहिए। हाँ। क्योंकि जब भी कुछ होता है तो पहले तो हमें कारण खोज लेना चाहिए कि ये समाप्ति की ओर क्यों है या बढ़ क्यों नहीं पा रहा है जी। एक गीत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, फिर चर्चा जारी रहेगी।

0: गीत नृत्य और परंपरा।
1: श्रोताओं, हिंदी सिनेमा के गीतों से प्रभावित होकर हमारे देश में भोजपुरी गीत लिखना और उसको आगे बढ़ाना, परंपरागत गीतों को गाना और अंधविश्वास जैसे विषय को लेकर गीत लिखना, ये भाई विश्वजीत महेश जी से बातचीत में हमने जाना कि वे हिंदी गीतों से प्रेरित होकर अपनी भाषा, जो उनकी जड़ों की भाषा है, दादी नानी की भाषा है, भोजपुरी में गीत लिखते हैं और 4 उनके एल्बम आ चुके हैं, 35 से भी ऊपर गीत लिख चुके हैं, गा चुके हैं और 2023 में वे सबसे अच्छा जो गीत आया भोजपुरी गीत वे उनका रहा, वर्ष भर बजता रहा वो गीत, MBC पर भी चलता रहा। तो ऐसे ऐसे कलाकारों को हम आप तक पहुंचाते हैं गीत नृत्य और परंपरा के अंतर्गत, कार्यक्रम के अंतर्गत। तो बातचीत से मैं जानना चाहूँगी कि आप के लिए गीत एक थेरेपी है, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि गीत गाना आपको बहुत अच्छा लगता है, पर गीत को समझना भी एक कलाकार ही समझ पाता है, कि कोई गीत को बड़े हल्के से लेता है, कोई उसके बोलों को, उसके शब्दों को पकड़कर बहुत समझदारी से गीत की परिभाषा समझ पाता है। इस पर आपका विचार, और साथ ही मैं मतलब आपने हिंदी को ना चयनित करके भोजपुरी में गीत लिखे क्यों, मतलब आप ज़्यादा कंफर्टेबल पाते हैं आप अपने आप को भोजपुरी गीत के साथ?
2: जानते हो कितने जो हमारे देश हैं यहाँ पे मॉरिशस में, जो पहले जब हमारे जानते हो जब जितने भी ये जनरेशन जो
1: आ रही है
2: और जेन ज़ी और पीछे जो रह गया
1: जी,
2: तो जो हमारा जनरेशन था, जो हमारे उस समय का, तो हम लोग ज़्यादातर भोजपुरी बोलते थे
1: जी,
2: और घर पे भी भोजपुरी बोलते थे, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, कोई शर्म नहीं थी। लेकिन आज अगर देखे को जो नया पीढ़ी हो रहा है, अगर थोड़ा सा भोजपुरी बोलता है तो वो अगर उस तरफ देखने लगता है कि कहीं कोई उसे सुन रहा है तो उसको
1: शर्म लगती है।
2: तो
1: अपनी भाषा बोलने से क्यों शर्माना,
2: ये तो घर से शुरुआत होती है इसकी।
1: बिल्कुल, चैरिटी बिगिंस एट होम।
2: हाँ
1: बिल्कुल।
2: तो जितने भी माँ बाप होते हैं,

0: घर पे अपने बच्चों से भोजपुरी बोले। अभी आपने पूछा ना गमत क्यों नहीं है, तब भोजपुरी बोलेंगे तब ना गमत होगा।
1: बिल्कुल हाँ, जब भोजपुरी नहीं बोल पाएंगे तो गमत कैसे में कैसे जुड़ पाएंगे।
0: गमत में तो ज़्यादातर हिंदी ही वो गाना चलते थे तो, लेकिन भोजपुरी से जुड़ा हुआ है,
1: जड़ भोजपुरी की है,
0: जड़ भोजपुरी जैसे बोलते हैं गमत
1: जी।
0: तो ऐसे लेकर अगर अगर सभी जितने भी घर से शुरू होगा ये भोजपुरी का जो जो बोली है, और अगर आप सभी लोग अपने बच्चे से बोलेंगे और उसको प्रोत्साहित करेंगे, देखो अभी तक स्कूल में भी भोजपुरी भाषा आ रही है।
1: और भाषाएं तो कितनी भी सीखें, सभी भाषाएं सम्मानित है, भाषा सीखने में क्यों शर्म,
0: क्यों शर्म।
1: बिल्कुल,
0: और वो जो
1: और वो तो हमारी परंपरागत भाषा है भोजपुरी।
0: तो भोजपुरी जो वो पीढ़ी थी जैसे हम लोग अभी, वो उसी के लेकर बड़े हुए
1: जी।
0: और जो अभी हैं अभी वो हिंदी बोलते हैं लेकिन भोजपुरी बहुत ज़्यादातर नहीं बोलते, बहुत कम बोलते हैं। जो लोग मैंने जब देखता हूँ दो चार बच्चे जो हैं जो भोजपुरी बोलते हैं, तो मैं उसे बहुत बात करता हूँ और उन लोगों को प्रेरित करता हूँ कि देखो वहाँ पे जाओ ऐसा होगा, वहाँ पे जाओ। उन लोगों को वो ऐसे ऐसे स्थान बताता हूँ जहाँ के वो वही भाषा के लिए के आगे बढ़ सके,
1: आगे बढ़ पाए। बहुत अच्छा विचार। एक गीत के साथ हम कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। आपका कोई जो आपकी मनपसंद गीत हो जो आप सभी श्रोताओं के साथ बांटना चाहें।
0: जैसे मैंने बोला ना कि जितना भी गाना लिखा है सब में एक संदेश है
1: जी,
0: तो मेरे लिए तो सभी गाने क्योंकि एक संदेश
1: विशेष है,
0: सभी
1: विशेष
0: है।
1: अभी तो चलिए आपकी ओर से
0: अभी जो जो एल्बम आया था पानी का बुलबुला ही, मैं उसमें एक गाना था जिसमें जहाँ पे एक गाना था वो अभी जैसे बोलते हैं ना सभी बुजुर्ग लोग के आज के बच्चे सब जाके होम में छोड़ देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो उस पर एक गाना चला था
1: जी।
0: वो गाना मेरे लिए तो बहुत प्रिय हो गया है, बहुत अच्छा उसमें की बोली जो भी है। तो
1: श्रोताओं के लिए शुरू करें
0: एक छोटा सा मुखड़ा। घोर कलयुग बाहो, घोर कलयुग आगल बा, बूढ़े माँ बाप से होम सगड़ो भर गल बा, बूढ़े माँ बाप से होम सगड़ो भर गल बा, बेटा बेटी के आज माँ बाप भारी बोझ बनल बा। थोड़ा सा
1: जी तो एक विशेष संदेश है कि आज जो बच्चे हैं वे अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं और अपने माँ बाप को बोझ समझकर होम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत सुंदर विचार आपने अपने गीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया कि हमें अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ना है। संदेश गीतों के माध्यम से पहुंचे या किसी मंच से पहुंचे, ये विशेष है कि सब लोग समझ पाएं उस संदेश के मायने, क्योंकि गीत भी एक बहुत सुंदर माध्यम है संदेश पहुंचाने का। बिल्कुल, मैं बहुत सहमत हूँ। आप आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम एक ऐसे कलाकार को सभी श्रोताओं तक पहुंचा पाए। सब फेसबुक के माध्यम से भी जो लोग जुड़े हैं कि ऐसी पहचान जो कि मंचों द्वारा पहुंच पाती है, पर गीत से प्रेम करने के लिए आपने गायन चुना और आपने उसमें ढलते ढलते अपने जीवन चर्या से हटकर गीतों के माध्यम से संदेश लोगों तक पहुंचाए, और आज भी आप में एक ललक है कि हमारे पुरुष भाई जो हैं, भाई लोग हैं, वे गमट की ओर बढ़ पाए। गीत गवाई में तो आप जाते ही हैं, एसोसिएशन के साथ आप काम करते हैं, बहुत बड़ा एक टीम बनता है तभी एक गीत बन पाता है, क्योंकि उसमें लिरिक्स के साथ कंपोजर, म्यूजिक कंपोजर और बहुत कुछ जुड़ता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आज हमारे साथ भाई यूसुफ, और प्रोडक्शन सीट पर शीतल उरूसा जी हमारे सहयोग दे रही हैं। आज के लिए इतना ही, एक अन्य कार्यक्रम के साथ फिर जुड़ेंगे, गीतों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, नृत्य और हमारी परंपराओं के साथ जुड़ते रहने के लिए इस कार्यक्रम में आपने अपना विशेष ध्यान दिया, इसके लिए श्रोताओं आपको भी धन्यवाद कि आप समय निकालकर इस कार्यक्रम के साथ

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है पूजा, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार। मॉरिशस दुनिया का पहला गन्ना चीनी उत्पादक देश बनने की ओर अग्रसर है, जिसकी सभी चीनी बों सुखो से प्रमाणित हैं। ये आधिकारिक प्रमाणन स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी की गारंटी है, जो ये सुनिश्चित करता है कि उत्पादन श्रृंखला पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और सम्मानजनक है। ये इस बात का भी प्रमाण है कि स्थानीय स्तर पर उठाए गए कदम और पहल सफल परिणाम दे रही है। इसी का उदाहरण है मॉरिशस शुगर सिंडिकेट को पिछले सप्ताह यानी 27 मई को आयोजित बोंसिखो इंस्पायर अवार्ड 2026 में विशेष सम्मान और सराहना प्राप्त हुई। ये उपलब्धि मॉरिशस के चीनी उद्योग की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता और टिकाऊ विकास के प्रति उसके समर्पण को दर्शाती है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंत्री राजेश भगवान ने देश की रक्षा और संरक्षण के लिए नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की मांग की है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा लगातार सफाई अभियान चलाए जाने के बावजूद भी अवैध रूप से कचरा फेंकने की समस्या अभी भी देखी जा रही है। मंत्री राजेश भगवान ने कहा कि ऐसी गतिविधियाँ कचरा प्रबंधन की लागत को बढ़ा देती है। लेहब फिनिक्स में अतिलिए जाओ पुतुस में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका शीर्षक रखा गया है अंतुत एचिमिते यानी पूर्ण आत्मीयता के साथ। इस प्रदर्शनी में शीला डांसन, मिशेल मस जुबुआ और स्टीव जुबुआ की लगभग 30 फोटोग्राफ प्राकृतिक दृश्य और दुनिया के विभिन्न कोने में कैद अनमोल पल आप देख पाएंगे। ये प्रदर्शनी 15 जून तक खुली रहेगी। विदेश में बढ़ते तापमान और चरम मौसमी संबंधी घटनाओं में वृद्धि के बीच विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने दुनिया को एलनीनो की वापसी को लेकर चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी ने सभी देशों से अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम को और मजबूत करने की मांग की है। इस संगठन का कहना है कि जून से अगस्त 2026 के बीच एलनीनो जैसी परिस्थितियों के विकसित होने की 80% संभावना है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए, हम मिलेंगे शाम 4 बजे।
2: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.
3: सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज की चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो हमारा जो कार्यक्रम है आज की चर्चा, रेडियो मॉरिशस पर आप इस समय सुन रहे हैं, एमबीसी टीवी 3 पर भी हमारा ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। और हम आपको बता दें कि इस समय ये कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव है और यही कार्यक्रम आप शाम के 3 बजे रेडियो मनोरंजन पर सुन पाएंगे। चलिए तो यहाँ पर सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। और हमारे बीच आज जिस विषय के साथ हम आए हैं, हमारे मेहमान हमारे जो वकील हैं कपिल देव रघुनंदन जी, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। वकील जी नमस्ते।
4: नमस्ते जी, और सब भाई बहन लोग के नमस्ते,
3: स्वागत बात हर कार्यक्रम में। और आज 5 जून बा, आज हमने विश्व के जैसे बोला पर्यावरण जन दिवस बा ऊ मनावत है जा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और हमने के लिए एगो ऐसा जगह जहाँ पर हमने स्वच्छ हवा मिली, स्वच्छ पानी रही।

0: ये हरियाली रही हमने के जीवन के लिए बहुत जरूरी है।
1: हाँ जी, हमने तो बोली से आज के दिन एक दिन हमने के हमेशा याद करे के चाहेला, सिर्फ नहीं मैं भर बरिश तक काहे हम अवियोन में ये के चाहला, हमने के हर देश में और सेतु मोविस में के हमने के अवियोन में ऐसे चाहला हमने के देश के बनाई के रखे के कि सब जे आए का तुईस हो का हमने हो आपसे कि हमने जैसे बोले फिये हो आपसे जैसे कि हमने के भाई बहन लोग देखेला सब बहुत सा साल देखब फेकेलन सन बहुत साकुमा जे जहाँ कुमा जे कैसे लामेर भिरी देख अभिहुआ खैन सन पियन सन सब बुते कुमा जे जोन जोन चीज रही फेंक देवेलन सन आर बन तिरें आफिस जैसे हमने बोले सर आके हुआ डैम्पिंग करके सब चीज सीमा के आगे सब चीज फेंक फाक देवेलन सन ऐसा एगो लंगन में देवेलन सन जैसे कि जेब लैंड में फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे में खाली अपन नाक नहीं सकब देखे जितना चीज फेंकल बा नदिया में वो औसन लंबीगन में हमने नहीं चाहते सर हमने के देशा एगो मोरिशस एक स्वर्ग देश है कि पगाजी ओकर नाम ही है हमने पगाजी है के बनाई के चाहे
0: बिल्कुल। और एक शुरुआत भी हमने कर देले हैं जा कि हमने लगे आज कोई कोई के देख ले ला कि आप कूड़ा कचरा फेंकत हुआ जहाँ पर नहीं चाहला फेंकेगे तो वहाँ पर तोहरा चाहिए जुर्माना भरे के। और यूनाइटेड नेशंस जो बा जिसने 1972 में शुरू कर ले रहा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे और ये हमने के एगो प्रक्रिया भी चलते आल बा कि इस दिन हमने के देखेला जा ढेर संस्था लोग बा जो काम करे लन जा लड़का लोग के बतावे लन जा सिखावे लन जा ढेर कोई कुछ करे ला आज के दिन निकल के साफ सफाई करे खातिर जैसे बोला कि कोई लामेरु जेब अभी तक वहाँ नहीं है ना पुलिस घूमते रहेला लेकिन फिर भी ढेर कोई है जालन जा समुन्द्र किनारे नदी किनारे या तो फिर कोनो एक ऐसा बंजर जमीन जाके आज के दिन साफ सफाई करे लन जा और उकर महत्व सिखावे लन जा कि हमने के लिए हमने के जो नवयौवनों कितना पोता बा कि वो साफ सुथरा रहे।
1: और हमने की देखेला से ला पुलिस से बड़े एक्शन सीवियर लेवल हैं और ओकर लमान भी देख बकुमा जमने के कानून में कुमा जे वैन सैंक मिल ओपी से ऊपर बा और देखे वो चीज देखिए सन काल एगो लुतो एगो कामी हुई कि कुमा जे उमे है ले जाता एगो चीज फेंक दिले बा होई में एगो है एगो तिहाई में सकियन सन सीजी कर एक बन चीज है ई में
0: कुमा जे ढेर ला ई भी देख ले हैं कि जब कोई गाड़ी चलावता आगे ई ढेर रहल देखिए जब जेबा गाड़ी चलेबा तो सीमा के बोरे में देखबा ढेर प्लास्टिक में खाए के हो फास्ट फूड खा के अपन गाड़ी में नहीं रखे अंसा कुछ करे लंजा वो सब फेंक देवे लंजा पीछे
1: अभी तुम्हें खाला पिएला का करे कर विधवा जैसे बतो कौन जीरे करे था उसे बिसे करके फेंक देवे ला सीमा में
0: तब जब एक जना दो जना तीन जना तो जब से हमने के लालवा तनी कुन सेवया हो गलबा और आजकल कुन जीबा लामोता हो गलबा आज के सब कोई वीडियो बनाए लगल फोटो खींचे लगल तो जहां कोई कुनो कूड़ा कचरा फेंकला कोई के देखला तो कुछ करे लंजा फोटो निकाल के डाल के डाल देवे लंजा सोशल मीडिया पे अब तो प्रॉब्लम हो जाए। और ई जरूरी है आज कोई के देखला कि खा पी के कोनो गाड़ी से जो फेंका था तो फोटो निकाले के जरूरी है और चला जनाए के ला पुलिस के कि हम देख ले रही है लुतवार हल
1: से तो तोर वास है कब ऐसे नो चीज करेला तो दिनों से करे के चला ओके
0: बिल्कुल बिल्कुल घर के जितना कूड़ा कचरा उठा के जाके एगो बंजर जमीन बा जाके वहां पर फेंक के चला वेलन सा ऐसा नहीं कि जरेबो करेलन सा फेंक के चला वेलन सा जराई के भी धवानी है लेकिन फेंक के चला वेलन जा ई बहुत बहुत गलत बात करे लन जाता। चलो उम्मीद करत है कि आज के दिन हमने के जितना कोई भी अभी सुनत हुआ जा जितना संस्था लोग हवन जा आज के दिन जितना माँ बाप लोग सुनत हुआ जा हमने के अपन लड़का लोग के एगो ऐसा मानियर तो जरूर सिखैया कि गाड़ी से बाहर कुछ फेंकिया जाने। और वैसे छोटा रहन जा लड़का लोग के जो लड़का के सिखेबा वो बचपन से वही सीखी देखो साकू रख दिया अपन अपन गाड़ी हूँ मैं तो जैसे जानला कि कुछ खैला पीला सकवा में डाल के बंद कर दिया घरे जाके अपन कूड़ेदान में डाल दिया एक ले और अच्छा कुंज सकेला रहे। आज सब कोई ऐसा ही भी सोची तो हमने के जोन देश बा हमेशा साफ और सुथरा रही। तो चला एक साथ अभी हमके कार्यक्रम जोन बा आज की चर्चा है कि हमने बढ़ाओ अब जा और आज के हमने के जोन विषय रख ले जा राइट ऑफ वे शुमें दो सोची।
1: हाँ जी जैसे हमने बोले सब फ्रांस में दुआ दे पासाज एगो चीज है तोरा बोली तुम तो जाने ला एगो बड़ा लो तेल तोर पेतेर हुआ उकर सात लिताज के ऊपर हुआ में तू रहेला आले उकर दुआ दे सोची कैसे तू सोची होएला ऊपर ले तजवा से कब मजे है लुतेलवा में हुआ रहेला अरे लुतेल नहीं तो घर भी बा कुन आदमी के चार पांच गो है लेताज के है बना दे लो अंसन तो कर समय दे सोची मॉरिशस में भूलाल जा है उकर है उकर आई के चलो कर लेस्कालिये में लेस्कालिये से उ निकलेला कुमा जे सीमा से डाला उकर घर तक ऊपर लेताज तक और लेताज से नीचे उके आई के चला तो आवेला लेस्कालिये में लिफ्ट नहीं कुमा जे सिगो जो नहीं लिफ्ट की बात नहीं करते हैं तो एगो मानिए दे समय दे सोची वो भी है एगो लेस्कालिये कैसे ऊपर से आई बा नीचे आके

0: जाए कि ऊ सीमुआ सेवी करब या लिस्काली सेवी करब एक नम राइट अवे धोआ दे पसास में हमने वो नहीं देख साज हमने याद देख
1: देख ली सब तो समझा देली सब यानी कि आज तो हर घर अभी लेताज में रहेला नीचे एगो दूसर पुपिये बा जो फर्स्ट फ्लोर बा ओकर में दूसर जना के घर बा ओकर ओकर है ऊपर में एक जना और कैसे अभी अपौतमा
0: है
1: अपौतमा रहला देखो अपौतमा में कई गो दू गो तीन गो लेताज रहबे करेला मान लो ऊपर में दू जना बा ओकर देजामलेताज में दू जना बा नीचे में दू जना रहता तो कैसे ऊपर झला जाए के आवत हुआ तोहर कौन धोआ बा तोहर लिस्कालिये कैसे कौन सेवी करेला हो लिस्कालिया माके करके कर धोआ है ये सब चीज चाहला जाने के हाँ और अभी हमने बतियावत है जा सीमा के बारे में
0: हाँ।
1: जैसे कि लुट्टो लेके जाइब अब
0: जरूर
1: जैसे सीमा जो सेवी करेला
0: देखा नहीं तोहर काम मजा है हमने के से मॉरिशस में एगो दुआ दे पसाज एगो तेरे में जैसे हाँ, हाँ, जमीन में बोला हुआ उस समय वहाँ ये करे हमने बोला सा समय दे सोची हर एगो है में माटी में जहाँ बा या वो घर बा तो चाहे ला एगो सीमा निकाले के एगो सीमा वही तो वो सीमा है जैसे आदमी बोला था वैसे हुए ला आले भी नहीं करे ला तो हमने के मॉरिशस में दुआ दे पसाज ये जैसे हमने बोला सा एन तेरे जो अंकलावे बा देखते हैं जो उनके सीमा नहीं बा ये देखब सामने कैसे होवेला सीमा कैसे मिले के चला अरे वो घर में हम कबूत नहीं बा सीमा एगो घर बीच एगो तेरह में बनल बा हुआ जाने लग बान कोई कब मौसले कर देवला एगो है जमीन तभी तो घर और कुछ नहीं बा हुआ सीमुए नहीं बा एक फसी का है उत कुमार कब हुआ ओपन कहीं घर बना हुआ था हाँ जो मुसलमान बोट कर ले हो या फो वे करे के दूसर बात नहीं बातें करते हैं सबने हमने बोलते हैं वो सीमा सिबुजो बीच में तू पहला आदमी जाके बना हुआ था
1: हाँ।
0: ये हमने के कुछ सिविल मोशियाँ रियाजी करेला दुआ दे पसाज राइट अवे बोले ला हर फोप ये ते जो उनके आँख से नहीं बा एगो मजे है दुआ है पब्लिक में जैसे हमने बोला वा पब्लिक में सीमा पब्लिक में उस सकी मांगे ओ एगो दुआ दे पसाज उकर वाजन से अरे तो हर एगो कुमा जे है बा एगो घर बा हुआ बनैले वो अब तोरा सीमा नहीं बा आँख से नहीं बा मेन रोड में मिले के तो कैसे जाइब हुआ चाहे ला नहीं वो सीमा
1: हाँ।
0: कानून हमके कुछ सिविल बोले ला कि सगब मांगे करे तुहर वाजे के जमीन हुआ बस कि एक बार कोई मिले ला ओके अभी तारे देख सर कोनो के आदमी के बनैले रहन सन घर हुआ कब सीमा बनैले रहन सन या पता जूझ हो रहा तो हो रहा एगो सीमा छौ पिए के कोनो के तीन पिए के शहर में बा उन्हें डिफिसिल रहे कभी एगो आदमी गुजर जाए तो कैसे कुमार जो कंधा में वो आदमी आके लेके चली एगो तीन पिए सीमा में कैसे लुतो लेके चली ऊ में कैसे वान ले जाए बड़का काम ही हो गल बा अब कैसे जाए में बा आज तक हमने के देश में कि तीने पिए में हुआ बा मैं अब कुमार जो चल गल अब मिनिमम देवेलनसन एगो छौ पिए देखेला जब एगो आदमी के ओकर मजे जमीन में ओकर आँख से नहीं बा दुआ पब्लिक में जाए के सीमा पब्लिक ओकर घर से छोड़ के दुआ भाई सीमे पब्लिक में जाए के तो उसकी मांग करे एगो लाकुर से एगो केश नोमाल मांग करे ओकर वासे के एगो बूथ ज्यादा जमीनवा दे के अभी से तरेलवा बोल ई जमीनवा जब कब आवेला हमने देखेला एगो आदमी जो उनके घर भीतरे बा उस जमीनवा में आर सीमा नहीं बा तो कैसे एक्सप्लोआते करी ओकर घर हुआ कैसे वो आके आले विनी सकी करे बस की तो ओकर सीमा स्व इनसफिशिएंट इनसफिशिएंट बा सीमा बा में बड़ी छोटा बा अभी तारे देखब सर बहुत सा फोप ये थे जो बा वो मांगेला ओकर वासन से एगो दुआ दे है दुआ दे जैसे सीमा के समय दे सोची एगो दुआ दे सीमा पस की काहे ओकर जमीनवा जहाँ रहेला जहाँ सीमुआ बनल बा जनेला बहुत सा पौतेर भी करेला तारेल देखब सक पता झुबेला उ सीमा बनावेला तो कैसे करेला तो देखे लो भाई भाई बहन लोग रहेला एक माँ बाप छोड़ के चल गल बा जमीनवा और पताज करी अनसन तो देखब का होला मटिया छोटा बा तो नहीं सकी ना बारह पिए के एगो सीमा दे तो छोटा सीमा करेला तब देखे अनसन कब घर बना लिया कितना मुश्किल होला अली जैसे तरेलुआ अभी बोली सा ना जब घरुआ सीमुआ से तजिए भर बड़ी छोटा बा तो मुश्किल हो जाला अली तुहर एगो लुतु बा हमारे गो लुतु बा एगो छौ पिए के छोड़ द चार पिए के सीमा में कैसे तू ही उही जहाँ अपन घर बनैले और हमार घर हुआ दोनों भीरे ऐसा वासे ऐसा अब कैसे हमने ख्वाजे होब सा Parce qu'il

0: Si moi, tu si besoin de 4 pieds qui bas. 4 pieds, mais tu as 2 goulots qui ne sont pas. 2 goulots qui sont là. Et tu as 5 mètres qui sont là, c'est un camion. कामियों की से कुमा जे ओ में आई अब तू सब एगो कोई में आतान करी हम यहां आतान करी कितना दूर और कैसे जाना बीच सीमा में चल ले हो बस हम क्या रीते कर दे के चाहे हमर लो
1: तो
0: वा
1: अब तो या तो फिर बोली हमने हम प्रेस है तो ओए दाल
0: हां अब कैसे अर्जी लंबा दूर जगह जाए कितना कितना सकल जाए वो आदमी ए कोनिया
1: कब कब कब वाजे तनी मूवी कर देवे लंचा
0: बहुत कोई
1: हो सकेला कि लंबा सीमा करके गईला अब तोरा रगल बा सौ में तोहर घर में जाए के तो ओ बता नहीं ओए दाल हमने निकलब कुछ सकबा करे ई
0: एगो चीज है कब दुगो है कुमार भी देखब सब कोनो को सलूशन है मैं अभी पहला बोल दिया सब प्रॉब्लम हो तो देखब यहां दुगो लोटस या दुगो कामियो यहां कुमार जी
1: नहीं
0: सके नहीं सकता उसी मौसम से मैं सोचिया में कुमार जी है कुमार जी ट्रैवर्स करे आले भी नहीं करे अब दूसरा चीज कभी देखब एगो सीमा छोटा रहला जैसे मैं बोल सा चार पिए से पा छो पिए के एक्सप्लोटेशन करे के उसी मौसम सर्वी करे के एगो आदमी के जाए के ओकर जमीन में सिपोजों एगो एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल करे को जाता बड़का लिजिन बनाई को बस कुछ जमीन बड़ा बा सके तो वो 1500-2000 हई बीघा के एगो जमीन बा तो उ कैसे उ चाहे लो के रास्ता
1: ताकि कामियों जाए
0: कर कामियों आले भी दिन रात कर हां और दूसरा कोनो तो कम इंडस्ट्रियल नहीं करेला तो कमर्शियल करेला कोनो बोली रही उतना अमर तो इतना जमीन मां बाप छोड़ दे बा या किन ले बा या कुछ होई ते वो कमर्शियल बनाई को जाता जामा गाजे बनावता तो किसी वो आदमी या में उ सिमुआ में उ सकी आई उ राइट ऑफ वे उसे में दे सोचिया तो इनसफिशिएंट बा तो उ का करी छोड़ दे सिमुआ ऐसे हेलो नो अपन जमीन छोड़ दे कुछ नहीं करी और दूसरा तमने से बोला एग्रीकोल कमर्शियल एक बात आदमी का मका करेला कान प्लांटेला लेगिम प्लांटेला वो ओकर जमीन वा में तो कर सी मुआ चाहे ला राइट ऑफ वे आसे कुम जी को जी बड़ा लॉज कुम जी ताकि सकी उस से भी करे एक्सप्लोरते करे ओकर जमीन वा के
1: हाँ।
0: सकी प्लांटे करे नहीं सकी ना ओकर वासन के जो प्लांटे वा लेगी वो ओकर में कमियों वा पासे करके जाएगे ते नहीं इमें कोरेक नहीं है और अब सबसे बड़ा चीज आजकल जनबे करे लो आदमी का करता एगो घर मज या मोसेल में हो या घर हो अपने को जमीन खरीद ले लेबा अब वो के कंस्ट्रक्शन करे करता छोटा छोटा घर या बड़ा बड़ा घर बना के बेचा था
1: हाँ।
0: अरे तो सिमुआ नहीं रही सिमुआ छोटा रही
1: कैसे जाए
0: कैसे जाए कैसे वो कम डेवलप करी उस जमीन वहां के
1: हाँ तो चाहे जब घर भी बनेबा तो कामियों जाला ओकर फेराई जाला ओकर ब्लॉक जाला ओकर सब बड़ा बड़ा कामियों जाला
0: जरूर
1: तो कैसे जाए कमियों वहां हाँ,
0: जी कुमार जब देखो सनी के कुछ सिविल का बोले ला है हां तभी प्रॉब्लम हुआ तो हम नहीं देखते हैं सर तो आलो ई सब के हमने देखी ला सर एकोमोड एमोर बहुत इनकन्वीनियंट बा सर्वी करे के उसी मुआ जब उस सर्वी करे के सी मुआ तो बहुत सा आदमी जो किन ले बा फास्ट करे ला बड़का बड़का प्रॉब्लम के तो हर प्रॉब्लम के ते बा एगो सीमा न एगो डिफिकल्टी के बा तो ही हमने देखी ला सर तो आदमी का बोले ला हमार कानून देखी ला कौन चीज कानून बोले ला ऐसा ऐसा काम है कब हम आवेला वो दुआ दे पसाज हुआ सिपोजों इनसफिशिएंट बा अली जब एगो कुमा जे जमीन इनसफिशिएंट बा पासे हुई तो वो आदमी के देखे चाहेला पहला एगो केस करे के चाहेला एगो केस करी लाकुर में एगो मांग करी लाकू के कि देखा हाँ एगो सीमा बा मैं एगो सीमा के ओकर लॉज है इनसफिशिएंट बा सिपोजो दुगलतो के हई दे हई चले के तो मांग करता अब नॉर्मल में गो प्लेंथ में डाले लंसन मांग करता लाकुर के कि उस सिमुआ ओके घांजी कराई के सिबोजो सिमुआ छः पिए हुई सिबोजो आठ पिए हुई तो आठ पिए हुआ कब करी तो कर वाजें के जमीन हुआ में न ढूक जाए बस ये सिमुआ तो लंबा बा तो दोनों बगल तब वाजें बा सिबोजो वो आदमी पाछे बा तो हिया ढूक जाए ना तो कानून बोले ला एगो सीमा जब इनसफिशिएंट बा छोटा बा सेरे बा नहीं सकी वो अकोमोडे करे एगो बड़का कामियों के या गो ट्राफिक चले के तो सकी लाखों से मांग करे ओकर वाजें वहाँ के ए तुर जमीन वहाँ एक बगल दे हमके दू पिए सिपा तीन पिए तुर जमीन वहाँ दे हमके तो वो वाजें वहाँ उतना ही खुशी रही ना
1: के खुशी रहेगी हम तो देजा हमर हमर अच्छा एगो आदमी के पांच पेस के माटी बा कैसनो कैसने करके घर बनेला अब वाजे आके बोली वाजे के जमीन बा बड़ा और वो के बोली कि हमके और जमीन दी भीतर जाए की तो
0: मॉरिशस में कोनो भाई बहन के नई दिख बब बोली हम तो के जाने ले दुपिए दे ला हमर जमीनवा में आले ढुक के तू सीमवा बनाई कोंत्रेर कोंत्रेर हमर एक्सपीरियंस ओ जोन के

दहूबा जमीन वो तोहर जमीन में ढुक जाई एनक्रोचमेंट जिसे हम भी बोले जैसा तोहर में पियते कर दे तोहर मसी मोसेरे कर दे एक भनके सावेला आदमी के घर को मजे पाछे बा ओके हो सीमा में बा आदमी का करेला है वाजे वान डाल दे लुटो डाल दे तोहरा बारे कर दे सेरे कर दे सीमा नहीं सकब तोहर घर बगल जाए के चाणक कर द्वार हर बखर ठुक ठुकाई के ए भैया तोर दोरो है एक मजे कमी वहां से पालो तो सकबे निकाल दे पछि हम नहीं सकल जात हई पाछे पछि बारे करता इस सीमा तीन कार वाजें हुआ कहा तोहरा कुमा जे एक्सेप्टी हुई उस जमीन हुआ ओकर बगल के दे के मुसलमान एगो केस तोहरा करे के चाहला लाखों में लाखों से मांग करे के चाहला कि देख हौ सिमुआ जोन बा सी बुझो चार पिए के बा हमके मांगत नहीं कि छः पिए कर दसी पर आठ पिए ये ओकर प्लेट में मांगेला ओकर आबो का हुआ लड़ाई करी ते हिया सगब बोले ओके मांगत हुआ मैं तोहरा चाहेला वही प्लेटवा में डाले के वही केसवा में हाँ हम जिस पोजे हैं पेये करी के गुप्पा एगो पैसा बस की हम दू पीवा के जो है हम है मैं सर्वी करे को जाता है हाँ हम के कुमा जे हाँ, तो कोई तो नहीं दे ना काडो तो वो बोली कि देखा हम एक्सेप्ट है उठा से जो सीमवा करता हम एक्सेप्ट है पैसा एगो पेये करे के जोन ओकर वाले बा

0: एक्सेप्ट उत्रासे जो सीम वहाँ करता हम एक्सेप्ट पैसा पे करे कि जोन ओकर वाले बा जे सबसे जोन कूत बा कूत
1: छोटा
0: जो छोटा बा ओ के मांग करे कि नहीं कि कुमा जे बीत बाबू द बुश होने बगल से आओ लहिया छोड़ के होने आके तब यहाँ आओ बोले नहीं एगो सीमा चाहेला त्रासे करे के जोन कुमा जन समय देसी हाँ जोन भीरी बा शॉर्टकट जैसे
1: यानी कि जैसे एगो घर बा घर बा के पीछे आजे एगो दूसर घर बा ता ओके जरूरी नहीं बा कि उ जहाँ दो मिनट एक मिनट में निकली हुआ ओके परी पांच मिनट लेके निकले के
0: हाँ ये कानून बोले नहीं कानून बोले ना हाँ ओके अभी हमने देखा सो कर ही करूँगा ओके मिल जाए से बुझो वाजवा के मैं चाहे ले गो त्रासे करके गुस्से में जोन सबसे कूद बा अब हुआ कब कूदवा रही जोन देश सीमा जोन सीमा निकली वह पब्लिक में वह पब्लिक में नहीं कि कुमार लंबा करके आके अब होने दूर से निकाला जोन सीमा सबसे कुछ बा बस कि हाँ रहो अंकलावे बा ना कुमार जब कोई तन हुआ नहीं बस सीमा दूसरा तो ऐसा नहीं वो सीमा द कि जाके वह पब्लिक में जोन सीमा पब्लिक के हुआ बा ओकर शॉर्टकट में हुआ जाएगा नहीं कि बीता बाबू दबुश करे के लंबा तब हुआ जाए के सीमा जोन थ्रासे करी उस सीमा जोन वह पब्लिक में जाए जहाँ सीमा में जाए अब देखिए ना सर एगो चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है मैं चाहेला उस सीमा जोन बा ओकर दुमाज बड़ी कम करे के चाहेला नहीं कि ऐसा एगो चीज कर ओकर त्रासे जोन फिक्से बा जोन बा ओकर लंदवा भरे जो सब नहीं बा ओकर वाजें के जहाँ उसी मुआ दे ले बा वो नहीं कि वाले एगो बोली के पांच गो घर बा अब नहीं बोलबा कि कुमा जे है के वो पांचो घर हुआ लाखोज खुद बा वो पांचो घर हुआ तुरा लाखोज दुपिये सीमा के हमारा ईशन में कानून देखी मिसल मैं कानून ही यहाँ देखा था कि ई अदमिया के घर बा यहाँ को जमीन बा अंकलावे बा बन बा चारो बगल से एगो सीमा दे के चला मैं सीमा निकाले के चला हिया जो छोट सबसे छोटा सीमा नहीं कि बड़ा कुमा जो लंबा दूर जाए के
1: पर दूसर गांव से निकल के निकल जाए के
0: हाँ हाँ ये भी हाँ तो ये कुमा जो कानून मना करे हमने के कुछ सिविल बा अचिक 683 हमने के कुछ सिविल मोशे तो वो बोले ला ये कैसे चाहे ला सीमा त्रासे करे के कैसे एगो सीमा निकाले के ताकि वो अदमिया ओकर बगल दुमाज नहीं हुई अभी देख रहा सिबुजो हिया चार गो घर बा अब शोट करे के ओके चाला सब चारो तुरे के घर हुआ बस कि यहाँ शोट के यहाँ तो अल्लाह हुई पब्लिक में आई ना तो सखी को मजा एगो एगो एगो थोड़ा सा डिविएशन डिविएशन करे के उस हई करे के आन के सिमुआ हुआ नहीं नहीं कि होने दूर से लेके आन के हिया बनाई के देख रहा ये बड़ी एपोत है अब हमने आई ला सर एगो सीमा रहल तोहर सीमा तोहर है कोतरा में तोहर है अब हमके मन बा उसी मुआ से रवि करे के पैसा उस सब के भूल जा भी दुआ उस सब नहीं मांगे खोजत हैं मैं उसी मुआ जे हम 30 बरिस से सेरवी कर ले हैं आले भी नहीं तू कभी ऑब्जेक्टे नहीं कर ले वा कोई नहीं ऑब्जेक्टे कर ले बा और उही सीमुआ

0: Il déclare une prescription. Parce qu'il boule là, il go admis, cal, il go boule, il go examine. Alors, il m'a prescrit à carré qui ou matia. Oui, t'en es pas propriétaire. Oui, t'en es déclébat. अरे कोई नहीं अलबा नहीं देखा था डेवलपे करता कोई कुछ नहीं कभी अभी नहीं कर ले बा हुआ उस जमीन हुआ में साइड पोपे तो रहे तो हो ही के चैनल या दूसर देश में चल गल बा तो देख बा वो आदमिया 30 बरिस से ओके कुमा जो ओकीपे कर ले बा कुछ नहीं अलम वो आदमिया
1: 30 बरिस से वो आज वो कम में काम कर ले बा जमीन हुआ के देख ले बा और साफ सफाई कर ले बा तब जमीनवा के सकी प्रिस्क्रिया करे
0: जाई त
1: सही कर ले रही जा प्रिस्क्रिप्शन कर ले रही जा
0: त इही में 30 बरिस से जो वो कीपे कर ले बा प्लांटे कर ले बा कान कही है भेज ले बा मुलाय सिपा का है कैसे वो सकियो कर पापियो सब बा के उतना दिन कोई ऑब्जेक्टे नहीं कर ले बा हां ई कंपंतिर देख के सकी को मजे एगो आही अभी दाबी दे प्रिस्क्रिप्शन दिस ने बोला सर वो मैंने बात कर सर मैं प्रिस्क्रिया कर दे त प्रिस्क्रिया कर दे तो प्रोप्रिएटर बन जाए क प्रोप्रिएटर बन जाए त सिमो कर हो जाए देखला हिया तारेलवा देखली सर जहां वाजेवा के चाहे लगो दुमाज दे के हिया आवत है सर एगो प्रिस्क्रिप्शन करे के कि उ सर्वी कर ले है सर उस है मजे जमीनवा ते हमनी 30 बरिस के बाद हमनी आइला सर एगो प्रोप्रिएटर बन जाइला सर ते ई बड़ी एगो चीज इंपोर्टेंट है आली दूसरा इस सीमावा जो ट्रासे हो गलबा आई के मेन रोड में सेमी पब्लिक में बस एक बान घर नहीं दिखला भाई भीतरे बा मेन रोड है बगल बा अब मेन रोड वा हुआ जाए के आए के हाँ तो ओके चाहे ला एगो आने के एगो सीमा जोन मेन रोड वा में आवेला अब एगो बोली के कब सकब उस सीमा जोन तू सर्वी कर ले हुआ जोन तोहर वाजें वा तोहरा दिले बा मजा सीमा सर्वी करे के या किन ले हुआ अब काल भीरी गुवेनमा जमीनवा खरीदला अभी तो नहीं देख लगे है गवर्नमेंट है कंपलसरी एक्विजिशन जिसे हमने बोले सर खरेला एगो पास के सीमा बनाई के अभी एगो बोली के देखब केरसिप से जेब गाँव बासे तक उमा है तो देखब एगो बड़का सीमा हर हर है में बन बन बन गल बा तो हाउ सीमा जो उ सर्वी करे आदमिया तो अभी दुआ बेदे सीमा पब्लिक सबके दुआ आकसित जहाँ ओकर घर से ओकर जमीन से आके आवेला ओकर है मेन रोड तक सबकी मांग करे कि उस सीमा ओकर वाजें हुआ है सबकी मांग करे कि हाउ सीमा जहाँ आदमी सर्वी करे प्रिस्क्रिप्शन से 30 बरिस तक या बेचले रखल कि उस जमीन ओकर वाजें से अब सुप्रीमे करे के नहीं सर्वी करे के बस की काहे गवर्नमेंट एगो सीमा पब्लिक खोल दिलक बोले भैया जा सीमा पब्लिक सर्वी कर का हमार सीमा आके अब सर्वी कर हाँ डाको तू किनले रहा डाको भी अब हम आप ऐसे करते हैं पर सिकाहे वो ओके कुमार जैसे बस घर बना हुआ था या कुछ बा इनकन्वीनियंट हुई उस सीमा जो वो बकतवा दे ले रहा तो हिया जैसे एगो सीमे पब्लिक मिलल तो ओके बोली को
1: मैम पे ये कर दे रे बाबू
0: हाँ मैम पे ये कर दे ले बा बस की बोला था ना कि सब कोई के चाहना सीमा पब्लिक करे के गवर्नमेंट एक बार भाई लोग के देख बन वेल फ्रांस में का कर ले रहा है अभी बहुत तरी लो जमीन उ लोग के रहल
1: हाँ
0: सबके पापी भेल लग जोन जोन जहाँ गवर्नमेंट कर लग कि बोले हमने निकालत है इसे वो सीमा
1: हाँ।
0: कभी कुछ सीमा निकालब सब कुलतारी
1: तो लग के जमीन के बीच में परी गुजरेंगे
0: हाँ तो हाँ। बीच के सीमा के कंपलसरी एक्विजिशन एक नाम है हाँ। तो कि तो पे करेला पैसा का हाँ, हाँ। जितना बुतवा ले मिसेल में बुतवा ले जोन सीमोए में ले होता तो सिपोजो जब हिया मजा उ सीमा नहीं दले रहल दुआ दे है एक माजे पब्लिक रोड नहीं हो रहल तो सब उ आदमिया के मुश्किल होवे जातल जा दूसर जगह से पासे होई के ओकर जमीनवा में जाए के मैं अब तक खुल गल सीमवा तो यहाँ तक गवर्नमेंट पे ये करेला उ लोग के नहीं वो कोंतरे अनलंवेर है वो वाजवान के पैसा नहीं दे के चाहला यहाँ तक गवर्नमेंट तोरा पैसा दे कंपलसरी एक्विजिशन में हर मॉरिशस के हमने के लिखल कानून है कि नहीं सकेला आदमी के जमीन ले बिना ओके कुछ न कुछ पैसा पे ये करे के तो यहाँ ओके एगो पैसा देलक एगो सीमा के मजा खोललक तो अब जहाँ वह पब्लिक हो कानून बोलेला अब वही सीमा तोरा सर्वी करे के चला नहीं कि दूसर आदमी के जमीन में ढुक या दूसर आदमी के कुमा जे जा मांग करे या किन या कुमा जे प्रिस्क्रिप्शन कर
1: सीमा निकाल देले वन तोर खातिर ना भवे सीमा सेवा कर
0: आदमी नहीं बोले ला अरे तो गवर्नमेंट नहीं देखले है सीमा खोल देला अब वो सर्वी कर ऐसे होला तो यहाँ देखला वो बोलेला वो एगो नोवेल रूट कब कुमा जे खुलल तो तू तोरा चाहेला वो करे के मैं हाउ जोन रखल पहला शुरू प्रिस्क्रिप्शन के या कुमा जे मांग

0: करले रल या उसी मुआ इनसफिशिएंट रल दुगो लोटो नहीं सके पासे करे या कामियो तो अब उसकी सुप्रीमे करे हो एक्सेस हुआ पसी बोली जो सेवी करी हिया सीमे कुमा है
1: और बोली नहीं हम हुआ नहीं सेवी करब हम ही सेवी करब पे कर ले हम ही सेवी करब
0: हां नहीं देखो किस काली उ आदमीया डाली तो बोली ना वो पब्लिक और हमने के कानून तो कानून लिखल है तो बोली ना हमने के भाई बा हमने के है और 685 à 685 में लिखल बा तोरा चाहे हौसी मुआ चले के जो गवर्नमेंट वा बट है दले बा वो पब्लिक के है वो जा सर्वी करे यहाँ तक कानून ओकर हाथ खुशी रहे नहीं खुशी जैसे बोल सर ओकर हाथ अतासी होल बा तो चाहे ओके जैसे कानून होल बा उसे है करे के ओके दे के तो हो आदमिया के ओके देखभाल नहीं मिलेला तो हिया हमने के एगो एगो चीज है कब एगो नहीं चलेला एगो सीमा तो सहा सकब एगो कुमा जे वो आदमी है सीमा के सुप्रीमे कर दे आदमी बोले ना ये जाने ली पहले ये वो सीमा रहल दो तो अब तो सीमा नहीं है
1: यानी कि अब सुप्रीमे हो गल बा अब हम सीमा नहीं सकबा सेवी करे कहे कि तोहर खातिर सरकार एगो नया सीमा बना दिले बा जो तोहर तोहरा किस वजह एक्सेस सब करे तोहर लिए करीब बा अच्छा बा तो हाउ सीमा जोन बा उ वाजेवा जोन बा बोली देख अब हमार सीमा सेवी कर बंद कर तो बोली नहीं तो हम तो पे कर रही तो के हम तो हई सीमा सेवी करे बात कुछ ही हुई
0: हाँ मिसल में एक बार जगह बा कि कहा उ लोग बोले लनसन देख हम तोरे दे ले रही पैसा कब पहला शुरू कि उस सीमा के एगो पैसा दिले रहे तब हमके कुमा जब घुमाओ ये हुए ला मांगे लंसन बस बोले ऊ बकतवा तरल अब तो नहीं सर्वी कर बे मिसल माँ हमार से गो पैसा कुमा जा है देले रले तो सकेला एगो आको हुई थे दोनों में गिरे तो हिया सकी हाँ बुशे करे हाउ बुगवा
1: अरे बेस सकेला होई कि सिमुआ जब बन गल बा पैसा पे हो गल बा कि तब पैसा मिल गल बा पैसा सेवी कर ले ले बा अब वाजा अच्छा बा निमन बा तब का चाहला जाके कुछ बोले के सीमा सीमा हा सेवी करे के बा कर नहीं सेवी कर नहीं कर तारा तो पैसा मिल गल बा तो फिर को एक में संतुष्ट हो जाला
0: हाँ मैं एक बार जगह देखब अभी के लिए हम के है देखब है मैं है लागो छे बगल एक बार जमीन बा कब जमीन बा इसने जमीन वहाँ छूटल बा मैं देखब सीतन सीमा छोटा छोटा बा भी मोस्टली होल बा कहूँ कहूँ तो नहीं होल बा तो देखब बहुत सा सीमा बहुत एगो कुमा जे एगो डिफिसिल बा कबो के देखब कि अरे कैसे ई सकल लाई एगो दुगो लोटो जाए के और हमी तो सबको आजकल खोजत हैं सर थीमा है बड़का सीमा में देखा कब जैब है शहर है इसी बोझ कार्बन से वो तो जो है में हमने के समय है बा अरे अभी तो चार गो है बगल दू गो मोटे दू गो देशान अनुमन कुमार जे है में है दूसर देश नियर में बड़ा बड़ा सीमा करते हैं का हमने के पुपीला शोन लो तो है ने अब तो ज्यादा कुमार जे होता ना ऐसा छोटा छोटा सीमा कभी देख बा गुवेन में और गांजी करते जाता कि कुमार जे है सकियन सन ट्रैफिक जाए
1: एक सवाल बा मानना कि एक जना की जमीन बा ओकर जमीन जो बा सीमा के बोर में बा तो पीछे में और जमीन बा ना तो कुछ कर लन वो बागाज डाल दिलन चारों बगल अपन घर बना लेलन तो पीछे में कोई के जमीन बा अब उ जमीनवा में कैसे कोई सकी एगो अब तक सबके तो अपन बागाज बना ले बा पीछे के जमीन जमीन रहल वो तो कोई जंगल उ रहल कोई के नहीं पता रहल बाद में पता चलल ई जमीन कोई के है तब अब तक बहुत पहले से कैसे आगे के घर बनावल जानत हो ना अब तक बागाज सब कुछ होगा पीछे में जमीन बा अब तीन गो वाजे होवन जा जो ऐसे अलाइन होवन जा तीनों ऐसे होवन सा जमीन जो बा पीछे में बा अब उनकरा सीमा चाहेला तीन गो या चार गो घर बा तो कहीं कोई ना कोई के तो परी अपन मिगाई तुरे के
0: एगो एगो खूब ऐसा ने बड़ी जोली है वो एग्जाम्पल दिला हाँ जाने ना मॉरिशस में बाई से जब एगो मुसलमान हुए ला या एगो घर बनेला या भाई भाई बहन लोग पताज करता है तो का करेला भाई बहनों में तो कभी ओके हो जाए आमियाब से सकबक मजे कुछ ना कुछ बनाई मैं कभी कोनो भाई बहन में बनेला नहीं तो बड़ी डिफिसिल कर देवलन सन तो देखब उस सीमा मेन रोडवा में से पहला आदमिया जैसे बोला एगो बाज ब्लॉक डाल दे ले बा तो पाछे वाला के अक्से नहीं मिलता कुमा जे सीमा बाओ सठ की बा सीमा में सीमा छोटा बा तो बोली देख जाने का कर तू है बगजुआ तू रे तो के तुरे के चाहेला पर हमनी के नहीं
1: मानना जमीनवा जोन बा वहाँ कोई नहीं दिखता
0: हाँ।
1: कोई कोई नहीं जाना था एगो जंगल जंगल बा वो जमीनवा जोन बा कोई के बा और कहूँ दूसर पे ही चल गल बा कोई हाँ। नहीं बा हाँ। ये लोग अपन जमीन मिलल लोग अपन घर बना के सब कुछ कर लेलन हाँ। अब 30-40 साल के बाद वो लड़का लोग आवत है बताई हमनी के।

0: जमीन हमने के अब तो जमीन वहाँ के कैसे तब तक बगास चारों बगल होकर बा कैसे जी अंसर भित्री
1: हाँ मिसलमा कब ऐसा एगो केस हुए ला तो उससे के एगो केस डाले लाकूर में कि ओकर वाजन वहाँ या भाई वाचा चाहो या कोई भी होई बने ले बा ओकर जमीन में नहीं का कर ले बा ओकर जमीन वहाँ सी बोझों आ आ बे बीस पीयर हल अब तो देखो ता 25 पीय में डाल दे ले बा सी बोझों ई एक दूसरा जब बगजुआ डाल दे लो तब ले ओकर जमीन वहाँ के ओकर हई हई में लंबाई में कोरेक बा सी बोझों कर प्लान बान हर एगो पोंतरा कभी गोद बनावे लगो आदमी तो ओकर प्लानवा में बोल दे ले बा कितना ओकर डिमेंशन बा जे ओ करता दल्ले बा बगजुआ दापरे ओकर प्लान के डिमेंशन में हाउ लुक कमे कितना आई कुछ नहीं सकी करे आका जे नहीं उतुरे खो जाता नहीं ओके मन होई दे के जाने ला कितना आदमी बा मॉरिशस में पहला हाला घरवा आदमीया उका करता उकर हिया इलेक्ट्रिसिटी कुआं बा पानी बा बस ओ पानी आर इलेक्ट्रिसिटी वा के कुमा जे ओकर तो प्रॉब्लम नहीं बा मैं अब ओ आदमीया जोन पाछे बा ओकर नहीं बा सीमा कोलोन डाले के या पानी ले जाई के ओकर न त ऊपर से घरवा तो नहीं सकी ना ओकर घरवा ले जाई अब एकर कुन समस्या है कैसे ओ कुमा जे अब ओके पानी मिली या ओके है है इलेक्ट्रिसिटी मिली तो हिया मांग करेलन सन कि देखा ऐतेल अई आदमिया के चाहला या एगो कोलोन डाले को जाता मैं कोलोनवा जहाँ डालता ओके चाहला आई हऊ के घरवा में हऊ के मटिया में डाले के जो नुकर वहाँ से वहाँ में बा बस की सीमा तो शायद छोटा हुई नहीं सकल लाई कोलोन भी हुआ है डाले
0: तो वैसे भी जब लापोताज हुए ला तो देखा आगे के जो लापोताज रहा उठ जिफे हो रहा एगो माटी तो हरा मिलकर 10 पेस के माटी इतना मिला 10 पेस के इतना हो तो जहाँ ओकर 10 पेस फिनी हुए ला हुए पर एगो बाहर डाल दे रहे हो जा ना अभी बोले ना जब घर बनाओ था चारा तरह थ्वापिये छोड़े के इनकरा बोला थ्वापिये छोड़े के ना थ्वापिये थ्वापिये तब बीच में दलबा अब ऐसा में आज ऐसे होल की कोनों के माटी हाउ बगल बा मिराई के पीछे तो थ्वापिये थ्वापिये बात है तो परी बीच के मिराई तुर क्योंकि सीमा देखे ना
1: वही का अली ये बोला थोड़ा जैसे गुड एग्जाम्पल दे रहा हाँ भाई बहन हो अनसन माँ बाप की जमीन रहल अब का कर लेसन पौताज पहताज कर लन सन तो हियाँ उ लोग के कुमाज चाहे ला एगो सीमा चाहे ला कुमाज के कर घर कहाँ गिर रहता एगो सीमा बस कि नोमाल में जब एगो जमीन के बंटवारा हुए ला कुमा डिविजन हुए ला तो चाहे ला एगो प्लान करे के उकर प्लानवा में अपतेरुआ बोले ला इस सीमुआ कितना उकर गांधे बा और उकर लंबाई कितना बा बोले ला सी बोझो हई जिगचे निमे वन आ ओके मिली उकर प्लॉट निमे वन जैसे दे थ्वा कात ऐसे तो उ लोग के बोले ला हिया के कहाँ मिले ला तो उ बखत वा आवे ला एगो कुमा जे समस्या धोआ देश में तो हिये चाहे ला कब कुमा जे जीविजे होवे ला भाई बहन में तो तुहरा चाहे तुम डाकू हो के सिमुआ के बड़ा कितना बड़ा करे के ताकि कुमा जे आई बस कि नहीं कि हमार छोटका भैया पाछे बगल बा हम आगे बगल हैं बोले तो बोली हम आगे बगल की तो कोई प्रॉब्लम नहीं बा तो सिगुआ होला सी बुझो बहन हुआ तो ओके तो कुमा जे सी बुझो आगे वाला सिमुआ है नहीं ओके मिली तो कैसे वो पाछे बगल सिर भी करे अर से तू पाछे होला ने ओके तो कोई प्रॉब्लम हो जाला तो हिये अपतेर का करेला ओकर प्लान है कुमा जे कब करेला तो हिया गो सीमा बनावेला जो आक्से मिलेला एक नाम सुमय कुमय समय को मैं मतलब सब जगह सकी सिर भी करे कोनो कहाँ उकर जमीन मिलल बा वो कुछ बात नहीं सकी सिर भी करे तो देख बिया आके पहला होला उसी समय को मैं सेवी करेला हिया का वेला कपता जुवेला तो सब चीज डाको हो जाला अपतेर डाल देवेला अब ये है कपता जुवेला और कभी कब एगो जमीन बेचाला जमीन बेचाला या पोताज हुएला कब पोताज हुएला तो वॉँच से तू एगो आदमी के सकेला आगे मिलल बा एगो दूसरा भाई बहन नहीं है एगो दूसरा के मिलल बा तो दूसरा के कब मिलल बा तो ओकरो ना चाहेला एगो सीमा एगो सीमा जहाँ के मिले ना तो कैसे वो आई नहीं सकब ओकरो अंकलावे कर दे कि अजगे बारी कर दे एक बार तो देखब कब एगो आदमी ऐसा सीमा करेला जाके करा ओकर क्लोचिया का करे लनसन गेट डाल दे वे लनसन है इसी मोह में वो पाछल के आदमिया नहीं सकेला अब गेट डाल दे या गाड़ी तो क्या लाकले डाल दे वेला अब लाकले डाल दे वेला तो अच्छे बैगो से की हुई थी मैं ओके लकलेवा नहीं देवेला ना लकलेवा वो खाली अपने खातिर रखेला तो इसी बोझो 12 बजे रात के आई थे देखा था वो लाकलेवा तो कहाँ से मजे जाएगी ये भी देखब कुछ बहुत
0: कुछ करेला गमला में फुजे प्लांसे होकर के हाउ डाल दे
1: वो सब डाल दे वेला हाँ सब मजा ही

0: आजा जो माओ कर घर भितरे बा और के झगड़ा हो गल बा तब के जाई नहीं देवे लंजा
1: हां ते ई आर आर एगो जोली ई सिमोय के विषय में का तो से मैं दे सोची
0: एगो समस्या एगो संगतिया के एगो समस्या रहल जहां पर परिवार वे होवन जा उनकर घर भितरे में बा और सामने पे जब लापौताज होल तो बातचीत नहीं होला तो कुछ करेला उ अपन जितना ओकर गमला उ बा जिकर ओकर कूड़ा कचरा बा सब सीमा में ऐसे छोड़ देवेला अब ई जब लुटु लेके आई तब कैसे जाई
1: एक खूब बोला एक बार पोफलेयर नहीं है जहाँ अपन घई घरवा मिरेवा के रख ले निकाल के तनी आहेने डाल देला हो आदमिया की मुश्किल ये तक मजे पुल डाल दी फ्लेयर तो फासिल बा वो नहीं समझ से इनकन्वीनियंट हुई आदमिया के पास हुई के मैं सबसे बड़ा चीज जान रहा कितना उसीमुआ जुन बा उमें घर बनावत वन सन को घर गाज डाल देवेला उसीमुआ में कुमा जे है आके आवेला उसी मुआ से बुझो बारह पियर के रहल चार पियर के कुमा जे उमे भिचुआ में है देखब एगो है डाल दे बा एगो है घर बना दे बा तो ये सकल लाइक कुमा जे तुरे ही सब शर्मा कौन से अच्छी घर उतना बनाई ला सिमुआ सिरे कर देला कब वो के कोवेनिया कर रहा था तो वो किस करके ला अब जो
0: सवल बाबा के उलाट डेला जा
1: हाँ
0: ओके अब एगो वाजे के बहुत पहले से कर घर बा ओकर एगो सीमा बा जो सेवी कर रहा था वाजे वो कोई नहीं बा घर कुछ नहीं रहल जब देहांत हो गल तला पोताज हो गल तो भाई बहन में जमीनवा जोन बा आगे के ई वाजे हा और आगे के जोन बा वो दूसर कोई के माटी है तो ई जोन हवन सीमा सेवी करत एगो सीमा बनैले हवन ऐसे कच्चा सड़क बाएगो जोन सेवी करेलन अब जब वाजन लोग के माटी मिल गल तो बोलत हुआ जा कि अब हमने के सीमा में नहीं जो तब हियाँ पर जोन वाजन बाबा उकर धुआ हा बोले कि हम हियाँ पर 40 बरिस से हैं 40 बरिस से हम हैं सीमा सेवी करेला अब जब ये लोग आल बन जाए तो हमने के बोलत हुआ कि सीमा नहीं सेवी करके कहे कि हम एक गो से मैं सोची बा उकर लागे तो जोन वाजन बाबा उके चाहेला उबलीजे हो के उस सीमा दे के
1: जरूर असी का है तू ही बोल देला सब 30 बरिसवा के कब सिर भी कर लग ये वो पौमी कोजिश हुआ
0: 30 बरिस नहीं 5 या 10 बरिस भी सेवी कर लग
1: हाँ पाँच तब वो सकी वो जे आप से करता तो सकी वो लाखू मांग करे के हो वजन वजन के सिमुआ नहीं बा या वो हवला जो है बन करे खोजता सिमुआ के पुष्पीव करे के कि देख कैसे हम निकलब अंकलावे हो एकरे नाम हो तो कैसे हम कुमा जे हम आज ही हम के बन कर दिले हुए हमके बंद कर दिले तो कैसे है तक यही से कहती कानून बान कानून कब सुनी के सुआ पौतेर गल बात देख ले बा उकर उपजे बासो सब चीज का देखा था बोले हाँ एक तो समय दे सोची
0: खोजे कि देख भाई हमने के तोर घर तोर सीमा सोची जोन बा हमने के माटी के बीच में आवा था हम घर नहीं सकते बनाए हम तो के देवत है ऐसा कर कि बीच में नहीं गुजर हम तो के सीमा कोना में देवत है तू जब निकलत हुए अब देख तोर कोवेनिया रही तू ऐसे कर अपन अपन अपन जब निकलत हुए अपन घर से तो हम उनके बीच के जमीन में गुजरे के बजाय हम कोना में तो के देवा था तो तू कोना से निकल जो एगो ऑप्शन ई भीर सके रहे
1: एगो आको हुई थे बिचारे देखो सको हुई थे हमें खूब बल सेलमा आ देखा था हम जन जन तो पिकवा कर ले जाते हैं सर एक स्टेप आगे हो तू एक्सपीरियंस भाई में बस ये काहे बोले लंसन ना कब ओके कुमा जब औसन चीज कब हुएला जब वहां से एगो चीज सकेला बोली वाली पाफे नहीं तू बिछुआ में नहीं करिए मैं कुएं वहां में रहिए ओके यहाँ भी देखा ओके
0: ये है ना क्योंकि बाहर जाला निकले के तो बीच सीमा में हम तो के काहे देव हम तो के कोना में देवत है तो जमीन वा तो औसने ही बा पारे बा तो जहाँ तो के जाला सीधे सीधे हमने के बीच के जमीन में निकलबे काहे की एगो भाई के जमीन और अवथी बा कैसे बोला जाए हो सकेला 20 जोन पेयस माटी बा तो लोग के चाहला 10-10 पेयस लेके तो बोला देख हमने तोरा सीमा देवा थे जा तू है कोना में सीमा ले ले हमने के यहाँ के जमीन रह जाए
1: हाँ तो ईद खूब बोल रहा है जब ये लोग दोनों में दे डाको आको हुई थी सब चीज बोले लन सर केस का कानून जाइब कब एगो आको हुई थे आमियाब ती तो सब चीज ठीक है
0: हाँ।
1: बस ही काहे अपन वाज है तही तो तोहर मजे है मजे अपन परिवार है तो ओकरे संगे तू तो मजे सकब आके बच जाए वो देख भैया कहा हम लड़ाई करब सर धन दौलत या जमीन के विषय में है सब कोई तही है हमने के छोड़ के जाए के चला अरे तो कुछ बात नहीं है एगो बात हम समझत हैं तो जहाँ घरवा बनाई ले शायद कुमा जो उस समय दे सोची हुआ ऐसी फीजा बा उतना बड़ा नहीं बा कि जैसे थे देख ली सर लुत्तो आली विने के आँख से मिले के वह पब्लिक में तनि जिफिसल बा फोदे हमने दे आले कोरेक बा हमार तुम एक मजे नहीं है, एक मजे लेनमी नहीं करब सर, एगो आको हुई ते आमयाब कर लिया सर, हमने दे लिया सर।

0: tout beau toi. Ce qui voulait, c'est moi beach mais n'ai servi carrière. Ah que comment dire, coin ouin mais servi. Ar beach mais canouni vin n'ai dit toi là. Ou qui mana carré la godmi. Quoi il bégon panter ou n'ai jai boulet beach mais n'ai. Har chiz kab nikal bego sima. Ya kuch karba, te boulet n'san dans beau sima carreke. N'ai qui beach sima mais karba ta valia jun baou hai ke hai zaminoa ke sab bigar de lava. Yeah, here they go. You go cheat circle like regle curry. You go kumaj amiab.
1: Alamiab.
0: Do go kumaj hai admi. Hai accept the hogalanson. Make a desacoba. Desaco accept the new one son. Amiab curlanson. Nay batiaike. Dusar admi akibula. Baradmi bullet. Ekamal. Hai jabe zamin haike. De don't go boot kumaj oke kumaj. Servi curryke. Bullen hai. Ham nay deep. Yamar babki de well her. Abu Iban badmi sub cheat upon maniac bullet. नहीं दे तो सैप हो जो नदमिया मांगा था उसी मुआ कि कुमाजे बड़ा तनी बड़ा करेके तो उस की चाहे लाओ क्योंकि आबू का आबू ही देख के वो किस लोजे करेके है कुमाजे लाखों सिपाही में से कि ज़ूस के मांगे एगो दुआ दे पासाज एगो दुआ दे पासाल एकरे नाम एगो समय जो इनसफिशिएंट बा ओकर कुमाजे बड़ा नहीं बा देख ली से पहला शुरू ना लुटो कामियो नहीं सकता जाए तो कोई इनकन्वीनियंट करी
1: आदमी जब घर वो बना मिला तो मान लो घर वो बना ले तो के मेप किने के रहला सब कुछ किने रहे तब कामियों कामियों तो अबे करेला ओकर सामान लेके तो कहाँ रखी कैसे लेके जाए
0: हाँ तो हिया देख लो जब ओके इनसफिशिएंट हो जाला उसी मुआ तो कब मांगी ओके कही कानून के सिर्फ ओके कन्विंस करे के चाहे भी देखब सका करे के चाहे
1: एगो सवाल और बा जैसे कि हमने बोली जा कि मान लो कि तोहर जो जमीन बा वो सामने में आवता गांव होत बा तोहर जमीन सामने में आवता वाजा के जो माटी बा वो पीछे में बा ओकर पीछे में और कुछ नहीं बा हाँ ये खाली उकर उकर उकर उकर जमीन बा और ओके एगो समय सोची चहला तो समय सोची उसके बता देख एगो कोना में देखो देवत है आई जाए के यानी कि हाउस सिमवा जोन बा खाली वाजे हुई सेवी करी जाए के आई के तो ओके नेसेसियर नहीं बा ओके ढेर बड़ा जमीन दे के एगो एगो लोटो जाए आई मैं सिर्फ जब एगो जमीन लंबा रहेला पीछे में ढेर घर बा तो हुआ चहला जमीन के उकर इतना बड़ा रहे के कि दू गो गाड़ी चहला यानी कि कुछ सीमा हुई रहेगा नॉर्मल सीमा जैसे बोली राजा आई जाए के और उतना चाहना ओके जमीनवा दे के
0: अरे ये एक चीज है जे एगो बोली के आगे बा एके गो पाछे बा कुमा जो करेगो वाजा वहां के ओके एगो जमीन दे देला
1: खाली ओकर आई के जाए के ओके जाए के
0: ओके हिया में प्रॉब्लम नहीं बा दिस इज सेगो प्रॉब्लम वा बोला जे सिपोसो बहुत सा सिमवा बा बहुत सा हो बगर
1: पाछे एक
0: ढेर घर बा तब चाहे ये वो चीज है पोता ओके मिले के पेमी जुन हो आदमिया के बेचे के सब कह जाए तो हिया देखब मोसेल में हो या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो आके देखे लाई दे के पेमी की कुमा जे घर बनाई के या कुमा जे कीने के घर उर के से तू कब घर बनाई तो देखे ला प्रूव हो के चाहला है ऊ पेमी वहाँ कि जुन बाया सीमे सीमा एगो सीमा सफिशिएंट बा नहीं इनसफिशिएंट सफिशिएंट बा कि बड़ा बा आले भी नहीं करे के न तो नहीं हुआ के पाछे बगल के अदमिया के नहीं है मिली तो तब नहीं भी नहीं
1: यानी कि एक ही गो लुटो के खाली जाए के और आए के सीमा रही हाँ। तब भित्रे में ओके धुआं नहीं है एगो मोसेलमा बनाए के
0: नहीं या गो घर वो बनाए के नहीं दे पे हमें जिससे काम से लिया ला मेरी बस ओके बोली के हाँ तो सीमा तो तुर सीमा कुमा जा देखा नहीं बड़ी छोटा सन सीमा बा तो नहीं दे
1: ऐसन में तो घाटा तो उकर होगल ना कहीं तो उकर घर बनाए के बाद
0: हाँ तो नहीं घर सकी घर हुए कुछ करे उमें अब तक मजे तब ले मजे सिमुआ बड़ा नहीं हुई समझ लो ना तो नहीं सकी अभी एक बार जगह नहीं देख लो पहले का रहा एगो जमाना कभी एगो आदमी सीमा रहल तो खाली माटी के सीमा रहल अब तक मजे मांगे लन से कुलतागे
1: का कुलतागे वाला
0: तो देख लो
1: एगो सीमा जब कुलतागे हो जाए तो पब्लिक हो जाला
0: हाँ एगो अरे ई में एगो छोटा सा बतिया सी दो तीन मिनट वक्त बा एगो सीमा जब सिपोजो प्रिवे है धुंध घर उड़ के रहला माटी के है कुमा जब सीमुआ तो कब मांग करे लनसन है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से कि उस सीमुआ ओके पब्लिक डिक्लेयर कर तो पब्लिक डिक्लेयर करे कि उकरो एक बार प्रोसीजर है जब पब्लिक हो जाए डिक्लेयर हो जाए तब ओके म्युनिसिपालिटी सकेला को है कुलतारी करे जब एगो सीमा काल देखब कुलतारी हो गल बा वहाँ पासे हो तो वह तो जान उपमा जे कोरेक है उस सीमा पब्लिक है जे कुलतारे हो बस की है जिससे काउंसिल नहीं जाके कुलतारे करे एगो सीमा जब एगो एगो सीमा प्रिवे है ना तो ओके कब पब्लिक हो जाए तब ओके कुमा जे कुलतारे करे तो ही ओकर जी फेमस वा जान जाइब कब चलत हो या पोंजीरे करत हो या लुत्त जात हो तरी ये तो सीमा एगो माटी के है तो माटी के सीमा यहाँ तो मजे है नहीं है।

0: Yeah. Mm. Să-ți zima public că zima ne-a.
1: Public că zima că și bană și nouvel rut, dar eu și ma public că ha. Eu cum bolii că are bană că rău că aghi, ali. Te am ni decât ai să văd de bană tăni, mă ne?
0: Ha, am două mine să cap să văd iai.
1: Ali, e cu cit, zice, mă bolii, luzi, care că cea la e cu semet de sus, ta cea la jun admia, u mancără ta doa de ओय पसजवा उ मांग करता है तो मांग करता लाकू के तो के चाहेला बताई के ए पस एक बांध के समय अभी है लड़ाई करते से लाकूर में जहां कुमाजे प्लेटवा में देख बचाला सब डाले के ना एक बांध तो नहीं डाले लनसन तब बताई के चला उ सिमवा जोनबा ओकर घरवा जहां मटिया बा अंकलावे बा मतलब सीमा नहीं बा निकले के दूसरा चाहेला ओके बताई के कि उसी में जो उस सीमा जो निकले के बा नारो बा सीमे un ar je naro nahi hoy ta insuffisant ba disse mais ça du goti hay nahi sakhi cha dusra chahe la batai ke ki u simwa jun ba tis baris se servi kar le ba u admiya ta u mang karata ke ase aur jun admiya objecte karata ki kum ka o ke mil u simwa sa ka khole ta bole u vi aussi o kar an ke age कभी उसी मुआ जोन कुमाजे सर्वी करता यदमिया मांगता बड़ा करे के कभी उपजिकते नहीं कर ले रखल उ सर्वी करे आदमी आले भी नहीं करत रखल और ओ के कुमाजे कभी कुदमी नहीं उपजिकते करेला तो सब याक्षिप्ति हो गरल ना और या तीस बरी से हम बोली नहीं मैं सिल्म ओके बताई के चाहेला कि उसी मुआ कब बड़ा करी खोजता तो उसी मा इनसफिशिएंट बा सफिशिएंट नहीं बा कि ओके चाहेला अब ओके बड़ा करे के या बोली देख भैया एगो पैसा तो के पे करी ला
0: तब इसकी
1: हाँ तब से की कुमाजे अब तब लाकूर डिसाइड करी उ जीजों सो मो कुमाजे या जीजवा कब जे लाकूर में होई तो उ डिसाइड करी की कितना पैसा मोडालिटी जिसे हमने बोला सा कितना पैसा पे करे के चला तो खोले के चला सी
0: बहुत खूब तो आज के हमने के जो कार्यक्रम बा आज की चर्चा कर में हमने आज बात कर ले है जा राइट ऑफ यानी इशू में दो सोची जैसे कि कैसे वाजन के संगीत ने कोई मुश्किल हो जाला सिवा होने मिलेला तब जान गेला कि तोहर अधिकार है सगबा जा अपन जो केस बा फाइट करे और जैसे हमने बोली ला जा कि आज हमने मनाओ थे जा विश्व पर्यावरण दिवस आज के दिन चाहे हमने के जरूर सोचे कि हमने के जो देश बा आज हर कोई अपन अंगना सफा करी ना और अपन आसपास में सफाई रखियन तो हमने के पूरा देश साफ सुथरा रही और एक रे बोली ला जना स्वच्छ हमने की स्वच्छता जुन बा ओकर पचाना ध्यान दे के तो वकील जी बहुत बहुत धन्यवाद कपिल देव रघुनंदन जी कि आज हमके कार्यक्रम में आयला आज भी बहुत कुछ सीखे के मिलल जाने के मिलल हमने के जितना भी दर्शक श्रोता लोग हम जा उम्मीद करते हैं कि हमने के कार्यक्रम से ढेर कुछ जाने ला सीखे ला अपन धोवा जाने ला अब अगले हफ्ते एक और कार्यक्रम के संगे आवब जा अभी के लिए आज्ञा दा शुभ दिन।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: आइए सुनते हैं समाचार पूजा के साथ. नमस्कार.
4: नमस्कार गिनीशा, सभी को मेरा नमस्कार. समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं. यूके में एक नया विधेयक मॉरिशस को शागोस द्वीप समूह की पूर्ण संप्रभुता सौंपे जाने की प्रक्रिया को जटिल बना सकता है. हाउस ऑफ लॉर्ड में पेश किए गए इस विधेयक में अन्य बातों के अलावा ये प्रावधान है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले शागोस वासियों की राय ली जानी चाहिए. और पिछले कुछ सालों के दौरान थोबिश में लगातार हो रहे इरोजन के कारण समुद्र तट के कुछ हिस्सों की चौड़ाई काफ़ी हद तक कम हो गई है. पर्यावरण मंत्रालय लगभग 1.1 किलोमीटर तट रेखा पर एक बड़ी सुधार योजना बना रहा है. वहीं बीच कॉम्बा होटल ग्रुप ने पिछले हफ्ते थोबिश होटल के सामने एक पुनर्वास परियोजना शुरू की है. फ्रांसीसी विशेषज्ञता द्वारा चलाए जा रहे इन कार्यों का उद्देश्य है प्रकृति की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए रेत के बहाव में धीमापन लाना. मॉरिशस में रेन्यूएबल ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है. पुदोदो में कल एक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया जो लगभग 3,400 घरों को बिजली देने में सक्षम होगी. एमसीबी, ओमनिकेन और कालीसे इंटरनेशनल के सहयोग से तैयार इस परियोजना पर 250 मिलियन रुपए का निवेश किया गया है. खास बात यह है कि यहाँ बिजली उत्पादन के साथ कृषि गतिविधियों को भी इस परियोजना में लाया गया है. इस परियोजना का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना, बिजली उत्पादन में अक्षत ऊर्जा की हिस्सेदारी 60% तक पहुंचाना और 2035 तक कोयले के उपयोग को धीरे धीरे समाप्त करना है. मॉरिशस से दुनिया का पहला गन्ना चीनी उत्पादन देश बनने की ओर अग्रसर है जिसकी चीनी बोंसुखो से प्रमाणित होगी. ये आधिकारिक प्रमाण स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी की गारंटी है जो ये सुनिश्चित करता है कि उत्पादन श्रृंखला पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और सम्मानजनक है. ये इस बात का भी प्रमाण है कि स्थानीय स्तर पर उठाए गए कदम और पहल सफल परिणाम दे रहे हैं. इसी का उदाहरण है मॉरिशस शुगर सिंडिकेट को पिछले सप्ताह आयोजित बोंसुखो इंस्पायर अवार्ड 2026 में विशेष सम्मान और सराहना प्राप्त हुई. विदेश में बढ़ते तापमान और चरम मौसम संबंधी घटनाओं में वृद्धि के बीच विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने दुनिया को एल नीनो की वापसी को लेकर चेतावनी दी है. संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी ने सभी देशों से अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम को और मजबूत करने की मांग की है. तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए. हम मिलेंगे शाम 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन के साथ.
5: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

क्यों चिट्ठी मिली, क्यों चिट्ठी मिली, चिट्ठी मिली। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये रेडियो मनोरंजन RM3 का प्रसारण है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:13 हो चुके हैं। जहां कहीं से भी आप जुड़े हैं, तहे दिल से आपका स्वागत है। और इस एक घंटे के सफर में हम जुड़ेंगे आज की इस चिट्ठियों के साथ, जहां पर आप ही के द्वारा भेजी गई ये चिट्ठियाँ हैं और आप ही के दिल की बात कहेंगे आज हम इस सफर में। तो पहले तो हम बहुत दिल से आपको थैंक यू कहना चाहेंगे। जितने भी लोग प्यार से अपनी चिट्ठियां भेजते हैं, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और आज की ये चिट्ठी हम चुनकर लाए हैं, और इस चिट्ठी को पढ़ने से पहले ये कुछ अल्फाज हम ज़रूर जोड़ना चाहेंगे कि इस संसार में जब जहाँ जो और जैसे छूटना है वो आपसे छूट कर ही रहता है, वो चाहे रिश्ते हों या फिर सांसें, सबका समय पहले से तय होता है। ताज्जुब की बात तो ये है कि प्रकृति इन घटनाओं की जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेती, वो किसी व्यक्ति विशेष को मोहरा बनाकर आपसे चीजें करवा लेती है और ये पहले से तय है। इसीलिए जो भी घटनाएं हमारे जिंदगी में आती हैं, जो भी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, या कई बार कहते हैं ना कि इंसानों का बस ऐसे ही पलट जाना, मुकर जाना, कई बार हम इन सारी घटनाओं को समझ नहीं पाते, पर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होते हैं। और इसी कारण हम कई बार इन झमेलों के साथ उलझ कर रह जाते हैं, पर उसका जो पॉजिटिव साइड है उसे हम देखना ही भूल जाते हैं। ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि

की जो चिट्ठी है कुछ ऐसी ही घटना पर आधारित है। और बिल्कुल आज की जो कहानी है वो भी दिल छू जाने वाली एक कहानी है। ये चिट्ठी है एक लड़की की और आपने ये चिट्ठी हम तक भेजी है, ये बात कहने की हिम्मत की है। कई बार जब हकीकत को झेलते हैं तब लगता है कि ये फिल्मों की नहीं पर ये असल जिंदगी की बात है। तो आइए आज की ये चिट्ठी लेते हैं और दिल से आपको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही एक कह सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू हमारे साथ आपने शेयर किया है जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आप लिखती हैं कि मेरी शादी होने वाली थी और जिससे शादी होने वाली थी उनको मैं लगभग 3 साल से जानती थी। वो एक बड़ी पोस्ट पर काम करता था और काफ़ी अच्छी कमाई थी, लाइफ सेट थी। जब समय आया तो परिवार को आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला और वे भी इस रिश्ते से संतुष्ट थे और परिवार की रजामंदी पर आपका रिश्ता पक्का हुआ, तय हुआ। शादी की तारीख भी तय हो गई और उसी समय लड़के को बाहर विदेश में काम करने का मौका मिला। मेरे मंगेतर की तरक्की से मैं बहुत खुश थी और हमने फैसला किया कि शादी को अभी 8 से 10 महीने बाकी थे और इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। ये ज़िंदगी की एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो हमारे ज़िंदगी के इस मंजर को एक नया रुख दे रही थी। परिवार ने भी इस फैसले में अपनी हामी भर दी। जब हम यहाँ शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, हम दोनों शादी के लिए बहुत ही उतावले थे, बहुत ही उत्सुक थे। तब केवल शादी के 3 महीने पहले ही मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में मैंने ज़िंदगी के एक सबसे मुश्किल दौर का सामना किया। मेरा एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण मुझे काफ़ी चोटें आईं। मेरी रीढ़ की हड्डी, मेरी वर्टेब्रल कॉलम को बहुत ज़्यादा गहरी चोट पहुँची जिसके कारण मेरा चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जिस परिस्थिति से मैं गुज़र रही थी, मेरा शादी करना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा था। डॉक्टरों ने भी मुझे यही कहा कि हो सकता है कि इलाज लंबा चलेगा और पूरी तरह से शायद तुम ठीक ना भी हो पाओ। अब ऐसे में मैंने अपने मंगेतर को बताना ठीक समझा। इससे पहले कि मैं शादी को इनकार करूं, उस लड़के ने ही शादी ना करने की वजहें खड़ी कर दी। पर उस वक्त इस बात को अपनाना मुश्किल था। पर एक बात मेरी समझ में ज़रूर आ गई थी कि जब मुश्किलें आती हैं तो चारों ओर से आती हैं। पर मैं भी हिम्मत नहीं हारी। मैंने भी बहुत बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाई और बहुत लंबे समय के बाद अपना ऑपरेशन करवाया। लगभग 9 महीने तक मेरा इलाज चला और धीरे धीरे करते हुए बहुत मुश्किल से मैं ठीक होने लगी। आज मैं पहले की तरह चल पा रही हूँ, पर कुछ कमियाँ अभी भी है। पर यह एक्सीडेंट मेरे जीवन में एक वरदान के रूप में आया। मैं यही सोचती रही कि अगर ये शादी के बाद हुआ होता और अगर मेरे पति ने मेरा साथ छोड़ दिया होता तो मैं शायद इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। पर आज मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ। जो हुआ अच्छा ही हुआ। सभी से यही बात कहना चाहूँगी कि कोई भी मुश्किल, कोई भी परिस्थिति में मायूस नहीं होना चाहिए। इस मुश्किल की घड़ी ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने आप को पहचान सकूं, अपनी क्षमता को
समझ सकूं, अपने बर्दाश्त की हद को बढ़ा सकूं।

दुनिया की हकीकत का सामना कर सकूं। आज मैं इस कदर काबिल हूं कि अपने पैरों पर खड़ी हो पाई हूं। अगर आज के इस कार्यक्रम में आप मेरी चिट्ठी को शामिल करते हैं तो मैं दिल से आपको थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू तो हम कहना चाहेंगे आपको, क्योंकि आपने एक जिंदगी के एक ऐसे पहलू को छेड़ा है, एक ऐसे पल का जिक्र किया है जहां पर हम बिल्कुल महसूस कर पा रहे हैं कि आपने किस मंजर का सामना किया, किस मुश्किल की घड़ी का सामना किया। सच में देखा जाए तो ये एक ऐसा दौर है जहाँ पर कहते हैं ना, जिससे हम प्यार करते हैं अगर वो ही अपना पल्ला झाड़ ले, वो ही अपना हाथ छोड़ दे, इससे बड़ी दुख की घड़ी और कोई नहीं हो सकती। पर हम आपकी हिम्मत की दाद देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब आपने कहा कि ये एक ऐसा दौर था, ये एक परीक्षा की घड़ी थी जहाँ पर आपने एक ऐसी परिस्थिति में से अपने आप को गुजारा जहाँ पर आपके अंदर की जो शक्ति है, सहन शक्ति है, बर्दाश्त की शक्ति है, आपकी जो क्षमताएं हैं उससे आप जूझ रही थी। और सच में देखा जाए तो ज़िंदगी में जब मुश्किलें आती हैं, जब प्रॉब्लम्स आती हैं और जब कोई साथ छोड़कर चला जाता है और फिर भी अगर आप उसे पार कर लेती हैं, अगर आप उससे बिल्कुल हिम्मत से उसका सामना करके निकल आती हैं, तब एक छोर पर पहुंचने पर आपको ये बात का एहसास तो हो ही जाता है कि अगर आपने ज़िंदगी की ये जंग जीत ली तो आगे की और कई सारी जंग जिसका सामना अभी करना बाकी है वो भी आप तय कर ही लेंगी। पर हाँ, एक बात का अफसोस रहता है कि जिसे सबसे ज्यादा प्यार किया, जिसे समझने के लिए या जिसके साथ आप दुनिया बसाना चाहते थे, दुनिया उजड़ने की वजह भी कहीं ना कहीं वो ही था। बट सच में दिल से आपके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, आपको हम सलाम करते हैं।

0: RM3 Radio.
1: आपकी चिट्ठी मिली ऑन रेडियो मनोरंजन हैपनिंग राइट ओवर हियर. इस वक्त हम हैं आपका साथ देने के लिए और बिल्कुल 4:34 यानी 5 बजे तक हम हैं बिल्कुल जुड़े हुए. और 4028070 पर आप हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं या 5250 6200 व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं. और कभी आपको अपनी कोई कहानी बतानी है तो व्हाट्सएप के द्वारा या फिर टेलीफोन के माध्यम से भी आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमें लिख भी सकते हैं. जी हाँ, लेटर्स के द्वारा जो है आपकी चिट्ठी मिली MBC मौका आप भेज सकते हैं रेडियो मनोरंजन पर. और इसी के साथ आज की बहुत ही लाजवाब चिट्ठियों के साथ कई सारे मैसेजेस भी हमें यहाँ पर मिल रहे हैं. यहाँ पर कई सारे लोग हमसे कह रहे हैं कि भाई वाह लाजवाब है, और हम सच में इस लड़की के लिए बहुत ही दिल में हमारे बहुत ही इज्जत है और बहुत ही बहादुरी का काम उन्होंने किया है, बहुत ही हिम्मत है. और थैंक यू आपके मैसेजेस के लिए. यहाँ पर सरिता जी काटोबोन से कहती हैं कि मुझे ये कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ, इस लड़की को सहानुभूति प्रकट करती हूँ और आप बड़े ही बहादुर के से यानी आप आगे बढ़ें और हताश ना हो ज़िंदगी में, बस ज़िंदगी आपको बहुत अच्छे वाले सरप्राइजेस भी देगी. बिल्कुल सही कहा आपने सरिता जी. काटोबोन से आप हमारे साथ जुड़ी. वाकवा से शोभा जी ने भी बहुत सराहना की है और मुका से सुदेवी जी कहती है कि भाई इस कार्यक्रम को वे हमेशा सुनती हैं और हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा भाग लेती हैं. थैंक यू सो मच. बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ, आप लोगों का विश्वास और इस समय इस वक्त

4:35 हो चुके हैं और ये जो अगली चिट्ठी हम ले रहे हैं यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है और इस कहानी में भी, इस चिट्ठी में भी आपने बहुत ही हिम्मत करके इस कहानी को हमारे इस कार्यक्रम में शामिल किया है, थैंक यू कहेंगे आपको। और बिल्कुल आपने भी लिखा है, आपकी भी चिट्ठी में कुछ मिलती जुलती कहानी हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर आप लिखती हैं कि आपकी भी शादी होने वाली थी। जी हाँ, आप लिखती हैं कि यहाँ पर, जी हाँ, हमें कुछ वक्त लग रहा है आपकी चिट्ठियों को समझने के लिए। जी हाँ, आप लिखती हैं कि आप जिस लड़के से शादी करने वाली थी वे बहुत ही दिल के करीब था और जी शादी के कुछ महीने पहले, यानी लगभग 2 महीने पहले एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें आपके मंगेतर का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। आपके लिए ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई और बहुत ही मुश्किल समय रहा आपके लिए भी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर ऐसे दौर में खुद को संभालना, अपने घर परिवार को संभालना, साथ ही साथ आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, जिस माँ ने अपने बेटे को खोया उसे संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का दौर। और कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी जब ऐसा खेल खेलती है तो मायूसी से भरी ज़िंदगी से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर आप ये भी कहती हैं कि आसान नहीं है, हर बार मंगेतर की दी हुई चीज़ें, उसकी यादें, ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देती है। कई बार फैसले लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। और यहाँ पर आप ये भी लिखती हैं कि इतना ही नहीं, एक लड़की होने के नाते आप खुद सोच सकते हैं कि 2 महीने शादी से पहले जब ऐसा कुछ हो जाता है तो घर परिवार के साथ, घर परिवार पर क्या बीतती है, उनकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से हिल जाती है, पूरी तरह से बिखर जाते हैं और इस बिखरे हुए, कहते ना, जीवन को समेटना कितना मुश्किल होता है। और ऐसे में ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है, ज़िंदगी आगे बढ़ती चली जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक ऐसे हादसे से बाहर निकल नहीं पाते कि कई बार परिवार हमें समझाने के लिए, हमें संभालने के लिए हमें कहीं और, मतलब कहते हैं दिल से, बस प्रोत्साहित करते हैं कि हम कहीं और अपना घर बसाएं। पर ये कितना मुश्किल होता है एक लड़की के लिए या फिर एक लड़के के लिए, उसे समझना, उसे संभालना, अपने आप को समेटना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। थैंक यू सो मच, आपने भी आज के इस कार्यक्रम में अपने जीवन का एक ऐसा पहलू, एक ऐसा हिस्सा हमारे साथ बांटा है जिसका दर्द बेशक हम महसूस कर पा रहे हैं। ये आसान नहीं होता, ना केवल एक लड़की के लिए, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लड़के भी ऐसे हादसे से गुजरते हैं। पर कहते हैं ना कि ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पर हमारे आँखों के सामने हमारी ज़िंदगी उजड़ जाती है और बस हम देखने के अलावा

अलावा या आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम आपको सलाह देंगे, पर हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि कई बार कुछ हादसे ऐसे होते हैं कि अब आगे क्या करना है ये ज़िंदगी में समझ नहीं आता, तो बस कई बार कुछ चीज़ें समय पर छोड़ देनी चाहिए। जैसे जैसे समय बीतता है, समय अपने आप सारी चीज़ों को ठीक करता है। जैसे अंग्रेज़ी में एक कहावत है ना, टाइम इज़ द हीलर, टाइम इज़ द किलर। पर हम ज़रूर ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि इन सारी मुश्किलों के दौर में आपको बहुत बहुत साहस मिले, बहुत हिम्मत दे, और बिल्कुल हम यही चाहेंगे कि आपके परिवार वाले भी आपका उतना ही सहयोग दे रहे होंगे, साथ दे रहे होंगे, और आपके फैसलों में बिल्कुल भी आपका साथ दे रहे होंगे। थैंक यू सो मच अगेन।

डेपिक करते हैं, हमें बताते हैं, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर कई सारे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं जिन्हें पढ़ने में हमें अच्छा भी लगता है, पर कई बार दिल इतना ज़्यादा भारी हो जाता है। बट एनीवेज, आपके जज्बात, आपके दिल की बातों को हम ज़रूर इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। यहाँ पर एक और छोटा सा मैसेज आया है व्हाट्सएप के द्वारा। आपने फिलहाल चिट्ठी में ये तो आपके मैसेज में जैसे आपने एक छोटी सी कहानी डेपिक की है कि एक लड़की थी जिसको जिंदगी जीनी थी, पर न जाने क्यों कुछ समय के बाद उसकी ज़िंदगी को जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई। पहले तो वो सोचती थी कि ज़िंदगी जीना मतलब सब कुछ करना, पर बाद में समझ में आया कि ज़िंदगी में पैसे भी कमाने पड़ते हैं, घर वालों का ध्यान भी रखना पड़ता है। बहुत बार तो हम चलचित्र यानी फिल्म को असल ज़िंदगी समझ लेते हैं, पर बाद में समझ आता है कि असल ज़िंदगी तो बहुत बहुत ही अलग है। इधर तो अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं, और गैर जो हैं, गैर तो वैसे भी दो पल के होते हैं। थैंक यू आपका जो मैसेज है, वैसे जो भी आपने डेपिक किया है हम ये तो ज़रूर समझ रहे हैं कि आप जो भी लिखती हैं कि आसान नहीं है। कई बार हम है ना अपनी ज़िंदगी को रिलेट करते हैं बड़े पर्दे पर चलने वाली फिल्मों के साथ, या कई बार जो सीरियल्स आती हैं, जो धारावाहिक चलते हैं, जो डेली सोप होते हैं, कई बार हम अपने जीवन को इन सारे चीज़ों के साथ कनेक्ट कर देते हैं। पर दोस्तों, ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ और रियल लाइफ में यही तो अंतर है। बस ये अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो पर्दे पर होता है या जो टीवी सीरियल्स में होता है उसे अपनी ज़िंदगी के साथ कनेक्ट ना करें। या कई बार ऐसा होता है ना कि भई एक्टर्स लोग तो ऐसे करते हैं, धारावाहिक में जब ऐसा होता है या सास बहुओं के बीच में जो दिखाया जाता है, हो सकता है कि वो रियल लाइफ में ऐसा ना हो। या फिर कहते हैं ना कि बड़े पर्दे पर चलने वाली कोई ऐसी फिल्म है जिसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तालमेल खाता है आपकी रियल लाइफ के साथ, पर फिल्मों में जो होता है रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा भी हो सकता है, हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल नहीं होता। कई बार ऐसे होता है कि जो फिल्मों की कहानी है बस हूबहू आप ही की कहानी हो, ऐसा भी बहुत बार देखा गया है। पर चलिए, अपने अपने नसीब की बात है, और ये हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि मुश्किलों का दौर जब भी आता है हमारी ज़िंदगी में हमें सबक सिखाने आता है, हम कुछ गलतियां शायद कर रहे हैं उसे सुधारने आता है। और कई बार हम आंख बंद करके जिस पर विश्वास करते हैं, दोस्तों पर या फिर ऐसे रिश्तेदारों पर, कई बार ऐसा होता है ना कि मुश्किल का दौर हमें बस यही समझने की क्षमता दे जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है। चलिए, जिंदगी के हर पहलू में कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ समझ कर आगे बढ़ना है। और कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम मुश्किलों का दौर से गुजरते हैं तब हम सभी चाहते हैं कि हमारा कोई साथ दे, कोई सहारा दे, पर जब हम उस मुश्किल के दौर को पार कर जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम ज़िंदगी में बहुत मुश्किलों के सफ़र को तय करके जब नाम कमाते हैं, हमारा कुछ रुतबा होने लगता है, लोग हमें पहचानने लगते हैं, तब हम वो दिन भूल जाते हैं जहाँ से हम खड़े हुए थे। या फिर कई बार हमारा सामना होता है ऐसे लोगों के साथ जो मुश्किलों के दौर से गुज़र रहे हैं, और फिर हम उनको उसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं, हम भी वैसे ही बन जाते हैं जब उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है। बस सहारा एक ऐसा कि उनकी प्रॉब्लम्स को हम समझ पाएं, उनकी तकलीफ़ को समझ पाएं। बस ज़िंदगी यही है दोस्तों, जहाँ पर हम पर जो बीता है वो हम दूसरों पर ना करें। ये बात अगर हमें समझ में आ जाए तो ज़िंदगी आसान बन जाए दोस्तों।
चलिए इसी के साथ जाने का समय हो चला है और आखिरी गाना हम छोड़े जाते हैं। आज का ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा और बिल्कुल आपके जज्बातों को हम कोशिश करते हैं कि शामिल कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा चिट्ठियों को शामिल कर सके।

हमारे प्रोग्राम में जो चलता है हर शुक्रवार को आपकी चिट्ठी मिली रेडियो मनोरंजन पर. तो इसी के साथ आने वाला वीकेंड आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया रहे. इसी के साथ चलिए हमें दीजिए अनुमति और हमारे बाद आ रहे हैं रोशन हरनाम आपका साथ देने के लिए एक कलाकार के बाद कार्यक्रम को लेकर. तो ज़रूर आप उनका साथ दीजिए और हमें दीजिए अनुमति. नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को.

0: RM3 Radio. Radio.
1: सचमुच तो लोग के हक बार रेडियो मनोरंजन और एम फ्री सुने के और हमने से जुड़े के भी और अभी देख बता 5:01 हो गल बा और अभी अपन सखी रत्ना जी द्वारा सुनना बहुत ही बढ़िया और चौचक प्रोग्राम आपकी चिट्ठी मिली तो चला तो हर खतीर ई जिंगल तैयार बा
2: कलाकार की बात
3: बाद

0: जी हाँ, कलाकार के बात रोशन के साथ तो हर अपन बहुत ही मनपसंद रेडियो चैनल जेकर नाम है रेडियो मनोरंजन, जहाँ पर हमेशा मनोरंजन होला तोहर और तोहर मनोरंजन खरे खतिर हमनी तो यहाँ पर एकदम तत्पर हैं सर, एकदम तैयार हैं सर। और कलाकार के बात और आप लोग जाने खोजत हुआ जा कि आज की हमनी के जो बढ़िया भोजपुरी जगत के चमकता सितारा है वो कौन है। तो कितना जल्दी जल्दी हमनी नहीं करब सा, परंतु देर भी नहीं करब सा। चला ओकर बहुत ही मधुर आवाज में ई गाना सुना और पहचाने कि आज के हमनी के कलाकार कौन होवन। उ तो बहुत ही बढ़िया तरीके से जा बैठ गल होवन और मन ही मन मुस्कुरावत होवन, बोलत होवन कि रोशन का बात बोला था, हमके काहे ने बात करी देवा था। परंतु आज जो है एगो दूसर तरीके से हमने शुरुआत करब सा, ओकर मधुर आवाज में ई गाना पहले सुना जा, तब हमनी ओकर से तोहरा परिचय कराब जा। रेडियो मनोरंजन और एम फ्री से जुड़ल हुआ जा।
1: RM3 Radio. Radio. Radio.
0: जब भोजपुरी के बात चलेला तो चाहेला नाचे के गाए के भी और बहुत चीज करे के गमतवा तक करे के चाहेला जब भोजपुरी गाना चलेला ता है ना।

0: 94.96 98.2 आप सुन रहे हैं RM3। कलाकार के बाद
1: जी हमारे प्यारे प्यारे बहन भाई लोगन संगतिया लोगन तो हर स्वागत बाहे जा कलाकार के बाद में जो चलेला हर सप्ताह शुक्रवार के शाम 4 से लेकर नहीं बल्कि 5 से लेकर 6 बजे तक तो हम आशा करते हैं कि है बहुत ही धमाकेदार गाना सुन के तो लोग घर में खूब झूमला जा नचला जा गैला जा और ये आवाज तो बहुत ही जानल पहचानल आवाज है। एक बार ये कलाकार हमनी के मंच पर आ रलन तो रहल पौतवान आज है दूसरा भाग तो चले हमनी स्वागत करी ले जा आज के हमनी के बढ़िया कलाकार के जे है भाई संजय हरिचरण जी। नमस्ते भाई।
2: नमस्ते भाई रोशन,
1: कैसे हो जा?
2: सब ठीक है जा, सब ठीक से चला था।
1: तो हर गाना तो हमने सुन ली सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही संगीत के साथ गेला जा, उकर ताल सुर लय सब बढ़िया जब गावत रह जा तो हम के यकीन बाकी घर में बैठे बैठे लोग झूमत रहन जा ता तोहर स्वागत बा भाई हरिचरण जी।
2: बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम नमस्ते बोलते हैं, सलाम बोलते हैं सब हमने के श्रोता लोग के।
1: और अपन परिचय द कहाँ रहेला एक बार फिर परिचय द।
2: जी हमार नाम है संजय हरिचरण, हम गोकुला के निवासी हैं। पहले हम रविजवान पर रहते थे, अब गोकुला रहेला।
1: अच्छा, गोकुला जो उत्तरी क्षेत्र में गो बहुत ही सुंदर सा गाँव है जब लामीचे के आसपास है ना।
2: हाँ, पीतो और लामीचे के बीच में
1: के बीच में है गोकुला।
2: जी हाँ,
1: बहुत ही बढ़िया। और तो हर एक बार फिर हमनी स्वागत करत हैं जा,
2: बहुत धन्यवाद।
1: दूसरे भाग में हमनी के निमंत्रण स्वीकार कर ला है जा ऐला। और हम जानी ला कि आप मॉरिशस पुलिस फोर्स में कार्यरत हुआ जा।
2: जी हाँ,
1: एगो पुलिस ऑफिसर भी हुआ।
2: जी हाँ।
1: हाँ, तो पुलिस ऑफिसर होने के नाते तोहर बहुत ही जिम्मेदारी बा सभी
2: हाँ।
1: जो न हमनी के पब्लिक जो है हमनी के आम जनता के रक्षा करे खातिर।
2: जी हाँ।
1: तो एकर अलावा इतना समय कैसे निकाल लेवे ला कि ऐसा ऐसा गाना निकाल के गावे ला भी?
2: जी हाँ, समय मिले ला नहीं, समय पहले हमनी के निकाले के।
1: बहुत बढ़िया बात कर ला।
2: हाँ, तो सांझ के जब जब जब एगो समय मिले ला तो हम देखी ला कौन कौन विषय में हम सकब लिखे, कबो सुरक्षा रास्ता के सुरक्षा में लिखिला, कबो ह्यूमन वैल्यूज में लिखिला, जब जो हमार सोच में आवेला लिखिला, जब मैं हम सक हमार मिसाज आबूजे करे पासे करे सबको संगे।
1: बहुत अच्छा, जो इन संदेश तू हमने के जनता के देख हो जेला जा अपन गाना द्वारा।
2: हाँ, गाना
1: बहुत द्वारा बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। और एगो कलाकार के यही तो दायित्व है कि अपन कला के निखारे के साथ साथ आम जनता के भी वो लोग कैसे बोली रजा वो लोग के भला करे। हाँ, जब एगो व्यक्ति ई गाना सुनी तो ओकर भरपूर मजा भी ले और ओकर से कुछ सीखे के ओके बहुत कुछ मिलेला,
2: जैसे कि जीवन में अपन उतारी
1: भी। हाँ, यही माध्यम से तो हमनी के जीवन सुधरेला, खासकर जो नई पीढ़ी और जो बच्चा है वो लोग तो इतना ज्यादा माछू नहीं हो बन जा, परंतु ऐसा गाना सुन के और

0: अच्छा संगत में रह के वो लोग के जिंदगी सुधर जाला
1: जरूर हां
0: तो संजय भाई भोजपुरी में तो बहुत गाना गैले हुआ जा हां है जो बोल है तो तोहरे है
1: जी हां मैं बोल
0: रहा बहुत अच्छा तो हमनी के श्रोतागण के याद दिला दे जा कि हमनी के बात हमनी के कलाकार से तो होते बा भी परंतु तोहरो से हमनी ऑन एयर बात करब जा सकब अपन कलाकार से बात करे और हमनी के प्रश्न के जवाब भी दे क्योंकि हर सप्ताह हमनी जब है प्रस्तुत करी ला चाह है प्रोग्राम है कार्यक्रम तोहर खातिर तो हर बात जो हमनी के कलाकार बोलेलन हर गाना जो गावेलन ओकरे आधार पर हमने गो प्रश्न तुरंत तोहर खातिर तैयार कर लेला सब तो हमनी के साथ दिया अंत तक आज है 5 जून और 5 जून है आज विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जैसे कि हमनी के बहुत ही जिम्मेदारी हो जाला कि हमनी के हमनी के जो पर्यावरण के हमनी के सुरक्षा छायना करे के हमनी के धरती माँ के हमनी के रक्षा छायना करे के अपन बहुत ही अच्छा कार्य करे के माध्यम से परंतु संगीत जो तो हर गाना उसब्बा ओकरो से हमनी के जो पर्यावरण है बहुत ही लाभदायक हमनी के एनवायरनमेंट के एक बारे में कैसे का चर्चा करब
1: जी हाँ सबसे पहले हम बोलब हमने के चाहे हमने के देश के सफा में रखे के साफ में अभी देखा तो वह अभी माला दावता ढेर देखा तो मून की पॉक्स सब हो गल बाते डेंगू हो गल बाते तो इस सब जिनमें से पोपते सखी रखबा तो इस सब माला जी नहीं फैली
0: बहुत अच्छा तो एगो बहुत ही एगो पुलिस ऑफिसर हुआ एगो सरकारी ऑफिसर हुआ जैसे बोली राजा सरकारी मुलाजिम तो तुहर देखे में संगीत के साथ साथ अपन पर्यावरण के भी सुरक्षा छाना रखेगे
1: जरूर
0: जरूर और संगीत तुहर देखे में एगो कलाकार के जो गुण है कलाकार तो सभी कोई नहीं सकेला हो तब कभी कभार ईश्वर की देन है परंतु एगो कला ईश्वर तुहरा दे रहे हो परंतु वो कला के तू निखार नहीं करत हुआ मेहनत नहीं करत हुआ तो वो बेकार में चल जाए
1: बेकार में चल
0: बिल्कुल तो तुहर खतीर कलाकार के जो सही मायने है वो का है
1: जहाँ सबसे पहला मेहनत करेगी
0: मेहनत
1: देखा हमार पिताजी जो रहन वो बैंजो बनाओ थलन
0: बैंजो
1: हाँ
0: अच्छा
1: हाँ हाँ हाँ समय के वो एगो बैंड में अथी रहन बजाओ थलन जा
0: अच्छा
1: तब हम ओकरे से हमके एगो प्रेरणा मिलल तो हमहूँ लगली गीत गाई हाँ। सीखली हमरो गुरु बाटे हमारे गुरु बा आनंद दुर्गा जी वो अभी नहीं हवन अभी इस दुनिया से चल गए हवन लेकिन हमको बहुत रिस्पेक्ट केला अभी लेख क्योंकि वो हमके हमारे पैर पर खड़ा कर लक
0: अच्छा
1: हमके मदद कर लक हमका गीत लिखे के हमके सिखैलक वो हमार बहुत हम मदद कर लक
0: बहुत अच्छा
1: हम आज देखो हमको बहुत रिस्पेक्ट करी ला हमारे वही हमारे गुरु सबसे पहला गुरु
0: बहुत अच्छा तो जहाँ पर भी दुर्गा जी हुआ न भी ओकर आत्मा की
1: शांति
0: के लिए हमने प्रार्थना करी ला सर और बहुत ही बढ़िया बात कर ल ऐसन कलाकार होने के उपरांत भी आप अपन गुरु के हैजा चर्चा करत हुआ ते ही बोलल जरा महान कलाकार जोन कुछ तोहर प्रेरणा प्राप्त होल बा किसी व्यक्ति से ओकर नाम लेवत हुआ ओकर प्रति अपन कृतज्ञ क्या जाहिर करत हुआ एक से बड़ा बात आर का बा गुरु के हमनी के संस्कृति में तो गुरु के बहुत महत्व देवल गल बा है ना
1: गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साथा परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु वे नमः
0: वाह क्या बात है तो चला हमनी के भाई जोन होवन हमनी के संस्कृति में तो बहुत ही दिलचस्पी रखेलन और हमनी के संस्कृति के आगे बढ़ाए खातिर बहुत ही कार्यरत होवन तभी अभी एगो अगर गौर से हमनी के भाई के सुनला एगो मंत्र अभी तोहर खातिर उच्चारण करलन गुरु ब्रह्मा तो चला देखी लचा कि तू है जोन मंत्र है फिर से भाई की तरह सकबा बोले कि नहीं तो चला 402-807-0 पर फोन कर और हमनी के है मंत्र जोन भाई संजय जी अभी अभी उच्चारण करलन तोहर खातिर वो जरा हमनी के फुल रूप में बता द संपूर्ण रूप से गुरु ब्रह्मा शुरुआत से अंत तक हमने के बता दे हमने के भाई तो शुरुआत से अंत तक बोल देलक तोहर खातिर तो चला देखी ला जा कि तो लोग ध्यानपूर्वक

0: हमने के प्रोग्राम सुनत हुआ कि नहीं तो 402-807-0 पर फोन करके है मंत्र जो हन वो उच्चारण कर। तो भाई संजय जी तोहरा का बोलब तोहरा तू एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम प्रश्न पूछ दे
1: नहीं ये सब पपाई ने होलबा लेकिन पूछ दे अच्छा कर ला
0: हां काहे कि हमनी के जो हां हमनी के जो श्रोतागण है वो लोग खातिर दिमागी कसरत करे के हमनी मौका दे राजा है ना
1: आज जे अच्छा रिपोर्ट दे त ओकर खातिर पुरस्कार भी रखल बा
0: अरे वाह
1: परमिशा के जी
0: अरे क्या बात बा ओकर पुरस्कार बता दे
1: एगो सीडी मिली का दू
0: अरे वाह बहुत ही बढ़िया आई ता हम थोड़ा बोरप बहुत ही धन्य हमने हो गए ऐसा एगो सीडी एमबीसी की ओर से तोहरा प्राप्त होई तो है मंत्र जो नभी अभी भाई संजय जी बोलन गुरुर ब्रह्मा एके तू पूरा कर 402-807-0402-8070 पर आप लोग जरा ई मंत्र हमने के बतावा जा

0: चलो हमनी के पहला श्रोता तो तैयार हो के चलाल हो अंजा ओकर नाम सुनी ल जा स्वागत करी ल जा के कर हेलो
1: हेलो नमस्ते रोशन जी नमस्ते संजय जी
2: नमस्ते बहन जी
0: नमस्ते
1: आप लोग कैसे हो
2: सब ठीक है कहाँ से बोले थोबा आप
1: जी
2: कौन कौन लोग से बोले थोबा
1: कतबोन
2: हुआ पानी बरसात होता कि घाम बा
1: जी
2: अभी हुआ लेता कैसे बा
0: मौसम कैसे
2: मौसम कैसे
1: मौसम बहुत सुहाना है आज
0: अच्छा
2: बहुत
1: कभी कभी बरसात होती है लेकिन आज बरसात नहीं होगा
0: सरिता जी बहुत धन्यवाद फोन लगाए खातिर
1: तो
0: संजय भाई तो हसे गो प्रश्न उकर और से आलबा कि हाई जो मंत्र अभी उकर उच्चारण कर लन अभी तो पूरा के पूरा मंत्र हमनी के बता देता
1: जी गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः
2: बहुत ठीक
0: अच्छा बा भाई संजय जी
2: बहुत ठीक
0: तो भाई बोलन बहुत ठीक बा तो चलो
1: धन्यवाद
0: देखब सर तुहर जीत होता कि नहीं आज देखब सर तुहर तुहरा सीधी मिली कि नहीं चलो एक गो दूसरा श्रोता के हमने सुनी ला जा देखी ला जा कि ओकर पास सही जवाब होई के नहीं हेलो हेलो
3: नमस्ते
0: नमस्ते
3: ऐसे मैं आपका प्रोग्राम मस्त है बहुत सुन रहा हूँ
0: धन्यवाद कौन नाम है तुहर भाई जी
3: मैं भाई बुंतिया बाकवा धनपत हूँ
0: धनपत भाई आपका हम स्वागत करते हैं यहाँ पर
3: तब मैं आपको बहुत बधाई दे रहा हूँ
0: धन्यवाद
3: अब हम लोग अब मेरा मेरा अच्छी तीन कोरी दो हो गया है
0: तीन कोरी दो अच्छा 62 इयर्स हो गए बात तुहरा
3: नहीं नहीं तीन कोरी 82
0: चार कोरी दो अच्छा बहुत बढ़िया
3: चार कोरी दो
0: हो गए बा हमने के धनपत जी के तो चचा जी बहुत बहुत स्वागत बा तुहरी कार्यक्रम में
3: अरे एगो खाली गाना माँ पर
0: अच्छा
3: पिता पर
0: माता पिता पर तो आज हमने संजय भाई के सभी गाना चलाब जा तो चल एगो बहुत सुंदर गाना ओकर ओर से तोहर खातिर बजाब जा ओके तो है जो मंत्र अभी संजय भाई बोलन गुरुर ब्रह्मा सगबा ई मंत्र के बोला
3: हम बहुत खुशी है तोहर प्रोग्राम सब कोई के मांग करत है
0: अच्छा
3: बोली सब कोई मॉरिशस पे जो बा अपना चैनल में हेलना
0: अच्छा
3: चैनल में हेलना सुंदर सुंदर चीज हमको मिलता है
0: बहुत धन्यवाद धन्यवाद चाचा जी बहुत धन्यवाद आपको ओके तई रह हमनी के चाचा धनपत जी और सरिता जी सही जवाब देलन भाई संजय जी देखब सा अगर और कोई बा अगला प्रश्न में सवाल जवाब दे खतीर तो लोग के नाम लिखब सा तेगो लकी ड्रॉ करब सा तो संजय भाई की ओर से गो मिल जाए तो हरा एगो सीडी तो चल दूसरा गाना हमने संजय भाई की सुनी ला जा और ये गाना भी बहुत ही बढ़िया गाना है चला सुना तब बाद में हमने संजय भाई से बात करब जा

0: सरकार के बाद
1: कलाकार के बाद भाई संजय हरिचरण जी के साथ आग लगल बा सचमुच तोहर जोन गाना है तोहर जोन अंदाज है प्रोग्राम में स्टूडियो में सचमुच है जा आग लगा दे बिलबा तोहर जोन स्टाइल है स्माइल है बहुत ही बढ़िया चलो भाई संजय भाई हमनी के बतावा ई जोन गाना भी निकल आग लगल बा ई कर एकर पीछे जोन कहानी हमनी के सुनावत है नी
2: आग लगल बा देखो जब गीतवा शुरू होला तो सोचे कहाँ आग लगल बा कोनो मकान में कहाँ आग लगल बा

0: तब देखबे त निमन से जब कोके भूख लगेला तब बुझला को पेट में आग लगल बा कब कुछ खाए कब कुछ पीही तब ओकर
1: हां
0: ओकर प्यास बुझी आरोकर
1: हां
0: भूख मिटाई त ई सोच के हम हाई गीतवा लिखले हैं।

0: बहुत ही बढ़िया तो आग लगल बा और बहुत ही जोन बोल है बहुत ही प्रभावशाली बा हर एगो गाना में एगो अलग सा विषय लावत हुआ तू बहुत ही अच्छा और जोन आने वाले जोन दिन बा भी कोनो फ्यूचर गाना भी निकल बा कोनो भविष्य में कोनो और नया गाना निकाले के तुहरा अभी विचार बा
1: जी हाँ हम के चाहेला कोचिने कहते थे कि एगो गीत लिखे है जब कैसे जब कुली लोग आ रहे मार खेले रहन जा कैसे लोग खून बहले रहन जा हमने के देश के प्रगति करे खातिर
0: हाँ
1: हाई में लिखले हैं एगो गीत बना दिले हैं मैं अब ओके खिलवाब जा राजू में
0: बहुत अच्छा तो भाई संजय तो जो भविष्य में वो तू गाना निकालत हुआ तो और वो एक बहुत ही अच्छा विषय चुनला
1: जी
0: तो ईश्वर ये तोहर जो प्रोजेक्ट है एकर में तू बहुत कामयाबी पाइब हमनी की ओर से एमबीसी की ओर से बहुत ही प्रार्थना करत है जा और जो कलाकार ऐसे आगे बढ़ेलन सकता है ये गो एल्बम लेके तू ऐसने रहत
1: जी
0: हम जानीला जो हमनी के भाई संजय होवन वो आगे बढ़े खोजेलन जा काहे कि जब तू आगे बढ़ तोहर जो परिवार के सदस्य होवन जा वो भी थोड़ा से प्रेरित होके आगे बढ़िया जा
1: जरूर
0: अभी तो हमनी अपन खातिर करी रसा और हमनी के समाज खातिर भी करी रसा है ना भाई संजय जी तभी भाई संजय एगो बहुत ही सुंदर सा गाना गैलन आग लगल बा तो चला ई गाना पर एगो प्रश्न तोहर खातिर तैयार हो गल बा 4028070 पर बताओ कि हमनी के शरीर में 5 गो तत्व बा 5 गो तत्व से हमनी के शरीर बनल बा मनुष्य शरीर जो है 5 गो तत्व से बनल बा और एक गो बा जो अभी संजय भाई अपन गाना में चर्चा कर लन आग अगर आग रही तभी तो हर खाना पची ना अग्नि जैसे बोली लजा तो चला अग्नि के अतिरिक्त और कौन ऐसे 4 तत्व बा जो मनुष्य शरीर बनल बा चला जल्दी जल्दी नंबर वहाँ मिला हुआ 4028070 पर और तब तक की तो लोग फोन करत हुआ जा हमनी भाई संजय से बात जारी रखी ल जा तो तुहर गांव में भाई संजय जी तुहर गांव में बहुत कलाकार बा बहुत लोग भोजपुरी में दिलचस्पी रखे लन जा
1: जी हाँ हवन जा वहाँ पर टोली हवन जा कीर्तन के और कराओके करे लन जा गांव में हवन जा
0: अच्छा कराओके भी करे लन जा कीर्तन भी करे लन जा तब भाई संजय जी कीर्तन भजन गावे लन
1: जी हाँ
0: तसकबा एगो छोटा सुन टुकड़ा हमनी के एगो भजन गा दे नहीं तो एगो एगो छोटा सुन कीर्तन सकबा
1: जरूर जरूर
0: तो एकर से पूर्व हमनी के एगो श्रोता के ले लेला जा तोहर अनुमति से एगो श्रोता जवाब दे खोजत हुआ न तो चल ओकर से हमनी बात करी ला जा देखे ला जा के चला बाहे जा हेलो
2: हेलो रोशन भाई
0: नमस्ते तेहूश के बिना दीदी जी
2: नमस्कार
0: नमस्कार
2: हाँ
0: के भाई, भाई संजय जी की जवाब मांग दे से पहले
2: भाई संजय जी को भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत
1: बहुत धन्यवाद नमस्ते बहन जी
2: हाँ आप ऐसा ही सुंदर था बहुत मन को आपका गाना बहुत अच्छा लगा जिस
1: बहुत धन्यवाद
2: गा रहे हैं जिस ढंग से आप गा रहे हैं ना एक एक शब्द का तो दिल पे सीधा असर कर रहा है
0: अरे वाह क्या बात है बहुत धन्यवाद आपको आप तो हमनी के कलाकार के उत्साह और बढ़ावत हुआ बहुत बहुत धन्यवाद
2: क्योंकि जब हम सुनते हैं ना भैया जी तो हम मैं तो लीन हो जाती हूँ और शब्द शब्द पर और उसकी जो संगीत की हर एक बोल हर एक जो अंग है उस पे मैं ध्यान देती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है
1: बहुत धन्यवाद बहन जी
0: बहुत धन्यवाद बीना जी
2: ऐसे सुनने के लिए नहीं कि कान इधर से सुनकर उधर निकाल दो नहीं मैं सुनती हूँ और मैं आपको बहुत आशीर्वाद देती हूँ आपको बहुत और भी आप तरक्की करें ऐसा ही आप कार्य करते रहें भोजपुरी के क्षेत्र में
1: जी हाँ बहुत धन्यवाद आगे आप सुनते जाइए और गाना होगा
2: जरूर जरूर जरूर भाई जी
1: पसंद कर दीजिए अच्छा
0: अच्छा बिना जी बोला
2: रोशन भैया
0: बोला कौन जवाब दे बा हमनी के जो मनुष्य शरीर है
2: बोला हाँ हमारे शरीर जो 5 तत्व से बना है वो है अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी
0: क्या बात है बहुत अच्छा बा
1: जी हाँ
0: बहुत ही बढ़िया बिना जी बहुत ही बधाई आपको और हमेशा ऐसे भाग लेते रहिए और हम और प्रश्न रही तोहर खातिर

0: सुनिया जा।
1: ओके बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। शुभ संध्या।
0: शुभ संध्या। देखब सा तुहर जीत होई अंत में कि नहीं। देखब सा।
2: अच्छा शुभ रात्रि बहन जी।
0: शुभ रात्रि।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि। तैरलन हमनी के विना बहन जी जो त्यागूज के निवासी नहीं होन और जोन बोलन कि हमनी के जोन शरीर है उकर में जोन पांच तत्व से बनल बा चला एगो अंतिम श्रोता के ले ला जा का बोले ला भाई संजय। हाँ चला उकर से बात करी ला जा हमनी। हेलो
3: हेलो रोशन भाई नमस्कार।
0: नमस्कार संगीता बहन
3: जी
0: कैसे हुआ?
3: हम ठीक हैं भैया तू कैसे हो?
0: हम भी ठीक हैं जी। बोला तोहर
3: भैया को प्यार भरा नमस्कार।
2: नमस्ते बहन जी।
3: जी हमने के ऐसा मौका मिले ला ना भाई रेडियो में बतिया के।
0: हाँ मिले ला था मौका और तोहर कलाकार से भी बात हो जाला।
3: जी
0: अब भले तोहर कलाकार से तोहर मुलाकात नहीं होल बा ओके नहीं दिखले हुआ जा परंतु कैसे रेडियो के माध्यम से बात हो जाला।
3: बात हो जाला। हाँ उनका गाना भी अच्छा लगला सुने के। हाँ सब कलाकार के गाना अच्छा लगा सुने के।
0: बहुत अच्छा। तो कौन गांव से बोला हुआ तू संगीता जी?
3: लालमाची।
0: लालमाची से। अच्छा तब बोला हमने के कौन जवाब देब?
3: यही है पृथ्वी अग्नि जल आकाश
0: और
3: धरती।
0: तो पृथ्वी धरती तो वही है जो हम तोहरा बोली आग अग्नि।
2: फिर से बोला। फिर से
0: बोला। बोला फिर से
3: पृथ्वी अग्नि
0: हाँ
3: जल
0: हाँ
3: आकाश
0: हाँ और वा,
3: दर्थी,
0: वा,
3: दर्थी?
0: वा
3: वायु
0: वायु बिल्कुल। बहुत अच्छा संगीता जी ऐसे ही भाग लेते रहे तोहरों नाम विनर के लिस्ट में हमने शामिल कर ले है सब।
3: धन्यवाद रोशन भाई ऐसे प्रोग्राम चलाते रहे जब हमने कितनी सुन बुद्धि खुली।
0: धन्यवाद धन्यवाद आपको।
3: धन्यवाद
0: भाई संजय जी। श्रोतागण बोले लंजा की हाई प्रोग्राम के जरिए लोग अपन संस्कृति से और निकट हो जा लंजा। ऐसा ऐसा प्रश्न ऐसा ऐसा कलाकार से बात करे लंजा तो ऐसे हो जाला। तो भाई संजय जी हम तुहरे से गो विनती कर ले रही एगो रिक्वेस्ट जैसे बोली ला जा विनम्र आग्रह करे रही कि एगो भजन या तो गो छोटा सुन टुकड़ा एगो कीर्तन के हमने के सुना द।
2: अच्छा जरूर
0: आए सुनाव
2: हम गणेश के एगो कीर्तन गाव
0: गाव

0: सुख करता दुख हरता, जय जय जय गणराया।
1: बहुत ही बढ़िया भाई संजय जी, बहुत ही उंडा तरीके से एक गाना गैल, एक भाई भजन प्रस्तुत कर ल। ये सुन के बहुत ही अच्छा लगल, मन भावुक हो गल। जब तू गावत रल तोहर जोन स्टाइल है, जोन अंदाज है गाय के, वो तो बहुत ही भक्तिमय गैल, जो मैं भक्तिमय वातावरण छागल। एक पर एगो प्रश्न हमने पूछब जा भी बाद में, चला
0: हम बोला। हाँ, एक बात बोल के कहेंदी, हमने के एगो टोली बा गोकुला में, तो हमने एगो सत्संग के लिया जा, कीर्तन के लिया जा, हर गुरुवार के लड़का लोग आवेलन जा, बड़ा लोग आवेलन जा, सबके कीर्तन सिखाई ला जा, और एगो सब कुछ मिली ला जा निमन से।
1: बहुत अच्छा,
0: जैसे जब मैं लोग निमन से हमें दे जा।
1: बहुत अच्छा, ये तो बहुत ही शुभ कार्य करत हुआ भाई संजय जी। और अपन जो गांव के जो नागरिक हुआ जा, अपन गांव के जो जैसे बोली ला जा रहे जा, निवासी हुआ जा, वो लोग खातिर बहुत ही पावन कार्य करत हुआ। और अपन धर्म और संस्कृति के प्रति वो लोग के जागरूक करत हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा अच्छा से गए, लगता है कि कल ही गणेश चतुर्थी चलाई।
0: जरूर आवता
1: आवता, तनी हमने के चला धैर्य रखे के ना।
0: हाँ,
1: तो चला है ये

छोटा सुन टुकड़ा जो बहुत ही भावपूर्ण रहल एकर उपरांत एगो बहुत ही सुंदर सा गाना एगो जा गाना जो संजय जी गले हुअन ओकर में बहुत ही ठोस बहुत ही प्रभावशाली एगो संदेश बा। ई गाना गौर से सुना जा एकरे पर एगो प्रश्न तुहर से हमने पूछब जा और ई हमनी के भाई संजय हरिचंद जी के गाना धीरे धीरे और एकर पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश छुपल बा। पहले गाना सुना और मन ही मन अपन अनुमान लगावा कि अब रोशन तोहर से कौन प्रश्न पूछी गाना पर। सुना

0: RM3 Radio. Radio.
1: कलाकार की बात, कार की बात।
2: कलाकार के बाद संजय भाई के साथ भोजपुरी जगत के और एगो चमकीला सितारा हमनी के मध्य में ओकर आवाज में अभी गाना सुन ल धीरे धीरे जेकर में गो बहुत ही बढ़िया संदेश छुपल बा। चला हमनी भाई से पूछी रह जा कि है जोन गाना गए ल जा अभी तू ते गो पुलिस ऑफिसर हुआ मोरिश पुलिस पे पोस्ट में तो कार्यरत हुआ और ई क्षेत्र में तो तू हुआ तो हम बेकार बातों से पूछे कि क्या सोच के है गाना बने ल लेकिन अगर मैं जो संदेश बा बता दो
3: ये देखा तो जे रोज के एक्सीडेंट होता है जे एक छोटा सुन पे को सोले बा तो तुहरा तुहरा लावी सकेला बचा दी छोटा कुन पे को सो एक ची एक कर बता गाव हो जाला।
2: हाँ कभी कभार जब देखबा दुर्घटना होवेला तो छोटे छोटे जो बात सकेला ओके अवॉइड करे सकल जात वो कर से जब नहीं ध्यान देला तो दुर्घटना हो जाला।
3: आ लालवा के जहाँ रिस्पेक्ट करे के
2: कानून
3: के फर्जी के निकलवा तनी 5-10 मिनट बोर्डे निकल जा जब मैं रास्ता में धोखबा नहीं विदेश मिले जाइबा तो तू ही जे कस के बोले होइबा तो तू ही एक्सीडेंट करबा तो जे एक्सीडेंट कर वही जाने ला जो कोई ब्लेसे होला कि ओकर फैमिली लोग कौन प्रॉब्लम हो जाला
2: सच्चे के एगो पूरा परिवार सकेला नष्ट हो जाए
3: ओकर दुखते ओकर ला पुलिस ओकर सब कोई सब के ओकर संग ओगासी रहला
2: सच्चे के बोल रहा। तो जब गाड़ी चलेबा वाहन चलेबा और पैदल भी चलबा रास्ता पर तो हमेशा ध्यान पूर्वक चलिए कबो कुछ नहीं सोचिए रिफ्लेक्शन में जैसे बोली राजा तनी ध्यान दिया बहुत ज़्यादा सावधानी चला हमेशा बरते के न भाई जी। और ई जोन गाना है तो हर बोल है और कोनो सहायता पहला
3: जी हम भी तो हम लिख रहे हैं लेकिन हम के सहायता कर लेबा हमार हमारे कुजन बाते सुनील आचार्य जी
2: सुनील जी
3: हाँ जी हाँ
2: हाँ हम जानी लाओ
3: कि वो हम के मदद कर

0: अच्छा
1: बहुत धन्यवाद बोलते हो कि हम गीत खूब निम्न से चला रहे गीतवा और सब कोई सुने रहा खुशी रहा सुने मांगे लन जाए गीतवा
0: जैसे हमने बोली रजा सदाबहार गाने तो भोजपुरी गानों में हई जोन गाना भी गैला धीरे धीरे ये सचमुच सदाबहार गाना है
1: जी हाँ
0: बहुत ही और ये जोन संदेश एकर पीछे छुपल बा ये बहुत हमनी के जागरूक करी और हमनी के सोचे पर मजबूर कर दे कि सच्चे के हमनी के रास्ता में चाहेला सावधानी बरतते हुए कर सब के हमनी के आदर चाहला करे के तो बातों बातों में जब गाना चलत रह भाई जी तो तू हमके बोला कि एगो प्रश्न तुहर कहती है तुहर ओर से बा हमने किश्तोता गन के
1: हाँ जी हाँ
0: तब बोला कौन प्रश्न तैयार कर ले हुआ
1: एगो पुस्तक बा सत्यप्रकाश
0: सत्यप्रकाश हाँ
1: तो के ओकर लेखक है माने कि ओकर इक्विवेंट ओकर नाम चाहे हमके बोले कि
0: अच्छा तो जैसे अभी जानत हुआ जा कि सत्यार्थ प्रकाश मास चलता 12 जून जून पूरा जून महीना जो है वो सत्यार्थ प्रकाश मास घोषित हो गल बा आर्य सभा की ओर से तो चल हमने के बतावा संजय भाई को प्रश्न पूछ लन तोहर से कि जो न सत्यार्थ प्रकाश बा ओकर लेखक कौन है 402-807-0 पर जवाब द और भाई संजय जी चल हमने के एगो हिंदी फिल्म के गाना सुना द
1: जरूर किशोरदास जी के एगो एगो मुखड़ा गालो था एगो गीत
0: गावा

0: बहुत अच्छा मंजिल फिल्म के गाना गेला और अमिताभ बच्चन जी के लगा था कि तू बहुत बड़ा फैन हुआ हाँ बहुत ही सुंदर सा गाना गेला भी एगो श्रोता हमने के फोन पर इंतजार कर रहा था चलो कर हमने बात करी ला जा हेलो हेलो
1: नमस्ते रोशन जी
0: नमस्ते जी के बात करत हो
1: हाँ मैं हम वाकवा से शोभा हाँ थोड़ा गला ठीक नहीं बात ओ ये कहते
0: हम नीने पहचान नहीं सर हाँ शोभा जी
1: हाँ तो और मेहमान जी को भी नमस्ते
2: नमस्ते बहन जी
0: हाँ शोभा जी संजय भाई के गाना सुनत हुआ
1: हाँ एकदम बढ़िया
0: एकदम बढ़िया
1: और आवाज भी
0: आवाज
1: भी बढ़िया और तोहर आवाज भी बहुत बढ़िया
0: धन्यवाद शोभा जी हमने के जो कलाकार है एक बार आ रलन आज दो कर दूसरा भाग है लगता कि तीसरा भाग भी चला रखे के का बोले
1: अच्छा बा
0: बोला शोभा जी कौन जवाब देवा जो संजय भाई पूछलन वो प्रश्न
1: हमारा जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती
0: स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज सही जवाब है भाई
2: जी हाँ
0: सही जवाब शोभा जी देलन और शोभा जी के बोली ला जा बहुत ही बधाई
1: धन्यवाद
0: शोभा जी
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद त सही जवाब रहर भाई संजय जी त हमनी के बतावा तीन गो अभी श्रोता विनर के लिस्ट में बा
2: हाँ जी हाँ
0: सरिता जी वीना जी और शोभा जी बाद में गो लकी ड्रॉ करब स और लकी ड्रो करे के बाद हमने देखब सकी के कर जीत हो आज तचर भाई संजय जी हमने के बताओ तोहर संदेश जोन है हमने के जोन मॉरिशस वासी है हर एगो कोई चाहे ना अपन देश के स्वर्ग बनाए खातिर है ना
2: हाँ।
0: तो स्वर्ग बनाए खातिर ये गो मामूली बात तो नहीं है
2: नहीं है
0: तो बताओ हमने के जोन मॉरिशस वासी लोग हुआ जा वो लोग के का संदेश दे अपन संगीत द्वारा
2: संगीत करके चाहेला मेहनत करके रियाज करके
0: बिल्कुल
2: एगो अच्छा गुरु चाहेला तोहरा खोजे के गुरु ने दही तो तू कबू नहीं सीखबा आर चाहे जिफो करे के गीत बनाई के लिखे के नहीं जनबा तो जे जाने ला ओकर से पूछे के तनी सीखे के तब जाके तू सकबा एगो गायक बने
0: बहुत अच्छा भाई संजय जी हाँ एगो गाना भी चला था

0: ई जो गाना के बोल है ई भी बहुत ही प्रभावशाली बा और ई गाना के खूब वोट मिलल रहल बेस्ट सॉन्ग 2025 के दौरान भोजपुरी कैटेगरी में
1: जी हाँ
0: हाँ तो हम तो जानिला कि हमने के जो इन सब कलाकार हुआ जा अपन देश से के प्रति तो बहुत प्यार रहेला और ऐसा प्यार तो हरा मजबूर कर देला कि है गाना लिखे के
1: हाँ
0: और कैसे है गाना नहीं चलता कैसे सिलेक्ट नहीं होत परल सिलेक्ट करे
1: हाँ।
0: और ढेर प्यार मिलर ई गाना पर हाँ। अभी तक चलते रहेला एक फरमाइश भी तो चलते रहेला भोजपुरी तड़का के दौरान
1: जी हाँ।
0: भोजपुरी तड़का एगो ऐसा प्रोग्राम है जो रोज के चलेला 9 से लेकर 11 बजे रात्रि तक हमनी के जो औजे है पूरी मेहनत करके तोहर मनोरंजन खातिर आवेदन से रात्रि के समय है परंतु तोहर प्यार उलो के खींच के लावेला और ऐसा प्रोग्राम में मोरिस्वा मोरिस्वा ऐसा जो जोड़ीबा देशवा ये हमेशा चलते रहेला
1: जी हाँ।
0: एक मांग तो बहुत कोई करेला अपन परिवार खातिर अपन जो परिवार है जहाँ मोरिस में नहीं हुआ जा विदेश में बसल हुआ जा वो लोगों खातिर ऐसा
1: लोग के मोरिस्वा याद आवेला
0: मोरिस्वा याद आवेला बहुत ही धन्यवाद।

0: जी हाँ, हिंद महासागर इंडियन ओशन के गो छोटा सुन तारा बा, बहुत ही बढ़िया बात कर ल संजय भाई। अभी तो समाप्ति की ओर बढ़ब सा, तो हमनी के अब लकी ड्रॉ करे के बखत आ गल बा, परंतु आप बोलत हो कि लकी ड्रॉ नहीं चाहना करे के,
1: नहीं
0: चाहना करे के
1: नहीं चाहना करे के
0: हाँ, तो चला
1: हमनी के जवाब मिले वंजा सबके एगो पुरस्कार मिली।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात कर ला, ये तालियों की गूंज हो जाए। तो सबसे पहले जो रहल सरिता जी भाग ले रलन कटरबोन से, दूसरा जो श्रोता रलन ऊ रहल त्यागूज के वीना बहन जी, और तीसरी श्रोता रलन संगीता जी लालमाची से। तो संजय भाई बोलत हुआ एमबीसी की ओर से तीनों के पुरस्कृत करब जा, एगो भोजपुरी सीधी जो संजय भाई खुद अपन एल्बम निकाल के गए रहे हुआ है ना भाई। तब बहुत ही बधाई तीनों बहन के, सरिता जी, वीना जी और संगीता जी के। ऐसन ऐसन कलाकार बहुत कम हमनी के मिलेला देखे के। हम तो के गो पुरस्कार तोहर करती प्रस्तुत करती, परंतु संजय भाई बोलन नहीं, तीनों मेहनत करलन जा, लाइन लगेलन, तभी जाके वो लोग के लाइन लगल और सही जवाब देलन। तो तीनों के हमनी पुरस्कृत करब सर, बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। तो अंत में 5:54 तो हो गल बा, अंत में बोला हमनी के जो हमनी के नौजवान है, नौजवान है और भोजपुरी के क्षेत्र में वो लोग के का संदेश दे बा।
1: सबसे पहले ये बात बोला कि चाहना भोजपुरी बचाएगी, भोजपुरी बचाईबा नहीं तो कैसे लिखबा, कैसे गाना गाइबा।
0: हाँ बहुत अच्छा,
1: माँ बाप लोग के बोली ला लड़का लोग के भोजपुरी सिखाई की, जहाँ जाए जा शर्माए के नहीं, कहाँ पर हव विश्व में हव कहूँ पर हव चाहेला भोजपुरी बताए के, ये हमने के बोल बोली है। हमने के चाहेला एक रिस्पेक्टे करे के, एक में शर्म नहीं करे के चाहेला बचाए के।
0: बहुत बढ़िया, तो संजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद अपन भाषा के प्रति, अपन कला के जागरूक करत हुआ और अपन देश से बहुत ही प्यार बा, और पुलिस फोर्स में तू कार्यरत हुआ। तो ऐसन कलाकार होने के नाते और पुलिस ऑफिसर होने के नाते हम तोहर आगे नतमस्तक हैं।
1: आपको भी नमस्ते।
0: ऐसे ही आप अपन कार्य आगे बढ़ाते चलिए, भोजपुरी के क्षेत्र में ऐसे ही आप आगे बढ़ते चल जाइए, और बहुत बहुत बहुत धन्यवाद हम एमबीसी की ओर से हैजा आने के। अब तू कष्ट कर ला
1: एमबीसी के, हम बहुत धन्यवाद बोलत हैं कि हमने के लिए कलाकार लोग के हमने के मंच देवे लंजा, लोकाजों देवे लंजा, यही कोचिंग करी।

0: एमबीसी ऐसे ही आज सबके एगो मौका मिली है आके इन लोग के परफॉर्म करी के
1: बहुत धन्यवाद भाई संजय जी और 5:56 हो गल बा और संजय भाई तोहर एक बार फिर तोहर से हमनी आज्ञा चाहत हैं जा और श्रोतागण ई रहल कलाकार के बाद बात और आज संजय भाई हमने के कलाकार रहलन बहुत ध्यानपूर्वक सुन ल जा और बहुत दिलचस्पी लगा के ई प्रोग्राम में भाग ले ला और खेल में भी भाग ले ला और सबके जीत आज हो गल तो चल 6 देश विदेश के समाचार सुनिया जा और तब तक हमर ओर से नमस्कार और शुभ रात्रि और एगो बहुत ही सुंदर सा गाना सास ससुर हाँ जी ये गाना तो बहुत ही बढ़िया है सास ससुर के धन संजय हरिचंद जी के आवाज़ में सुन बजा और तोहर से हमनी अनुमति चाहत है जा
0: नमस्ते

सभी को मेरा नमस्कार समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। यूके में एक नया विधेयक मॉरिशस को शागुस द्वीप समूह की पूर्ण संप्रभुता सौंपे जाने की प्रक्रिया को जटिल बना सकता है। हाउस ऑफ लॉर्ड में पेश किए गए इस विधेयक में अन्य बातों के अलावा ये प्रावधान है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले शागुसवासियों की राय ली जानी चाहिए। इस साल बड़े पैमाने

0: पैमाने पर उत्पादन करने वालों के अलावा आलू के लगभग 250 और प्याज के 300 कृषक उत्पादन में जुड़े हैं। मेजिन में कुछ चुनौतियों के बावजूद आलू के लिए 1200 टन और प्याज के लिए 1300 टन से ज्यादा की फसल की उम्मीद की जा रही है। मौसम विश्व मौसम विज्ञान संगठन एल नीनो की वापसी के बारे में दुनिया को चेतावनी दे रहा है और सभी देशों से अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम मजबूत करने की मांग कर रहा है। वहीं आज मनाए जा रहे विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में मंत्री राजेश बागवान जनता से देश की रक्षा के लिए एकजुट होने की मांग कर रहे हैं। विदेश में इसराइल और लबनानी पक्ष संघर्ष खत्म करके शांति बहाली की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। वहीं हिजबुल्ला ने युद्ध विराम के सभी प्रस्तावों से सरासर इनकार किया है। ओलिविया बॉनकुल्ट इस समय लंदन में शागुर शरणार्थी समूह के कई अन्य सदस्यों के साथ मौजूद हैं। पूरे सप्ताह के दौरान उन्होंने स्टेफान डाउटी, ब्रिटिश सांसदों और लपोटी पार्लियामेंटरी ग्रुप के सदस्यों तथा जेरेमी कोबिन के साथ कई बैठकों में भाग लिया। ओलिविया बॉनकुल्ट ने मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए समझौते के समर्थन में अपनी बात रखी, साथ ही शागुजवासियों की अपेक्षाओं और चिंताओं से भी अवगत कराया। उनका कहना है कि जिन सभी लोगों से उनकी मुलाकात हुई है उन्होंने शागुजवासियों की चिंताओं और मांगों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और उन पर गंभीरता से विचार किया। और यूके में एक नया विधेयक मॉरिशस को शागुज द्वीप समूह की पूर्ण संप्रभुता सौंपे जाने की प्रक्रिया को जटिल बना सकता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पेश किए गए इस विधेयक में अन्य बातों के अलावा ये प्रावधान है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले शागुजवासियों की राय ली जानी चाहिए। क्रेडिट जेओफा प्रणव बिहारी करुणा लालू का विवरण।
1: फर्स्ट रीडिंग ऑफ अ प्राइवेट मेंबर्स बिल लॉर्ड वेयर ऑफ बालेहोम।
2: लॉर्ड वेयर द्वारा प्रस्तावित ब्रिटिश सॉवरेनिटी प्रोटेक्शन शागुज आइलैंड्स बिल एक ऐसे संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है जब द्वीप समूह के भविष्य को लेकर यूके और मॉरिशस के बीच वार्ता जारी है। सहमति और बरतानी संसद का मतदान।
3: My lords, I beg to introduce a bill to affirm and protect the sovereignty of the United Kingdom over the Chagos Islands and the British Indian Ocean Territory. To make provision restricting the cession or transfer of sovereignty without the approval of Parliament and without the consent of the Chagossian people, to provide for the protection of the territory's strategic and defence importance and for connected purposes.
2: इस बिल में मॉरिशस और यूके के बीच होने वाली किसी भी समझौते से जुड़े खर्च पर संसदीय नियंत्रण का भी प्रावधान है। ऐसे किसी समझौते के तहत मॉरिशस को आर्थिक प्रतिबद्धता देने से पहले ब्रिटिश सरकार को हाउस ऑफ कॉमन्स की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शागुजवासियों के लिए द्वीप समूह के कुछ द्वीपों पर पुनर्वास की व्यवस्था तैयार करने का भी प्रस्ताव है। ये विधेयक शुक्रवार को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहली परत पर पेश किया गया। चूंकि एक प्राइवेट मेंबर बिल है इसलिए इसके पारित होने की संभावना अभी अनिश्चित हैं और ये इस पर निर्भर करेगा कि इसे ब्रिटिश संसद में कितना समर्थन प्राप्त हो। अटॉर्नी जनरल की भी यही राय है। उनके अनुसार इस बिल के पारित होने की बहुत कम संभावना है। ये बिल असल में कानून बनने के लिए नहीं है, मकसद बरतानी प्रधानमंत्री कस्टमर पर दबाव डालना, शागुस संधि पर पब्लिक बहस को बढ़ावा देना और संधि के आखिर नज़दीक आने पर सरकार को कमज़ोर करना है। ये बिल संसदीय की अपेक्षा राजनीतिक है।
0: और शागुस द्वीप समूह लगभग 60 छोटे द्वीपों का ये समूह 20वीं और 21वीं सदी के सबसे लंबे कूटनीतिक संघर्षों में से एक के केंद्र में रहा है। अमेरिकी दबाव, ब्रिटिश संसद में हुई बहसें, डोनाल्ड ट्रंप के बयान, मिस्ले मदाखें की साहसिक पहल तथा उन लोगों के बीच जो इस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता को चुनौती देते हैं, इससे भी लोग हैं जो लंबे समय से विवादों और गलत धारणाओं के खिलाफ संघर्ष करते हुए

0: इस मुद्दे पर अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। वे लगातार ये प्रयास से कर रहे हैं कि शागुस के इतिहास, अधिकारों और संप्रभुता से जुड़े तथ्यों को सामने लाया जाए और प्रचलित भ्रांतियों का मुकाबला किया जाए। नए सीजन के लिए देश में आलू और प्याज के बीज बोए गए हैं। इस साल बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वालों के अलावा आलू के लगभग 250 और प्याज के 300 कृषक उत्पादन में जुड़े हैं, में जिनमें कुछ चुनौतियों के बावजूद आलू के लिए 1200 टन और प्याज के लिए 1300 टन से ज्यादा की फसल की उम्मीद की जा रही है। बढ़ते तापमान और चरम मौसम संबंधी घटनाओं में वृद्धि, विश्व मौसम विज्ञान संगठन एल नीनो की वापसी के बारे में दुनिया को चेतावनी दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र की ये एजेंसी सभी देशों से अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम मजबूत करने की मांग कर रही है और उसका ये भी मानना है कि जून और अगस्त 2026 के बीच एल नीनो की स्थिति उत्पन्न होने की 80% संभावना है। इस बीच विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण मंत्री राजेश भगवान ने देश की रक्षा के लिए समस्त जनता से एकजुट होने की मांग की। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी सफाई अभियानों के बावजूद देश में कूड़े के नियमित अवैध डंपिंग की समस्या पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि कूड़ा संचालन की बढ़ती लागत के कारण अन्य विकास परियोजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधन कम हो जाते हैं। और पिछले कुछ सालों के दौरान थोबिश में लगातार हो रहे इरोजन के कारण समुद्र तट के कुछ हिस्सों में चौड़ाई काफ़ी हद तक कम हो गई है। पर्यावरण मंत्रालय लगभग 1.1 किलोमीटर तट रेखा पर एक बड़ी सुधार योजना बना रहा है। वही बीचकंब होटल ग्रुप ने पिछले हफ्ते थोबिश होटल के सामने एक पुनर्वास परियोजना शुरू की है। फ्रांसीसी विशेषज्ञता द्वारा चलाए जा रहे इन कार्यों का उद्देश्य है प्रकृति की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए रेत के बहाव में धीमापन लाना। माधवी जगन्नाथ, रजनीकर।
1: एक पुनर्व्यवस्था परियोजना के संदर्भ में बीचकंब होटल ग्रुप की थोबिश होटल के सामने समुद्र तट पर ये कार्य किए जा रहे हैं। प्रकृति में कायम एक सौम्य समाधान समझा जाता है, जिसकी बदौलत लहरों की ऊर्जा कम की जा सकेगी और बालू को बहने से रोका जा सकेगा। थोबिश बीचकंब गल्फ रिसोर्ट एंड स्पा के जनरल मैनेजर केविन गायरो ने कहा, कार्यों के अंतर्गत ढांचे लगाए जा रहे हैं। लगून की 6 अलग अलग स्थानों पर शुरुआत हो चुकी है। कम से कम 1700 क्यूबिक मीटर समुद्र तट पर ऐसा करना है। अच्छी बात यह है कि महासागर का प्रवाह बदलेगा नहीं इससे, बल्कि प्रवाह को मदद मिलेगी। समुद्र तट प्रभावित नहीं होगा और बालू भी नहीं जाएंगे। अनुमान है कि इन पिछले 40 वर्षों के दौरान थोबिश का तट करीब 40 मीटर अंदर चला गया है, जिससे कि ऊंची ऊंची लहरों का सामना कर पाने की प्राकृतिक भूमिका घट जाती है और तटीय मूल ढांचे सामने आ जाते हैं। थोबिश गांव के एक अध्यक्ष जाकी अलेक्सांड ने कहा, समुद्र तट की स्थिति बहुत बिगड़ गई है, करीब 50 मीटर चला गया। अगर ऐसे ही रह गए, ये ऐसे ही जाता रहेगा। एक समाधान ढूंढना ही चाहिए। सभी लोग तट पर जाना पसंद करते हैं, तैरने के लिए, चलने के लिए कुछ करना चाहिए। पर्यावरण मंत्रालय की ओर से तैयार एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में थोबिश सबसे कमजोर तटीय इलाकों में से एक है, जिसके लिए आपातकालीन सुरक्षा कदम उठाने की जरूरत है। एक सप्ताह से कार्य शुरू हो गए हैं और ये 4 महीनों तक जारी रहेंगे।
0: और कुछ समय पहले हम बता रहे थे ओलिविए बोंकुर्ट इस समय लंदन में शागुर शरणार्थी समूह के कई अन्य सदस्यों के साथ मौजूद हैं। पूरे सप्ताह के दौरान उन्होंने स्टेफन डाउटी, ब्रिटिश सांसदों, ऑल पार्टी पार्लियामेंटरी ग्रुप के सदस्यों तथा जेरेमी कोबिन के साथ कई बैठकों में भाग लिया। ओलिविए बोंकुर्ट ने मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए समझौते के समर्थन में अपनी बात रखी, साथ ही शागुस वासियों की अपेक्षाओं और चिंताओं से भी अवगत कराया। उनका कहना है कि सभी जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने शागुस वासियों की चिंता और मांगों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और उन पर विचार किया। ओलिविए बोंकुर्ट को सुनते हैं।
2: उफिंडिया की उनगे क्रॉस पार्टी सपोर्ट किसाना

0: fin soin et qui qualité soutien ou fin gagné
1: ça mission là il y a une vision vraiment importante pour nous parce qu'il y a trop beaucoup de contradictions pour faire croire qu'il ban sagouchien pas peut soutenir les deals qui n'ont le gouvernement anglais et le gouvernement Maurice et nous envie montrer à travers sa délégation là nos présences physiques dans l'Angleterre pour montrer ça ban membre du parlement britannique et aussi ban membre de chambre des lords qui nous bel et bien nous soutenir à aucun moment et nous pas contre et nous apporte nous full soutien à sa dit là d'abord nous joignons un de ban grand supporter la liste sagouchien Jeremy Corbyn et aussi comment on vient mentionner ban membre qui siège le haut parti parlement groupe de sagos qui au nom de 46 qui je t'apporte de tout parti qui apporte de soutien à la cause sagouchienne et qui toujours finaide ban membre du CRD la communauté sagouchienne pour qu'elle trouve le chemin et mon jeune aussi même ban conservateur par exemple mon jeune c'est Ian Duncan Smith qui est opposé à ça nous partageons avec lui nous dit lui qui nous expectation et mon capable de dire qui aussi nous jeune man lord par exemple nous jeune lord Lister lord Lefford et les autres lords encore qui nous jeune et ce qui est plus important nous jeune aussi les the chairperson of joint commission on human rights qui est vraiment concerné par ça.
2: मॉरिशस में रिन्यूएबल ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है. पुद्रुदो में कल एक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया जो लगभग 3,400 घरों को बिजली देने में सक्षम होगी. एमसीबी ओमनिकेन और कालिसे इंटरनेशनल के सहयोग से तैयार इस परियोजना में 250 मिलियन रुपये का निवेश किया गया है. खास बात यह है कि यहाँ बिजली उत्पादन के साथ कृषि गतिविधियों को भी परियोजना में शामिल किया गया है. इस परियोजना का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना, बिजली उत्पादन में अक्षत ऊर्जा की हिस्सेदारी 60% तक पहुंचाना और 2035 तक कोयले के उपयोग को धीरे धीरे समाप्त करना है. क्लोदेट जोफा, करुणा लालू.
3: पुरोडो सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन ऐसे समय में किया गया जब ऊर्जा संक्रमण देश की एक प्राथमिकता बन गई है. लगभग 4 हेक्टेयर में फैली सौर ऊर्जा परियोजना में 8,000 से ज्यादा फोटोवोल्टाइक पैनल लगाए गए हैं. ये सौर फर्म प्रतिवर्ष लगभग 7,700 मेगावाट प्रति घंटे स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करेगा जिससे लगभग 3,400 घरों की आपूर्ति की जाएगी. ये परियोजना मिक्स ऊर्जा उत्पादन में नवीनीकरणीय स्रोतों के उपयोग के राष्ट्रीय लक्ष्य में सीधे रूप से योगदान देगी. जाक जिनियाविल ने कहा, कई टापू राष्ट्रों की तरह मॉरिशस क्लाइमेट चेंज के समक्ष नाजुक स्थिति में बना रहता है. ऊर्जा चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, संबद्ध संसाधन पर भी भारी दबाव है. इस तरह की परियोजना से मदद मिलेगी स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और जमीन के अधिकाधिक उपयोग को लेकर भी. इस परियोजना में लगभग 250 मिलियन रुपए का निवेश किया गया है और ये टिकाऊ वित्त पोषण के नए मॉडलों के विकास का भी उदाहरण है. चेरी एब्रो ने कहा, एमसीबी दल की ये पहल ऊर्जा संक्रमण के तहत है. परियोजनाओं का समर्थन किया जा रहा है. वित्त टिकाऊ ऊर्जा की ओर बढ़ने में अहम साधन है. इस परियोजना की एक और विशेषता कृषि वोल्टाइक यानी अग्री वोल्टाइक पद्धतियों का समावेश है जिसके तहत एक ही स्थल पर ऊर्जा उत्पादन और कृषि गतिविधियों को एक साथ संचालित किया जा सकेगा. कृषि मंत्री डॉक्टर अरविंद बुल्लेल ने कहा, चुनौतियों को देखेंगे और उन्हें संभावनाओं में बदलेंगे. इसीलिए कृषि खाद्य मंत्री की हैसियत से बागास पर फिर से गौर किया गया. गन्ने के अलावा बायोमास के अन्य साधन भी हैं. साथ में आने से नीति विकसित करने में सरकार को मदद मिलेगी.
4: We'll be very receptive. We need to chalk out clear-cut strategy.
3: उन्होंने कहा कि जलवायु प्रतिबद्धताओं का सम्मान करते हुए ऊर्जा सुरक्षा

0: रक्षा को मजबूत करना और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना मॉरिशस की दीर्घकालिक उड़ान नीति के प्रमुख लक्ष्य बने रहेंगे।
1: शागुस द्वीप समूह पर ही बात करते हैं। शागुस द्वीप समूह लगभग 60 छोटे द्वीपों का ये समूह 20वीं और 21वीं सदी के सबसे लंबे कूटनीतिक संघर्षों में से एक के केंद्र में रहा है। अमरीकी दबाव, ब्रिटिश संसद में हुई बहस है, डोनाल्ड ट्रंप के बयान, मिसले मौदारें की साहसिक पहल और उन लोगों के बीच जो इस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता को चुनौती देते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो लंबे समय से विवादों और गलत धारणाओं के खिलाफ संघर्ष करते हुए इस मुद्दे पर अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। वे लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि शागुस के इतिहास, अधिकारों और संप्रभुता से जुड़े तथ्यों को सामने लाया जाए और प्रचलित भ्रांतियों का मुकाबला किया जाए। अंजुराम गुलाम, करुणा लालू।
0: यूके ने शागुस द्वीप समूह को मॉरिशस उपनिवेश से अलग कर ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी की स्थापना की। इसके बाद लंदन और वाशिंगटन एक समझौता तय करके जिगोगोसिया में एक अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थापित करने की अनुमति दी। उस समय मॉरिशस स्वतंत्र नहीं हुआ था।
2: Poti baba bizen boire de l'eau de coco bizen se fait mais dans un biberon pour les autres
0: 1500 से 2000 शागुस वासियों को बलपूर्वक मॉरिशस और सेशल्स भेज दिया गया। 1980 के दशक में शागुस वासियों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शागुस रेफ्यूजी दल में संगठित होना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत ने अपने मत में कहा कि मॉरिशस की उपनिवेश मुक्ति प्रक्रिया कानूनी रूप से पूरी नहीं हुई थी और यूके को शागुस द्वीप समूह का प्रशासन खत्म करना
2: चाहिए।
0: आज मॉरिशस में रहने वाले अनेक शागुस वासी खासकर युवा पीढ़ी कहते हैं कि उन्होंने यहाँ अपनी जगह बना ली।
3: J'ai fait faire civil engineering dans l'université Maurice et mon fini avec first class qui vraiment m'a rien fait que mon fier. Mon content mon reste Maurice parce que si moi je suis en Angleterre, mon proche pour grave aider dans le processus comme on est ici, comme mon cas activement participe avec groupe de chagous, comme mon cas exode, participe exode, à l'exode et c'est causé, c'est principe d'une perspective en troisième génération. Parce qu'il n'y a pas toute troisième génération qui paraît. Essayer de montrer aux autres qu'il y a l'espoir de moins jeune, montrer aux autres qu'il nous l'a pour aider aussi.
0: London, Ravana, on est pehle, hamari mulakat, Olivier Bancoul, c'est hui thi.
4: Moi, qui suis né dans Sagos, mon génération qui est née dans Sagos, nous dit où il faut, ce qui content, content, ce qui pas content, pas content, Sagos appartenir à l'île Maurice.
0: शागुस एक ऐसा द्वीप समूह जो स्मृतियों और सामरिक शक्ति के बीच झूलता रहा है। राजनीति, राष्ट्रीय हितों और अंतर्राष्ट्रीय तनावों से परे यहाँ एक ऐसी जनता भी है जो इस इंतजार में है कि इतिहास उससे छीनी गई चीजें उसे वापस लौटाए।
1: मॉरिशस में आने वाले समय में कई बिलियन रुपए के नए निजी निवेश देखने को मिल सकते हैं। निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार देने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने अपने प्रयास और तेज कर दिए हैं। हाल ही में हुई बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। साथ ही निवेशकों के लिए कारोबार माहौल और बेहतर बनाने और देश को अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से कई नई पहलों की भी घोषणा की गई। आप दिल बोला की करुणा लालू।
0: इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के निदेशक मंडल ने हाल ही में कई ऐसे उपायों को मंजूरी दी जिनका उद्देश्य मॉरिशस में निवेश को आकर्षित करना तथा आर्थिक विकास को गति देना है। मुख्य फैसलों में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 4 कंपनियों को प्रीमियम निवेशक प्रमाण पत्र प्रदान करना शामिल है। संजय भंजन ने कहा करीब 10 परियोजनाओं पर स्वीकृति दी गई है। विभिन्न सेक्टरों में 6.3 बिलियन रुपए की लागत पर 5 रियल एस्टेट में स्मार्ट सिटी है, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, बायोमेडिकल इक्विपमेंट, स्मार्ट सिटी एग्रीकल्चर भी शामिल।

0: ban équipement biomédical, nous avons une qui peut faire smart agriculture, mushroom à température contrôlée, et nous avons setup ban musée. Donc nous trouvons pas seulement real estate, mais dans tous les secteurs, nous pouvons gagner l'investissement.
1: व्यापार सुगम बनाने की पहल के तहत ईडीबी जल्द ही बिजनेस ऑब्स्टेकल अलर्ट मैकेनिज्म नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। ये मंच आर्थिक ऑपरेटरों को परमिट, लाइसेंस तथा अन्य नियमों संबंधी प्रशासनिक बाधाओं की सूचना देने की सुविधा प्रदान करेगा। ईडीबी में आज 400 परियोजनाएं हैं 410 बिलियन रुपए की लागत की। ईडीबी के नेतृत्व में इनका कार्यान्वयन हो रहा है। स्वीकृति मिलने पर अक्सर परियोजना को साकार करने में 4 से 8 साल लग जाते हैं। ईडीबी की भूमिका इन्हें लागू करने पर भी नजर रखना है।
0: मैं nous faciliter, nous suivre qui soit un projet là implémenté et ça donne un signal que l'investissement est dans le bon sens.
1: बोर्ड द्वारा गोल्डन वीजा प्रोग्राम के दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने और साथ ही निवेशकों तथा उच्च आय वाले लोगों के लिए एक त्वरित सुविधा सेवा की भावी शुरुआत का भी जायजा लिया गया।
2: विदेश में जहां इजरायली और लबनानी पक्ष संघर्ष खत्म करके शांति बहाली की दिशा में प्रयास कर रही है, वहीं हिजबुल्ला ने युद्ध विराम के सभी प्रस्तावों से सरासर इनकार किया है।

और अब आखिर में चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही है, दक्षिण की ओर से आ रहे बादलों का असर आज रात को हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, रात को मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा सिवाय देश के पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर बादल कुछ घिर आएंगे, रह रहकर वर्षा होगी। और कल सुबह भी देश के पूर्व, दक्षिण और ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे, बाद में मौसम में सुधार आएगा, मौसम अच्छा रहेगा। हवा दक्षिण की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम तापमान 22 से 25, साहली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:40 पर होगा।

6:24 हुए हैं। देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक शिव को धन्यवाद देते हैं, साथ में समाचार विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।

Choc samachar sunye number 4B l'impasse Dilley Boundary Rose Hill mein number 4B l'impasse Dilley Boundary Rose Hill mein 51 saal ki 51 years old Shri Bhuneshwar Singh Angatia Shri Bhuneshwar Singh Angatia jinhe log Rakesh naam se jante the की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ है कल दिन के एक बजे इनके मकान नंबर 4B लेपास जिले बाउंडेरी रोज हिल से उठाकर कोदेगा कृष्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। और नंबर 14 ए सर हिलारी ब्लड एवेन्यू कैटबोन में 103 साल की 103 years old श्रीमती सनमती दसोई श्रीमती

सनमती दसोई पैदाशी नाम गोकुल और जिन्हें लोग सुगिन नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे इनके मकान नंबर 14A हिलारी ब्लड एवेन्यू कैचोबोन से उठाकर थामा मेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 12:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।

नमस्कार, इस समय शाम के 6:27 हुए हैं। हमारे आपका साथ है रेडियो मनोरंजन पर, और रेडियो मनोरंजन पर हम यही आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं कि आज का दिन अच्छा गया होगा आपका, और आज की शाम भी बहुत ही प्यार से गुजरेगी आपकी। लेकर आए हैं हम आपके लिए नई सोच कार्यक्रम। नई सोच लेकर आए हैं हम सुरेखा आपके लिए। लेकर आए हैं ऐसे गाने जो आपके मन में बहुत ही बड़ी उम्मीद जगाएगी, और उम्मीदों का जागना ही आगे बढ़ने का एक जरिया होता है। चलिए ज़रा हम इन गानों को सुने और इन गानों के साथ साथ अपने मन को इतना धीरज धरवाएं, इतना धैर्य धरवाएं कि हर मुश्किल का सामना करना आना चाहिए हमको, हर मुश्किल का सामना करना आएगा हमको। चलिए, चाहे अकेले ही चलना पड़े, चल के जाएंगे हम अपनी मंजिल तक, नहीं छोड़ेंगे साथ इस मंजिल का हम, नहीं करेंगे हम कोई भी ऐसी शिकायत इस राह से कि हमें मंजिल तक न पहुंचाने की बाधाएं देता है, जो हमको मंजिल तक पहुंचाने की बाधाएं देता है, फिर भी देकर हमको बाधाएं आगे बढ़ने की सलाह भी दे जाता है।

तपते रास्ते मिलते हैं हमको और तपते रास्तों पे चलना होता है हमको, क्योंकि आगे चलकर हमें सुख का चैन का मौसम मिलने वाला है। तो चलिए ज़रा हम इस तपती राह को पार करें, चलिए जहाँ पर अंधेरा हो उस अंधेरे से भी हम होड़ ले जाएं, उस अंधेरे को भी पार कर लें। कहाँ तक भला ये मन को छलेंगे अंधेरे, इन अंधेरों के बाद तो हमें उजाला ही उजाला मिलने वाला है। बस विश्वास रखिएगा कि अंधेरों के बाद जो उजाला आने वाला है वह जिंदगी का उजाला।

अंधेरे जो आते हैं तो इन अंधेरों से सीखिए कि उजाले भी आने वाले हैं, और ये जहां खुद चलता ही यूं है कि अंधेरा भी होना है और इसमें उजाला भी होना है। अगर अंधेरा नहीं हो तो उजालों की कीमत हमको कहां से पता चलेगी। आप देखिए ना, एक गुलशन में जाएंगे, एक फुलवारी में जाएंगे तो वहाँ सिर्फ फूल कहाँ होते हैं, वहाँ तो कांटे भी होते हैं। इसी तरह इस जहाँ में सिर्फ खुशियाँ नहीं होती, यहाँ पर कई सारे गम भी होते हैं। इन गमों को पार करके ही हमें समझ आता है खुशियों की कीमत क्या होती है।

बेशक हर कोई जिंदगी की खुशियों को जिंदगी की हंसी को और जिंदगी के गम और आंसुओं को कबूल करता है और कबूल करके ही तो इस जिंदगी को जिंदगी बना सकते हैं हम इस जिंदगी में खुशियां बटोर सकते हैं हम अगर हम गमों से डर के भागने लगे तो उनको खुशियों में ढालने का मौका ही कहां मिलेगा हमको

चलिए ये जो सफ़र है ज़िंदगी का, इस सफ़र में हम औरों से प्यार बांट लें, इस सफ़र में हम औरों के प्रति अपने दिल में दया भी समेट लें, क्योंकि ज़िंदगी चार दिनों की ज़िंदगी होती है। हम चार दिनों के बाद जो इस जहां में नहीं रहेंगे तो हमारा प्यार, हमारा नाम, हमारा एहसास ज़रूर इस जहां में रह जाएगा।

तो बस हम पेश करते हैं अंतिम गाना हमारे इस कार्यक्रम का, नई सोच कार्यक्रम का, और ये होगा आप लोगों के लिए किशोर कुमार की आवाज़ टूटे खिलौने मूवी का ये गाना होगा। और इस गाने के साथ ही समाप्त हो जाएगा आज का हमारा नई सोच कार्यक्रम। और उम्मीद करते हैं कि हमारे चुने हुए गाने आपको अच्छे लगे होंगे, और जो मन में आपकी कोई टीस होगी तो इन गानों से आपको राहत ज़रूर पहुँची होगी। बस थोड़ी ही देर में हम पेश करेंगे आप लोगों के लिए दिलों की आवाज़ प्रोग्राम।

0: सुनो, किन के ख्यालों में डूबे हुए हो? लगता है गहरा ख्याल है। हेलो,
1: कुछ कह रही थी क्या?
0: हाँ, तुम ही से बात कर रही थी। कहाँ खोए हुए हो?
1: ओ सॉरी, म्यूजिक सुन रहा था।
0: ऐसा क्या सुन रहे थे?
1: रेडियो मनोरंजन पर दो दिलों की आवाज सुन रहा था। रात 7 से 9 बजे तक कोई मुझे डिस्टर्ब न करे। मन पसंद गीतों का सिलेक्शन है, वाह क्या कहीं।
0: ऐसा क्या?
1: हाँ, जलने की कोई जरूरत नहीं, तुम भी अपना मन पसंद गाना सुन सकती हो। बस आसान तरीका है, बस नंबर मिलाओ 4028007 पर और अपनी पसंद जाहिर करो।

0: दिलों की आवाज़
1: शो में आपका करते हैं हम स्वागत। हम हैं सुरेखा, आपका साथ दे रहे हैं और आज फ्राइडे नाइट, सो फ्राइडे इवनिंग में हमारी आपकी ये जो मुलाकात होती है हर हफ्ते, वो मुलाकात बड़ी हंसी होती है और इस हंसी मुलाकात को और भी रंगी बनाने के लिए आपके कॉल्स, आपके मैसेजेस हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। तो दिलों की आवाज़ें आपकी होंगी और आपकी आवाज़ें हम सुनेंगे, इन्हें सुनकर हमारे सभी श्रोताओं तक पहुँचाएँगे। जहाँ भी होंगे आप, साथ तो हमारा आपका वही रहेगा और आप हमें मैसेजेस भेजिएगा, मैसेजेस कॉल्स के ज़रिए हम आपकी फरमाइशें पूरी करेंगे। चलिए ज़रा हम अपने श्रोताओं की खुशी के लिए, अपने श्रोताओं के लिए एक गाना तो अपनी तरफ से ज़रूर चलाएंगे। दामिनी मूवी का ये टाइटल गाना है, चलिए साथ मिलके सुनते हैं। तब तक हम आपकी फरमाइशें पूरी करने की पूरी तैयारी करते हैं।

जहां भी हैं आप, बस हमारी आपकी इस मुलाकात को बहुत हसीन बनानी है। आप जहां से भी हमें सुन रहे हैं, हमें फोन जरूर कीजिएगा या फिर हमें मैसेज जरूर भेजिएगा। आपके मैसेजेस हम आप तक आपके मैसेजेस के जरिए हम आपके गाने आप तक जरूर पहुंचाएंगे, फरमाइशें आपकी पूरी जरूर करेंगे। हम हैं सुरेखा आपके साथ। अगर नंबर नहीं याद हो आपको तो हम याद दिला देते हैं, 5250 6200 हमारा मैसेज वाला नंबर है और 4028070 हमारा नंबर है कॉल करने वाला। तो चलिए आप ज़रूर साथ देते रहिएगा कॉल के ज़रिए या फिर मैसेजेस के ज़रिए। फिलहाल तो चलिए हम किरण जी की पसंद का गाना पेश करते हैं। सुखी नाम की किरण जी ने सुनना चाहा है इस मेले के बारे में, ये मेला जो हसीनों का मेला है, ये दुनिया जो हसीनों का मेला है। गुप्त मूवी का ये गाना है किरण जी की पसंद का, चलिए ज़रा सुनते हैं।

और चलिए जरा इस समय 7:17 हुए हैं और हमारी आपकी मुलाकात जो हो रही है फिल्मी गानों के बीच हो रही है, आपकी फरमाइशों के बीच हो रही है और फरमाइशें आपकी हमारे पास आ ही रही हैं, आने लगी हैं, बहुत ही ज़ोर शोर से आ रही है। चलिए ज़रा हम पेश करते हैं ये जो गाना हमसे सुदेवी जी ने मांगा है। सुदेवी जी वाकवा से मांग रही है ये गाना और इंजॉय कर रही हैं प्रोग्राम को, तो चलिए ज़रा सुदेवी जी की तरफ से ये गाना हम पेश करते हैं। चलते चलते मूवी से लिया गया अभिजीत की आवाज़ में और ये गीत हम देवी जी की तरफ से पेश करते हैं थयोले के दीदी ललिता के लिए, कुशल फैमिली के लिए, आत्माराम भैया के लिए, दीदी सुनीता शोभा के लिए, मालेंगा के रामरतन परिवार और थैंक यू हमारी पूरी टीम के लिए भी मांगा है सुदेवी जी ने ये गीत। बहुत बहुत शुक्रिया आपको।

बस 7:23 और हमारी आपकी मुलाकात अभी 9 तक होने वाली है। आपके मैसेजेस मिले हैं हमको, अगर जिन्होंने जो आपने भेजे हैं, बस हम थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके वो गाने पेश करेंगे जिनकी फरमाइश आपने की है। अभी देखिए ना, इधर हमें फरमाइश मिली है फिल्म जानवर के गाने की, और मदर्स डे के अवसर पर माँ के प्रति जो प्यार अपनापन उमड़ता है वो ज़िंदगी भर रहता है, वो साल भर रहता है। और अगले साल जो मदर्स डे आता है, मातृ दिवस आता है, तो हम अपनी माँ को और भी स्पेशल फील कराने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, मातृ दिवस का ये गाना, माँ पर आधारित ये गाना, ममता से भरा हुआ ये गाना हम पेश करते हैं आप लोगों के लिए। जानवर मूवी का ये गाना है और इसकी फरमाइश गुलशन जी ने की है। उन्होंने ये गाना मांगा है अपनी मम्मा प्रभा के लिए, बहन दीक्षिता के लिए, आयशा के लिए और पूरे भोला परिवार के लिए। जी हाँ, भोला परिवार के लिए। और गुलशन जी ने यही गाना हमारी सखी हंसिनी के नाम भी किया है।

कहां जाएंगे हम आपकी फरमाइशों के बिना, लेकर आए हैं वो गुलदस्ता जो हम आपकी फरमाइशों के फूलों से सजा रख हमने सजा रखा है और सजाया है हमने। बड़ी खुशबू आ रही है, आपके दिल से निकली हुई आवाज़ें हैं, आपके दिल से निकले हुए अरमां हैं, सो इन अरमानों में जो खुशबू है उन खुशबुओं को आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए ज़रा एक फूल हम आपको नज़र करते हैं इस गुलदस्ते का। ये फूल होगा सुनील जी की पसंद का। सुनील जी ने गाने की फरमाइश की है राजा भैया फिल्म के, और ये वो गाना है जिस जो वे बजवाना चाह रही है अपने भैया श्रवण के लिए, भाभी कृति के लिए, अभिनव कियान और नाविया के लिए, और पूरे तिलक फैमिली के लिए, और आंतिश रामसरन जी के लिए जो इस वक्त स्विट्जरलैंड से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। सो आंतिश जी, आपका हम करते हैं जोरदार स्वागत इस प्रोग्राम में।

जहां भी जाइएगा दिल की नजरों से देखिएगा ये संसार बड़ा सुंदर लगेगा ये संसार बड़ा ही प्यारा लगेगा आपको दिल की नजर से नजरों को दिल से आप जरूर रिश्ते में बांध लीजिएगा और रिश्तों को बांधने के बाद जो संसार देखिएगा तो खूबसूरती का ही गुलदस्ता नजर आएगा आपको चलिए जरा हम इसी बात पे जरा गौर करते हैं फिल्म अनाड़ी का ये गाना पेश करते हैं और अनाड़ी मूवी का ये गाना हम तायक के रफीक मोहित जी के नाम करते हैं तो एंजॉय कीजिएगा ये गाना रफीक जी

वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। ना जी ना, नहीं कह रहे हैं हम कोई कहानी, ये है मूवी का नाम जिसका गाना इस बार हम पेश करेंगे। जी हाँ, ये सचिन जी की फरमाइश है। पॉपुलर मुझके सचिन जी ने मांगा है ये गाना, जिसे सुनिधि चौहान जी ने अपनी आवाज़ से नवाजा है और जिसे राणा मजुमदार ने भी अपनी आवाज़ दी है।

बस गाते चलिए मुस्कुराते चलिए और इस महफिल में आप अपना नाम लिखवाते चलिए। इस महफिल में अगर आप अपना नाम लिखवाते हैं तो 5250-6200 पर अपना मैसेज भेज सकते हैं और 4028070 पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए इस बार हम आपको आतिफ असलम की आवाज़ सुनवाते हैं। रुस्तम मूवी का ये गाना

हैं। चलिए जरा इस रोमांटिक गाने को हम सुनते हैं और ये गाना हम पेश कर रहे हैं कृष्णी जी के जन्मदिन के अवसर पर। हैप्पी बर्थडे टू यू कृष्णी जी, आपको बहुत बहुत खुशियाँ मिले, आपको बहुत बहुत तरक्की मिले, यही उम्मीद, यही दुआ हमारी पूरी टीम की है। और आपके लिए ललिता जी ने बर्थडे विशेस बहुत प्यार से बहुत आशीर्वाद के साथ भेजे हैं, आपकी मम्मा निशा की तरफ से, पापा कृष्ण की तरफ से, भाई निर्वेश और पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ललिता जी ने इस गाने की फरमाइश अपनी बहन सुदेवी जी के लिए भी की है, छोटी जी प्रभावती जी और आत्माराम जी के लिए, सुखलाल मौसी, उषा लुकाना और अम्माला राम जावन जी के लिए।

जब अवधे आता है तो बेशक आपके अपने आप को जरूर कांटेक्ट करते हैं, आपको दुआएं देते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। सो आशीर्वाद और दुआएं अपने बेटे सूरज को दे रही हैं ललिता जी कालबास से। कालबास की ललिता जी के बेटे सूरज का आज 51st बर्थडे है और उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी मंगल कामनाएं, ढेर सारी दुआएं दे रही हैं ललिता जी और उनके लिए पेश करना चाह रही हैं, उनको सुनवाना चाह रही हैं सुरेश वाडकर और साथियों की आवाजों में अंदर

और जो नजर दौड़ाया हमने मैसेजेस पर, तो मैसेजेस में हमें अनीता जी की का मैसेज मिला, फ्लिक ऑफ लक की। अनीता जी ने हमसे मांग की है फिल्म मोहब्बत के इस गाने की। चलिए जरा उन दिनों की याद आ जाती है ये गाना सुनकर, तो चलिए उन दिनों की यादों में डूब जाते हैं। चलिए जरा ये 90s का गाना हम पेश कर रहे हैं मोहब्बतें मूवी का, विनोद राठौड़ और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में, और सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए मांगा है अनीता जी ने ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।

और चलते चलते हम जरा पेश करते हैं वो गाना जिसकी फरमाइश आई है बुआहोश गुडलैंड से। जी हाँ, गुडलैंड से संध्या जी ने इस गाने की फरमाइश की है। ये है खानदान मूवी का गाना और उनकी तरफ से उनके पति विनोद के लिए, सेजल, रैना और निर्वय के लिए हम ये गाना पेश करते हैं। चलिए ज़रा आप सबों को शुभ रात्रि विश करते हुए संध्या जी ने इस गाने की फरमाइश की है।

और फरमाइशों का गुलदस्ता जो हमने सजाया है उसमें से अगला फूल जो होगा वो रंग आग मूवी से लाएगा और आग मूवी का ये गाना हम नंदिनी जी की पसंद पर पेश कर रहे हैं अलका याग्निक की आवाज़ में है ये गाना कुमार सानू का साथ है साथ आपका भी होगा जो गुनगुनाना चाहें तो हो लीजिए हमारे साथ हम भी गुनगुनाने वाले हैं ये गाना

पुकार मूवी का ये गाना हम पेश कर रहे हैं जिसे सुनकर आप भी तो गुनगुनाएंगे और साथ ही साथ सूरज शर्मा सजादा जी भी मुस्कुराएंगे क्योंकि गुनगुनाना और मुस्कुराना इस जीवन का सबसे बड़ा धन होता है। तो चलिए आप मुस्कुराते चलिए गुनगुनाते चलिए। सूरज शर्मा सजादा जी ने ही तो इस गाने की फरमाइश की है पुकार मूवी का। इस गाने को उन्होंने अपने बेटे निशाल और पूरे बिस्सेसर परिवार के नाम किया है, नितुषा के नाम किया है, पूनम के नाम किया है, हमारी पूरी टीम के नाम किया है। तो चलिए सुनते हैं सुनाते हैं सुनवाते हैं और गुनगुनाते हैं।

और जब बढ़ेंगे तो श्रीमान सत्यवादी जी की ओर बढ़ेंगे। श्रीमान सत्यवादी जी से पूछेंगे कि कौन सा गाना हम पेश करें आपकी फिल्म का, तो इनफैक्ट हम पेश करेंगे ये वो गाना जिसे की फरमाइश बाबू अनतवा जी ने किया है काथा बोन से। उन्होंने ये गाना पूरे अनतवा फैमिली के लिए मांगा है और यही गाना हम शातो बिनागस की ज्योति जी की तरफ से पेश कर रहे हैं। उन्होंने ये गाना अपनी बहनों के लिए मांगा है, आशनी रेखा और सुरेखा के लिए, और पूरे मंथ फैमिली के लिए उन्होंने मांगा है ये गाना।

चलिए जरा हम एक दिल सौ अफसाने मूवी का ये एक अफसाना आपको सुनवाते हैं, और ये वो अफसाना है जिसे सुनना चाहा है रेहाना जी ने। फिनिक्स की रेहाना जी सुनना चाह रही है लता मंगेशकर की आवाज़।

8:34 हुए हैं, जहां भी होंगे खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, और जो ड्राइविंग कर रहे होंगे इस वक्त तो सेफली ड्राइव कर रहे होंगे, यही हमारी उम्मीद है। हमें सुरेखा साथ आपका दे रहे हैं और आपकी फरमाइशें पूरी कर रहे हैं। फरमाइशों का ये सिलसिला है, सिलसिला ये आपके दिल को खुश करने का है। सो चलिए आपको हम सुनवाते हैं बिच्छू मूवी का ये गाना, और ये गीत आप सुनिएगा श्वेता शेट्टी और हंसराज हंस की आवाज़ों में। इस गाने की फरमाइश पदवाग विदेशी जी ने की है, उन्होंने तायक से इस गाने की फरमाइश की है मौताबा की अनुषा जी के नाम।

और अब चलिए नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई गाना सुनते हैं और बच्चों के साथ मिलके थोड़ी मस्ती करते हैं। एक नानी जी ने इस गाने की फरमाइश की है और नानी जी ने ये गाना मांगा है अपनी नाती नारोही के लिए जो वाकवा की रहने वाली है और आहना के लिए जो गिव्या जोगोंपा की रहने वाली है। तो चलिए साथ मिलके नानी जी के और आहना और आरोही के हम भी ये गाना सुने और इंजॉय करें।

0: रेखा जी ने इस गाने की फरमाइश अपनी सखी जूली के लिए की है। जूली आज स्पेशल ये प्रोग्राम सुन रही है क्योंकि उनको कहा गया है कि उनके नाम का ये गाना चलने वाला है। सो रेखा जी की तरफ से जूली के नाम और साथ ही साथ मीना के नाम ये गाना।
1: ए जूली जूली

0: हमको लेली नहीं मांगता हमको मैरी नहीं मांगता हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता
1: तो कौन मांगता
2: ए जूली जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली

0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: Continuous music. RM3.
1: और इस बार चलिए हम पेश करते हैं कल की आवाज मूवी का ये गाना जिसमें बहुत सारा प्यार फैमिली के लिए है और फैमिली का ये प्यार हर किसी को मिले, हर किसी की फैमिली में प्यार बढ़ता जाए ऐसी उम्मीद के साथ हम पेश करते हैं ये गाना आशा जी की तरफ से, कटेज के आशा जी की तरफ से उनकी मम्मा कुमारी के लिए, शुभम और ऋषभ के लिए, दीदी आरती और जीजू राज के लिए, पूरे जानू परिवार के लिए।

0: Continuous music. Music Radio.
1: RM3. तो बस अंतिम गाना हम पेश कर रहे हैं हमारे दिलों की आवाज़ कार्यक्रम का. इस प्रोग्राम में आपने हमारा साथ दिया, बेहद शुक्रिया आपको. आप लोगों के नाम करते हैं हम एक ऐसा गाना जिसे हमने हम आपके है कौन मूवी से लिया है और इस गाने की फरमाइश की है भैया नीलेश और भाभी श्वेता की शादी के अवसर पर हिमेशा जी ने, जो बोंपू की रहने वाली है. तो चलिए इस गाने को हम बजवाते हैं भैया नीलेश और भाभी श्वेता के नाम हिमेशा की तरफ से. और ये गाना होगा अंतिम गाना हमारे कार्यक्रम का. उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे श्रोताओं के चुने हुए गाने पसंद आए होंगे. अभी थोड़ी देर में हम पेश करेंगे दो दिलों की आवाज़ प्रोग्राम के बाद भोजपुरी तड़का प्रोग्राम, और इसमें भी भाग लीजिएगा ज़रूर. हमारी आपकी मुलाकात भोजपुरी तड़का में होती है अभी थोड़ी देर में.

0: मेरे भाई।
1: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।

0: भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी तड़का में तोहर स्वागत करत हैं जान नमस्ते हम सुरेखा तो हर साथ देवत हैं और भोजपुरी तड़का तोहर खातिर रहले हैं भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तोहर लोग अपन पसंद के गाना हमने से मंगिया जा टेलीफोन करिया जा 4028085 पर या फिर मैसेज भेजे जा 5251700005 पर तोहर पसंद के गाना तोहर लग के सुनवाओ अब जा तोहर पसंद के भोजपुरी गाना तोहर लग के सुनवाओ अब जा भोजपुरी तड़का प्रोग्राम है चला तला के सुनवाइला जब भी सुनील कुमार राम तोहर जी के गावल चांदो और पारो होला गाना और ये गाना हमने बजाओ था जब परी खातिर परी रहेलन मौसल माँ उनकर बहिन संध्या उनकर खातिर गाना मंगले हवन

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: राजकमल चिंतामणि जी के गावल गाँव के लाफो तेनवा हमके बीतल दिनवा के याद दिलाए के गाना है। राजकमल चिंतामणि जी के गावल गाना हमने गाँव गुप के सुनीता जी के पसंद पर बजावत है जा उनकर बहिन नवीमाला खातिर कोंगो मारे लनकर बहिन उनकर नाम करते जाए गाना।

0: भोजपुरी तड़का।
1: अभी कुछ जन से तड़का लगाओ अब जाओ गाना है ज्ञान में ही पतलाल जी के गावल और गाना हमने से मंगले हवन आत्मा राम जी बिलिया से मंगले हवन अपन बहिन ललिता बहिन सुदेवी बहिन प्रभावती और बहिन छोटी जी खातिर और पूरा इसनु परिवार खातिर बिलिया के

चलो अब रिकु अनीता जी के पसंद के गाना तो लोग सुनवाइला जाफरी कॉम्प्लेक्स से अनीता जी मंगले हवन दादा के कहानी दादी के कहानी चला ये गाना सुनिए जहाँ हमने अनीता जी के संग दिया और उनका सब परिवार लोग खातिर

दादा की कहानियाँ और दादी की कहानी सुनला के बाद चला हमने आगे बढ़ब जाओ री माँ बाप की मूल हमने पहचानी ला जा। गीता गजाधर जी के गावली गाना हमने बजावत है जा फूलवंती जी के पसंद पर। वाकवा से फूलवंती जी गाना मंगले हवन अपन माँ अनुराधा के नाम और अपन पूरा परिवार के नाम।

अबू जी के पसंद के गाना आप बिल्कुल तहलक के सुनवाओ अब जा और इवाकवा से अबू जी गाना मंगले हाउ वन विक्रम कुलाचन जी के गावल धोती पोथी पगड़ी संभाल के हमने के पूर्वज लोग के अला के बात छिड़ल भाई जा पर और ये गाना अबू जी मंगले हवन आफेज असलम आयास जायान जाहिरा

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: तड़का दे कार्यक्रम में लगेला तोहर फरमाइश ही संगे और तड़का लगावत वाल मेविन जी कुद्दो से मेविन जी मंगले हवने को गाना और ये गाना है जमाल कुदू किशोर खिमिया जी के गावली गीत हमने बजवाई लज्जा मेविन जी बगल से बुनते के जानवी खातिर।

और शराबी कुछ ललिता जी के पसंद के गाना बगल बढ़िए जाए। ललिता जी गिरीश रूपचंद जी के गाना सुने खुजतवन सुंदर परी। और इस सुंदर परी गाना हमने बजावत है जा ललिता जी बगल से कृष्णी के जन्मदिन के अवसर पर, उनकर माँ निशा बगल से, उनकर पापा कृष्ण बगल से बहुत बहुत शुभकामना के संगे, फिर भाई निर्वेश बगल से बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत शुभकामना संगे मंगल कामना देवत हैं ललिता जी भी कृष्ण जी के। ललिता जी अपन बहन सुदेवी छोटी जी खातिर, प्रभावती जी खातिर, आत्माराम जी खातिर, सुखलाल मौसी, उषा लुकाना और माला राम जवन खातिर मंगल हवनी गाना।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: ऐसे दस सचे के बोले लंजा कि अपन बोली से सकबा एगो पहाड़ गिरा दे, एगो अपन बोली से कितना दिल सकबा तोड़ दे, पकिर यही बोली से सकबा कितना दुनिया बसा देवे, और यही बोली से सकबा कितना दिल के जोड़ देवे, कितना दिल के बहुत प्यार दे देवे। बहुत मीठा मीठा बोलबा तो जीवन में तोहरा मीठा प्यार मिली, और ही मीठा मीठा बोले के सलाम के स्वीटी राम बरन देव थवन। स्वीटी राम बरन जी के गावल ये गाना हमने जात है जहाँ गायत्री जी के पसंद पर, माँ गायत्री अपन बेटी रेखा के याद में गाना मंगले हवन, और अपन बेटा अजय के संगे संगे मिल के रेखा के याद में गाना मंगले हवन। चला सुनी जा

विष्णु हरी जी के गावली माफ करिया संभाती तो वन जी के गावली गाना विष्णु हरी जी के गाना अभी अभी खोज के निकलनी आई खातिर उनका ही नाम चला जबान पर संभावती तो वन जी के गावल गाना हम हल्के सुनवावे थे जा और ये गाना हमसे मंगले हवन प्रेमिला जी त्यागूर से गाना मंगले हवन अपन बहिन संध्या के संगे संगे

चलो हमने भी बड़ी दूर से तो हर मैसेज देखी ला जा, मतलब बड़ी दूर से आवेला मैसेज और हमने देखी ला जा तो हर मैसेज और तो हर मैसेज के जरिए तो हर मैसेज के आधार पर तो हर गाना प्रस्तुत करी ला जा। अभी चलो सुनी जा हमने साजिद जी के पसंद के गाना। साजिद जी रहे लनगोजिल और उनकर पसंद के गाना है विष्णु हरी जी के गावाली गीत। और ये गाना चलावत है वन हमने के सब श्रोता लोग के नाम और कनाडा के अपन सहपाठी सरोवर जी के नाम।

और अब चला हमने सुदेवी जी के पास इनके गाना चला हुआ, अब जा वाकवा के सुदेवी जी मंगले हवन गाना, और ये गाना हमने चलाओ थे जब वीनू चिंतामणि जी के गावल यह माता पिता के आदर भाव प्रकट करे के एक गाना, और ये गीत हमने बजाओ थे जाओ उन सुदेवी जी बगल से थयोले के दीदी ललिता खातिर कुशल परिवार खातिर आत्माराम भैया दीदी सुनीता शोभा देवीना मालेगा के रामरतन राम गुलाम कुआहो परिवार और हमने के सब सुने हो लड़ो के नाम

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का चले लगाए ले जा अब दिकुट के तड़का मेट्रो एक्सप्रेस संगे महेश विश्वजीत जी के गावल गाना संगे। और ये गाना हमने बजवा थे शांति जी खाती त्या होश के शांति जी। ये गाना मंगले हवन दागुच्छे के अपन मराठी परिवार खातिर, अपर दागुच्छे के अपन भगीना ओम खातिर, और हमने के सब श्रोता लोग खातिर।

चलत दुल्हा राजा के बरियात लेके चली जा हमने पसंद सुपा जी के गावली गाना गईते चली जा हमने और ये गाना राजन लक्ष्मण जी बंगले हवन अपन भांजा रितेश तुलसी जी के शादी के अवसर पर उनकर शादी अभी हाल ही में होल बा उनका ढेर शुभकामना देवा तवन राजन लक्ष्मण जी पूरा तुलसी परिवार के संगे मिलके और लक्ष्मण परिवार के संगे मिलके

चले जल्दी सन हमने एगो प्रेम कहानी सुनी जा मुर्गा मुर्गी के प्रेम कहानी सुनी जा ई गाना हमने बजावत है जा शोभा जी के पसंद पर शोभा जी रहे लंते होश ई गाना मंगले हवन अपन बहिन खातिर अपन बहिन अनुराधा खातिर और अपन भाई केशव के नाम सुदेश बोजो जी कल कावली गाना है मुर्गा मुर्गी के प्रेम कहानी

से सेलिब्रिटी कुत्ते गौर गाना सुनवाई लाजा हमने प्रेम कहानी फिर मुर्गा मुर्गी के प्रेम कहानी रहा अब हमने कबूतर कबूतरी के प्रेम कहानी सुनी जा ये गाना हमने सुनब जा शशि सोहादेव जी के गावल और गीत हमने बजावत है जा कुद्दो के मेविन के पसंद पर गाना मंगल हवन बुनते

गीत गवाए के माहौल हो इतना चला गीत गवाए के पोपुरी गाना सुनी जा हमने विभा चिंतामणि जी के गावल और गीत गवाए में हवन भी रेखा जी गीत गवाए में ऐसे

नहीं रुकिया डोलते रहे दिया तो हर कमरिया डोलते रहे दिया डोले था डोले दा चलो और कुछ विजेश गणपत जी के गावल गाना सुनी जा और ये सेल्फी गाना है चलो संगे संगे मिलके को सेल्फी ले ला जा ये गाना हमने विजय जी खातिर बजवाई ला जा विजय जी के नाम करे थे जा हमने इस सेल्फी गाना

नीरज ग्रुप मधु के संगे संगे चला खुशी के दिन में तनी जांची जा झूमी जा गावी जा और तनी कमर वांडर आयला जा। ये गाना हमने बजवाओ था जा पालमा के महीन जी खातिर।

बलमा के संगे तनी नखरा वखरा चला सुनी जामे श्वेता बाबूलाल के ई गाना में किशोर की मियां भी संगे संगे हवाना और ई गाना हमने बजाओ थे जा पीतों के अमृता जी के पसंद पर उनका लेकालो खातिर सोनिया परी मीनाक्षी विशान खातिर और पूरा गणेश परिवार खातिर

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का,
2: भोजपुरी तड़का के समय है जब पर पूरा हो ले जाता। अभी 11 बजे में 6 मिनट बाकी बा और 6 मिनट के गाना हमने तो खातिर प्रस्तुत करब जा। अभी जन गाना चली ई त्रिलोक गंगा जी के गावल गाना है। त्रिलोक गंगा जी के गावल एगो भक्त देशभक्ति गाना है। तो चलिए गाना के संगे संगे हमने के कार्यक्रम भोजपुरी तड़का समाप्त हो जाए और ये गाना के बाद हमने के कार्यक्रम सुनहरे पल सुनिया जा। सुनहरे पल पुराना गीत के कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम सुनिया जा हमने के सखी गिनेशा बगल से और आवत हला हमने फिर मिलब जा। तब तक खातिर शुभ रात्रि, नमस्ते।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: हर सुर में प्यार, हर बोल में एहसास, पुराने बॉलीवुड गीतों का ये अनमोल सफर आपके लिए लेकर आए हैं हम, जिसका नाम है सुनहरे पल, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। स्वागत है आप सभी का म्यूजिक लवर्स इस खूबसूरत से सुनहरे पल में, जहां पे आपकी यादों का खजाना खुलने वाले हैं। तो बस तैयार हो जाइए इस खूबसूरत सी सफर में हमारा हम सफर बनने के लिए।

यादों की किताब के कुछ खूबसूरत पन्ने आज फिर खुलने वाले हैं। बिल्कुल जी, रेडियो मॉरिशस पर साथ बनिए रहे। संगीत का वो दौर जहां गीत दिल से लिखे और दिल से गाए जाते थे, चलिए उसी दौर में चलते हैं वापस सुनहरे पल के साथ।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। दोस्तों हमेशा याद रखना कि हर गीत एक ऐसा रिश्ता बनाता है और हर याद को जिंदा रखता है। आज उन्हीं यादों को फिर से महसूस करते हैं। रेडियो मॉरिशस सर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए पुरानी फिल्मों के अनमोल गीतों की सौगात। स्वागत है आपका सुनहरे पल में। जी हाँ दोस्तों, आराम से बैठ जाइए और इन खूबसूरत गानों का आप आनंद ले लीजिए।

वक्त बदलता है लेकिन कुछ गीत हमेशा जवान रहती हैं दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकती है, लेकिन वक्त बदल जाता है लेकिन कुछ गीत हमेशा जवान रहते हैं। और आज उन्हीं गीतों के साथ गुजारेंगे कुछ खूबसूरत सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर, और वो भी किनिशा का साथ। जी हाँ, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। और ये अगला नगमा खासकर आपके नाम।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

पुराने गीत पुराने यादें, What a beautiful combination. लेकिन फिर भी हमेशा हम आपको याद दिलाते हैं कि जब ऐसे गीत हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए सुनहरे पल में, तो वक्त जो है ना फिर से हम वापस लेकर आते हैं, उन्हीं यादों को हम दोबारा फिर से ज़िंदा कर लेते हैं और इन्हीं गीतों के ज़रिए आपको आपके उन खूबसूरत यादों को फिर से जीने पर हम मजबूर कर लेते हैं। तो चलिए जी, ये अगला नगमा स्पेशली हमारे दिल से आपके दिल तक।

कल हो सकता है कि आज आपका दिन ज्यादा हेक्टिक था, हो सकता है कि आज आप कुछ ज्यादा ही थके हुए हो। अरे मेरी जान, आप फिक्र मत करना, गिनिशा है ना साथ देने के लिए, आपकी इस थकान को दूर भगाने के लिए हम आ गई हैं, बिल्कुल। और इन खूबसूरत लम्हों के जरिए आई एम गोइंग टू मेक यू ट्रैवल टू टाइम, यस बैक टू मेमोरीज, जहाँ पे आप और आपके उस खूबसूरत पल, बिल्कुल जी, दोबारा जीने के लिए आप तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन गाना कौन सा हम लेकर आए हैं अगला, चलिए खुद ही सुन लीजिए।

तो चलिए जी आपको खूबसूरत गीत सुनाते सुनाते वक्त कैसे बीता चला गया हमें पता ही नहीं चला, अंदाजा भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम आपसे वादा करते हैं फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत से सुनहरे पल के शो में। तब तक के लिए गिनीशा को आप इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: साथ।
1: ये गुलशन, फूल, कलियां, बहार, वादियां, ये मौसम, खेत, हरियाली, पहाड़, बर्फ, ये कायनात, कुछ भी नहीं,
2: कुछ भी नहीं,
1: कुछ भी नहीं। गरन में वो नहीं।
2: वो है कौन?
3: कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
1: नाम?